आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। एफएम 102, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हुए हैं। हम आरंभ करते हैं हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

0: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। FM 102, FM 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को है दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, अब आप सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है, FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR और ऑल इंडिया रेडियो लाइव मोबाइल ऐप पर भी। आइए भक्ति संगीत अर्चना आपको सुनवाएं।

भक्ति संगीत अर्चना सुनने वाले सभी श्रोताओं का आत्मिक अभिनंदन। श्रोताओं, ये बिल्कुल सत्य वचन है, प्रातःकालीन भजनों की पवित्र ध्वनि और ईश्वर का स्मरण पूरे दिवस के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा भर देता है।

खाली हाथ होने का आभास व्यक्ति को अंत समय भासता है कि उसने भौतिक तिजोरी तो भर ली, लेकिन कर्म और नाम सुमिरन की आध्यात्मिक तिजोरी पूरी तरह रीति रह गई।

ईश भजन सुनते समय मन व्याकुल हो जाता है कि ईश्वर के दर्शन किस भांति हो। जब सुर और शब्द मिलकर हृदय को छूते हैं तो संसार का पर्दा कुछ समय के लिए अवश्य हट जाता है और अवश्य ही मन ईश्वर के दर्शन के लिए लालायित हो उठता है।

श्रोताओ, ये था आज का भक्ति संगीत अर्चना। इसमें स्वर दिए लता मंगेशकर, देवकी पंडित, चित्रा सिंह, जगजीत सिंह और पंडित भीमसेन जोशी ने।

भक्ति संगीत अर्चना अभी आपने सुना। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। आइए श्री रामचरितमानस गान आपको सुनवाएं। आज इसमें मुख्य स्वर सुरेश वाडकर का, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत्र दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रहपूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव गुरु गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे, घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झड़ते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सची है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुं ओर शुभ शकुन हो रहे हैं, बाएं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं तो दाहिनी ओर खेतों में कौवों का समूह मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्जवल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण का संकेत दे रही है।

0: सुरेश वाडकर के मुख्य स्वर में ये था आज का श्री रामचरितमानस गान। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाएं चिंतन में आज की लघु वार्ता संगति प्रभाव।
1: सम्राट रामदेव का पुत्र बहुत

दंड था। किसी भी सभासद, मंत्री या सेनापति का अपमान करने में उसे बहुत आनंद आता था। राज्य के सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि राजकुमार कुमारदेव के दर्शन न हो। सम्राट ने अनेकों विद्वानों से परामर्श किया, पर वो राजकुमार कुमारदेव की उद्दंडता नहीं छुड़ा पाए। दिन प्रतिदिन राजकुमार कुमारदेव का स्वभाव और भी उग्र होता चला गया। अब तो वो प्रातः, सायं या रात्रि

0: राजकुमार कुमारदेव का स्वभाव और भी उग्र होता चला गया। अब तो वो प्रातः सायं या रात्रि में किसी भी राज अधिकारी मंत्री या सभासद के पास पहुंच जाता, होनी या अनहोनी मांग करता। मांग चाहे पूरी की जाए या नहीं, लेकिन अपमान अवश्य करता। सम्राट रामदेव अत्यधिक चिंतित थे। कुमारदेव का स्वभाव राजकुल के लिए कलंक सिद्ध हो रहा था। सम्राट ने महर्षि तीर्थराज के पास अपने अति विश्वस्त सभासद के द्वारा कुमारदेव की समस्या भेजी। महर्षि एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उन्होंने सम्राट को यज्ञ में आमंत्रित किया और सभासद से कहलवा भेजा कि जब सम्राट आएंगे तभी उनकी समस्या का समाधान भी होगा। यज्ञ प्रारंभ होने के 3 दिन पूर्व ही सम्राट रामदेव आश्रम की ओर चल पड़े। पहला पड़ाव राजधानी से 30 मील दूर एक गांव के निकट रखा गया। दिन भर की यात्रा से थके सैनिक और सम्राट शीघ्र ही सो गए। तभी किसी विलक्षण आवाज ने उन्हें जगा दिया। ये आवाज किसी नन्हे से तोते की थी। वो मनुष्य की बोली में अपने स्वामी से कह रहा था, स्वामी आज तो बहुत अच्छा शिकार आ गया है। इसके पास तो सोना ही सोना है। सोने का मुकुट और मणियों जड़ित बहुमूल्य वस्त्र हैं। अब तो जीवन भर भटकना नहीं पड़ेगा। स्वामी एक ही दाव में हिसाब कर लें, ऐसा अवसर फिर हाथ नहीं आएगा। तोते का मालिक एक खूंखार डाकू था। सम्राट को वो पहचानता था। उसने तोते को चुप कराना चाहा, किंतु ढीठ तोता चुप न रहा। फिर बोला, सम्राट है तो क्या हुआ, सिर धड़ से अलग कर दीजिए और चुपचाप सारा सामान अपने अधिकार में ले लीजिए। रात के अंधेरे में सम्राट रामदेव की नींद उड़ गई। तोते की भयानक मंत्रणा ने उन्हें कुछ डरा दिया। सुबह होने से पूर्व ही उन्होंने सैनिकों को जगा दिया और उन्हें आगे प्रस्थान की आज्ञा दे दी। सम्राट रामदेव अपनी यात्रा पूरी कर महर्षि तीर्थराज के आश्रम में पहुंचे। आश्रम पहुंचकर महाराज महर्षि के दर्शन करने उनके पास गए। चरण स्पर्श किए तभी एक मधुर ध्वनि उनके कानों में पड़ी, स्वागतम सुस्वागतम सम्राट। आश्चर्य से सम्राट ने ऊपर दृष्टि उठाई। समीप के एक वृक्ष पर बैठा एक नन्ना सा तोता बोल रहा था। रात की घटना सम्राट को तत्काल याद आई। सम्राट बोले, तोते तुम्हारा स्वर कितना प्रिय और मोहक है, और एक वो स्वर था जिसने मुझे डरा दिया। तोते के पूछने पर सम्राट ने रात का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तोते ने अत्यधिक व्यथित होते हुए कहा, महाराज वो तोता मेरा सगा भाई है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। सम्राट बोले, वत्स एक ही उदर से जन्मे, तुम दोनों भाइयों में ये विसंगति कैसी? महाराज ये सब संगति का फल है। मेरा भाई डाकुओं के साथ रहता है, इसलिए स्वाभाविक है कि उसके स्वभाव में क्रूरता हो। मुझे जो ज्ञान मिला वो महर्षि के आश्रम का प्रतिफल है, तोते ने जवाब दिया। सम्राट रामदेव को अपनी समस्या का कारण और निवारण मिल गया। उन्होंने यज्ञ समाप्त होने के पश्चात राजधानी वापस आते ही बुरे साथियों का राजकुमार कुमारदेव से मिलने पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया।
1: संगति प्रभाव। श्रोताओं, चिंतन में ये थी आज की लघु वार्ता स्वर राखी कटारा का। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको जानकारी दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत श्रोताओं, आज है शनिवार और आज के दिन आप सुनते हैं 8:15 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। आज इस कार्यक्रम में विषय न्यूरो संबंधी समस्याएं और उनका निदान और उनका उपचार, तो इस विषय पर आधारित विशेषज्ञ डॉक्टर सच्चिदानंद गौतम आपको जानकारी देंगे यदि आप फोन करेंगे या फिर निरंतर रेडियो सुनेंगे। फोन नंबर हम आपको बता दें 29411

0: 42 STD कोड 0744। तो कार्यक्रम सुनिएगा 8:15 से 9 बजे तक और प्रयास कीजिएगा कि आप अपनी जिज्ञासा प्रश्न के माध्यम से इस टेलीफोन के द्वारा पूछ लें। बहिने अपना कार्यक्रम प्रातःकालीन प्रसारण सभा में ही सुनेंगी 9:30 से। आज बहनों के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी प्रोसेस्ड फूड से बचें, इस पर भेंट वार्ता होगी महिलाएं जुड़ें पर्यावरण से। इसी कार्यक्रम में बहनों के लिए जानकारी होगी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इंटर्नशिप पाठ्यक्रम हेतु आवेदन और महिलाओं के लिए आसान योगासन। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में बहनों के लिए गीत संगीत भी होगा मनोरंजन के लिए। युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी सुन सकेंगे 5:00 से। आज इस कार्यक्रम में आज के संवाद के तहत इन छुट्टियों का सदुपयोग श्रमदान से करें युवा देश हमारा, इसके तहत ब्राह्मी लिपि के बारे में हमारे युवा जान सकेंगे। योग पर युवा श्रोता अंकित से चेष्टा की बातचीत इसी कार्यक्रम में हमारे युवा साथी सुनेंगे। नॉलेज कॉर्नर के तहत लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई की जयंती पर जानकारी होगी। क्रांतिकारी उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय के बारे में हमारे युवा साथी जान सकेंगे। आज के कार्यक्रम में साप्ताहिक करंट अफेयर्स युवा साथियों के लिए होगा और गीत संगीत भी होगा युववाणी कार्यक्रम में। श्रोताओं कार्यक्रम के मध्य में यानी 5:10 से 5:25 तक हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम की आज 5वीं कड़ी होगी। हमारे ग्रामीण साथी चौपाल कार्यक्रम सुनेंगे जिसमें चर्चा होगी गर्मी में स्वास्थ्य सुरक्षा और आज का आकर्षण होगा आकाशवाणी गांव में। इस क्रम में गांव भवरदा जिला बूंदी के किसानों और ग्रामवासियों से बातचीत पर आधारित ये क्षेत्र संकलित कार्यक्रम हमारे ग्रामीण श्रोता सुन सकेंगे। इसी कार्यक्रम में पशु बीमा पर जानकारी होगी और मौसम के बारे में भी हमारे किसान भाई जान सकेंगे। आपको बता दें ये कार्यक्रम होगा शाम की सभा में 7:00 से 7:30 तक। तो श्रोताओं ये थी आज प्रसारित होने वाली जानकारी आपके लिए। चंबल चैनल है ये, अब संस्कृत समाचार दिल्ली से।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,000 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः अथ च औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारंभं विहितवान्। सः आदौ हजीरा क्षेत्रं गत्वा औद्योगिकाधारभूत संरचना कार्याणां समीक्षां विहितवान्, सहैव जनसभामपि संबोधितवान्। अनन्तरं प्रधानमंत्री दमन नगरं समागच्छत्, यत्र प्रायः 2,970 कोटि रूप्यक परिमितानां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः, आजीविका निर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयः च भविष्यन्ति। CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंक सत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अन्तिमा तिथिः जून मासस्य 7 दिनांक पर्यन्तं वर्धिता। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन संदेशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीं रविवासरस्य मध्य रात्रिं यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। CBSE परिषदा प्रोदीरितं यत् छात्रहितं मनसि निधाय आवेदन प्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्त समय प्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः। एतस्मात् पूर्वं आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य 6 दिनांकं यावदासीत्। परिषदा सर्वेभ्यः योग्य छात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अघोषयत् यत् अंडमान द्वीप समूहस्य पूर्व समुद्रीय तटात् प्रायः 15 किलोमीटर दूरे श्री विजयपुरम त्रिक्षेत्रे प्राकृतिक गैस भंडारः अन्विष्टः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन संदेशेन श्री पुरी प्रख्यापितवान् यत् एतत् अन्वेषणम् अंडमान समुद्रस्य विशाल ऊर्जा क्षमतां पुनः प्रमाणीकरोति। सहैव अस्मिन् क्षेत्रे प्रचल्यमानस्य गवेषणाभियानस्य एकाम् अपराम सफलतां च सूचयति। सः अकथयत् यत् ऑयल इंडिया इति संस्था सम्प्रति गैस द्रव्यस्य संरचनां तथा च तस्य ऊष्मीयमानं मूल्यांकितुं गैस सैंपलिंग इति प्रतिचयनस्य कार्यं करोति। अन्ताराष्ट्रिय पर्यावरण दिवसावसरे श्री पुरी महोदयेन नवदिल्ल्यां फ्लेक्स इंधन वाहनेभ्यः E85 इंधनस्य शुभारंभो विहितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः ह्यः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आर्थिक परिष्काराणां लक्ष्यस्य अन्तर्गतं भारतस्य विकास यात्रा देशस्य आर्थिक समृद्धिम् अविरतं वर्धयति। अस्मिन् आर्थिक वर्षे पंजीकृतं 7.7% जीडीपी विकासं निर्दिश्य श्री शाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत 12 वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। पुरुषाणाम् अंडर 18 इति आ 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां आ 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम्। इति वार्ताः।
0: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन AIR और ऑल इंडिया रेडियो लाइव मोबाइल ऐप पर प्रसारण है चंबल चैनल का। और श्रोताओ, इस प्रसारण में अब आप सुनेंगे सुबह सवेरे का कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

तो श्रोताओ जैसा कहा वैसा हमने किया, यानी लेकर उपस्थित हैं सुबह सवेरे का कार्यक्रम नमस्कार कोटा। श्रोताओ मैं हूँ राजेश महावर, आकाशवाणी की अपनी टीम के सहयोग से पेश कर रहा हूँ ये कार्यक्रम। श्रोताओ सुबह का वो वक्त जब वाकई समा जादुई होता है, जब दुनिया सो रही होती है, हवा में एक सुकून सा होता है और हमारे पास पूरे दिन को अपने मुताबिक ढालने का एक मौका भी होता है। मगर उनके लिए जो जल्दी उठ जाते हैं, जो सोता है वो तो खोता है, जो जागता है वो पाता है। भाई पुरानी कहावत है ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो इसी पाने के लिए ये वक्त है कि हम सुबह की धूप और हवा हमसे जो कीमत नहीं मांगती वो हमें मिल जाता है। श्रोताओ ये बस हमें एक नया मौका मिलता है, हर नई सुबह हमारे जीवन की एक किताब का कोरा पन्ना होता है ना। और कलम भी तो हमारे हाथ में होती है, हमारी सोच और समझ की, कि हमने अपनी समझ के मुताबिक इस वक्त को पहचाना और इसका आनंद लेने के लिए आंखें खोली और दिमाग को भी खोला। तो श्रोताओ एक गहरी सांस और एक प्यारी सी मुस्कान बिस्तर छोड़ने से सिर्फ 10 सेकंड पहले के लिए हम कर सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं आज का दिन बेहतर होने वाला है। भाई वैज्ञानिक रूप से ये हमारे मूड को तुरंत बूस्ट

0: बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं आप जानते हैं आकाशवाणी का 90 वर्षों का सफर चल रहा है। 90 वर्षों की ये जो यात्रा है ये अपने आप में बहुत ही गौरवशाली है। 9 दशक जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं श्रोताओं, ऐसा ही महत्व आकाशवाणी का भी है। श्रोताओं आकाशवाणी के आप सभी श्रोता हैं और जो विशेषज्ञ आकाशवाणी आते हैं उनसे हम ये मोह नहीं छोड़ पाते कि आकाशवाणी की इस यात्रा का वर्णन उनके जीवन में जो रहा आप तक पहुंचाएं। आज हमारे साथ हैं कृषि विश्वविद्यालय कोटा की कुलगुरु प्रोफेसर विमला डोंकवाल जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत
3: जी, है। नमस्कार जी।
2: आज आप ही से हम ये जानना चाहेंगे आकाशवाणी की 90 वर्षों की जो यात्रा है वो आपके जीवन में किस तरह से विशेष है।
3: जी, सबसे पहले तो मैं रेडियो प्रसारण की जो स्वर्णिम यात्रा है 90 वर्ष की, उसमें आकाशवाणी में सभी कार्यरत जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ। और मेरा जो अनुभव है वो जैसे मेरा 2-3 आकाशवाणियों में जाने का अनुभव रहा है
2: जी।
3: बचपन में आकाशवाणी सूरतगढ़, और उसके बाद जब मेरा जो नौकरी में लगी मैं कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, तब आकाशवाणी बीकानेर में जाना हुआ। और उससे पहले भी जब हम छोटे थे मुझे ये ध्यान है कि एक अलग से एक ट्यून चलती थी रेडियो पर ऐसे करके, तो वो जैसे लगता था अच्छा ये न्यूज़ चल गई, अब हमारी कोई न्यू मतलब खबर आने वाली है। हाँ। या फिर एक स्पेसिफिक वो थे ना आपके रेडियो गीतमाला जो चला करती थी
2: जी, जी।
3: वो हम रात में बहुत सुनते थे है। हाँ, ना हाँ। तो वो यादें वो आवाज आज भी हमारे कानों में गूंजती है ना
2: जी।
3: और एक उसमें एक और चलता था आपके एक स्लोगन मान लीजिए क्या कि एकला चालो कुछ ऐसा चलता था,
2: अलग अलग आकाशवाणियों पर अलग अलग स्लोगन चला करते थे।
3: हाँ। तो वो मुझे आज भी याद है और मैं बहुत उन चीजों को मिस करती हूँ। और मुझे मैं जब इन आकाशवाणी में जाती हूँ और वहाँ के जो आप जैसे लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं इतनी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने इतने वर्षों की धरोहर को आज भी संभाल के रखा है और जो राष्ट्र है उसके कोने पे बैठे हुए इंसान से आप कनेक्ट करते हैं, इसीलिए तो ये मानना पड़ेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो मन की बात करते हैं वो रेडियो प्रसारण के द्वारा इसीलिए तो करते हैं क्योंकि हम उन लोगों के दिलों तक बैठे हुए हैं और ये फिर से उन्हीं ऊंचाइयों को छुए, मैं ऐसी भावना ऐसा आप लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूं।
2: बहुत शुक्रिया। आज आप एक महत्व के पद पर हैं, आप कुलगुरु हैं, लेकिन आपने बचपन का जिक्र किया, वो जिक्र जब आप बचपन में रेडियो पर जाया करते थे और जो बाल मन के जो कार्यक्रम है उनमें अपनी शिरकत किया करते थे, वो वक्त यदि याद आता है आज भी उसके बारे में कुछ बताएं हमारे श्रोताओं को।
3: जी, हमारे एक परिवार के ही परिचित उसमें काम करते थे, हम उनको चाचा जी कहते थे
2: जी।
3: और जब हम वहाँ जाते थे तो उनकी जो रिकॉर्डिंग हो रही होती थी वहाँ पे, उसमें हमारा भी वो एक दो चीजें हमसे करवाते थे, तो वो बड़ा अच्छा लगता था। और फिर अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज को फिर से सुनना,
2: हाँ।
3: वो और भी हमें जोश में भर देता है। तो आज भी ये जोश तो कायम है क्योंकि जब हम कोई भी रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं और जब हमें बताया जाता है कि आपका प्रसारण इस दिन होगा तो हम बड़े लालायित होकर के उसको सुन रहे होते हैं कि देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे हमको जो मिला है वो हम वापस इस समाज को दे पा रहे हैं और हमारी आवाज को आप मतलब वो जो भी कोने तक बैठे हैं वो हमारी आवाज को सुन रहे हैं। ये हमें एक मॉरल बूस्टअप जो होता है हमारा वो हमें मिलता है
2: जी। आप कृषि विश्वविद्यालय में कुल गुरु के पद पर आसीन हैं। जब आपके द्वारा खेतों में फसल लहलाने का जब जिक्र होता है आपको खुशी होती होगी कि आपके माध्यम से खेतों में हरियाली खिलती है। ऐसे ही फिल्मी गीतों की भी एक बहार आती है और इसी तरह के गीत जब बजते हैं रेडियो पर, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये आकाशवाणी और कृषि को आपस में जोड़ता है, कभी ये कल्पना आपके मन में साकार हुई?
3: देखिए, मैंने आपको बताया कि जो हमारे बचपन की यादें हैं वो इन्हीं सबसे जुड़ी हुई हैं और खेल

0: में, जैसे हम रास्ते में भी चल रहे हैं, खेत में भी जा रहे हैं, तो वो रेडियो समय साथ होता था। एक अभी यौगिक खेती एक शब्द है, उसमें उसमें यही है कि हम जब खेत से कनेक्ट होते हैं, अर्थात उनको जब वो गाने, मतलब उस भाव से वो गाने भी जब सुनाए जाते हैं, तो
1: जी
0: पौधों पर भी उसका बहुत अच्छा असर होता
1: क्या
0: है।
1: बात है
0: तो ऐसे में तो एक रेडियो ही बचता है जिसको कंधे पे टांग करके हम वहां रास्ते में जा सकते हैं और उनको गाने
1: जी,
0: सुनाए जा सकते हैं।
1: बहुत खूब बहुत खूब। आपकी खुशी यूं ही बरकरार रहे और रेडियो से आपका जुड़ाव यूं ही बना रहे।
0: जी जी
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद कि रेडियो के 90 वर्षों के सफर में आप भी रेडियो के एक हिस्सा बन पाए।
0: जी धन्यवाद।
1: बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओ, रेडियो का जो 90 वर्षों का सफर है, इस सफर की यादें ताजा की कृषि विश्वविद्यालय कुलगुरु डॉक्टर विमला डोंकवाल जी ने। एक बार फिर से आकाशवाणी आने के लिए उनका बहुत बहुत आभार। और श्रोताओ, इस वार्ता में, इस भेंट वार्ता में जिस गाने का जिक्र हुआ, उस गाने को जरूर शामिल किया जाना चाहिए।

शत्रुशिता वो अपना देश और अपने देश की धरती पर हमें हमेशा गर्व करना है, ये बात कभी भूले से भी ना भूले। श्रोताओ सुन रहे हैं आप सुबह सवेरे का कार्यक्रम नमस्कार कोटा। श्रोताओ जानकारी दे दें आपको, सुबह की सभा में आप सुनेंगे आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखता कार्यक्रम आपकी सेहत। श्रोताओ इस कार्यक्रम में आज का जो विषय है वो है न्यूरो संबंधी समस्याओं पर और उनके निदान पर और उनके उपचार पर भी। और विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद गौतम साहब हमारे स्टूडियो में उपस्थित होंगे। आप सभी श्रोता डॉक्टर साहब से अपनी बात सीधे ही कर सकेंगे इस टेलीफोन नंबर के जरिए। टेलीफोन नंबर 29411 42, एसटीडी कोड 0744। तो कार्यक्रम जरूर सुनिएगा और समय याद रखिएगा 8:15 से 9 बजे तक। श्रोताओ गर्मी का मौसम, इसके बाद तुरंत जब मानसून आने वाला हो तब वृक्षारोपण की तैयारी करना सबसे अच्छा समय माना जाता है, है ना। और बारिश के पानी से पौधों की जो जड़ें हैं वो जल्दी ही स्थापित हो जाती हैं, और सिंचाई की आवश्यकता जब पौधों को होती है तो वो भी कम होती है क्योंकि बरसात हमारी मदद करती है ना। तो श्रोताओ ये जब समय है, इस समय के लिए यदि आप वृक्षारोपण पसंद करते हैं, वृक्षों को देखना पसंद करते हैं, तो फिर ये बात सही है कि उनका ख्याल भी आप रखते ही होंगे। तो ऐसे में अगर आप नए पौधे उगाना चाहें तो उसके लिए आपको पर्याप्त जहां धूप मिल सके, जहां बिजली की लाइनें, भवन, भूमिगत पाइप इनसे दूरी हो, जहां जल भराव वाले स्थानों से बचा जा सके, ऐसे स्थान का आप चयन कर लीजिए कि आप वृक्षारोपण कर सकें। श्रोताओ कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सीड बॉल्स बनाने की तैयारी कर रही हैं। चंबल चैनल पर भी इस तरह के कुछ साक्षात्कार हुए, कुछ इस तरह के महानुभाव आए जो वृक्षारोपण के प्रति सजग रहते हैं। उन्होंने ये प्रयास किया कि सीड्स इकट्ठा करें और उनकी बॉल्स बनाएं ताकि कई लोगों को उसे वितरित कर सकें, और इसके साथ साथ कई लोगों को वो ये भी जानकारी दे सकें कि इन्हें अमुक अमुक स्थान पर आप डाल दीजिएगा, जिससे कि वृक्षारोपण में समुचित मदद मिल सके। श्रोता वृक्षारोपण यदि आप करना चाहें तो उसके लिए स्थानीय और उपयुक्त प्रजाति हमें चुननी चाहिए वृक्षों के लिए, जैसे कि स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुसार ही हमें पौधे लगाने चाहिए। फलदार, छायादार या फिर पर्यावरणीय दृष्टि से जो उपयोगी वृक्ष हों उनका हमें चयन करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको बताएं तो नीम, जो गांव में भरपूर मात्रा में अभी भी हैं, लेकिन शहरों से वो दूर होते जा रहे हैं, विलुप्त होते चले जा रहे हैं। पीपल भी उनमें से एक महत्व का वृक्ष है। बरगद ऐसा वृक्ष है जहां अगर अधिक भूमि आपको कहीं दिखाई दे तो वहां आप इसका रोपण कर सकते हैं। शीशम भी एक उपयुक्त पौधा है। श्रोताओ कई स्थानों पर जो नहरें बनी हुई हैं उनके बाजू में जो स्थान होते हैं खाली, वहां पर कुछ सोसाइटी के लोग भी वृक्षारोपण कर रहे हैं, और ये उनको धन्यवाद देने का भी वक्त है कि पर्यावरण सुरक्षा में वो अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं। श्रोताओ नमस्कार कोटा, सुबह सवेरे का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं चंबल चैनल पर। श्रोताओ

के दिन जबकि हम 6 जून की बात करें तो साल 1674 में एक विशेष कार्य हुआ था मराठा इतिहास के लिए। शिव राज्याभिषेक दिवस हम आज के दिन मना सकते हैं, मना रहे हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र में। श्रोताओ, इसी दिन छत्रपति शिवाजी महाराज रायगढ़ किले के ऐतिहासिक राज्याभिषेक के इतिहास बन गए थे, जिसके बाद उन्होंने छत्रपति उपाधि धारण की और हिंदवी स्वराज की स्थापना की। श्रोताओ, महत्व इसका यह है कि मुगलों और अन्य बाहरी शासकों को चुनौती देते हुए एक स्वतंत्र संप्रभु मराठा साम्राज्य यानी हिंदवी स्वराज की स्थापना आज के दिन सन 1674 में हुई, और इस नाते हम शिवाजी महाराज को आज के दिन याद कर रहे हैं। श्रोताओ, एक और बात ये कि जब हम मूल मंत्र की बात करें अपनी जिंदगी में, तो सफलता का मूल मंत्र एक ये भी है कि हम निरंतरता इस शब्द का अपने जीवन से नाता जोड़ें। श्रोताओ, निरंतरता को सफलता का मंत्र मानने के पीछे बहुत से ठोस कारण हो सकते हैं। जब हम अनुशासन का निर्माण कर पाए अपने जीवन में, तभी हम सफल होंगे, और अनुशासन तब बनता है जब हम लगातार काम करने के एक मजबूत आदत को अपने साथ में अपना लें, और आत्म अनुशासन भी इसी से बनता है। श्रोताओ, जब हम अपने सीखने की कला में कुछ सुधार करना चाहें, तो उसके पीछे ये है कि हमें रोज उसी काम को करना होगा, एक से बढ़कर अगली सीढ़ी को अपनानी होगी। ऐसा करने पर पिछली जो गलतियां हमसे हुई उनको हम सीख सकेंगे और हर दिन कुछ बेहतर कर पाएंगे, और बेहतर करने की गुंजाइश रोजाना काम करने से बढ़ती भी है। रोजाना जब हम काम करते हैं, तब हम किसी भी तरह की कठिनाई को पार पाने के लिए कुछ ज्ञान अर्जित कर पाते हैं, सीख पाते हैं। यानी कि निरंतरता हमें विपरीत परिस्थितियों या फिर असफलताओं के बाद भी डटे रहने की मानसिक शक्ति देती है। और श्रोताओ, बूंद बूंद से ही सागर भरता है, ये योगदान का सिद्धांत भी है। और इसी तरह हम अपने दैनिक प्रयासों के परिणाम को अंत में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख सकते हैं। श्रोताओ, जैसे कि आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी, कछुआ निरंतर चल रहा था, बल्कि खरगोश कितना ही निपुण होने के बाद भी अगर निरंतर नहीं था तो फिर वो मैदान छोड़ना उसे पड़ा, है ना। तो श्रोताओ, ये कुछ बात है कि निरंतर हमें रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें अमुक काम अच्छे से आता है, लेकिन हम करते इसीलिए नहीं कि क्या करना है। श्रोताओ, ऐसा ही होता है, हमारे पास दो हाथ हैं, लेकिन जो सीधा हाथ हमारे लिए काम कर सकता है वो बायां हाथ नहीं कर सकता, और जो बायां वो दायां। क्योंकि अनुभव की कमी जब होती है तब ये समस्या आती है, तो फिर हमें निरंतरता पर जरूर जोर देना चाहिए। श्रोताओ, जब हम बहुत सी बातें करते हैं तो जरा थक जाते हैं, लेकिन बात सुनने की भी आदि हमें होना चाहिए, है ना। श्रोताओ, आज के दिन हम लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई को भी व्यक्तित्व के तौर पर याद कर रहे हैं। आज 6 जून, लेकिन जब साल 1890 था तब असम के प्रथम मुख्यमंत्री रहे गोपीनाथ बोरदोलोई जी को आज हम याद कर रहे हैं एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, और उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। उपलब्धि के तौर पर इन्हें बता दें हम आपके लिए जानकारी कि वे गांधीवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, और असम की जनता के प्रति उनके निस्वार्थ प्रेम और समर्पण को देखते हुए उन्हें लोकप्रिय यानी सबके जो प्रिय हैं ये उपाधि उन्हें दी गई थी असम के तत्कालीन राज्यपाल के द्वारा, जिनका नाम जय रामदास दौलत राम। तो आज हम उन्हें उनके इन अच्छे कार्यों की वजह से याद कर रहे हैं। श्रोताओ, आज जब हम बात करते हैं तो फिर उसके साथ में मनोरंजन की भी हमें आवश्यकता होती है, है ना। श्रोताओ, मनोरंजन की अगर बात करें तो मनोरंजन की दुनिया है सिने जगत, और आज इसी सिने जगत की हम जब बात करते हैं तो आज का दिन अभिनेता सुनील दत्त के लिए है। 6 जून सन 1929 में उनका जन्म हुआ, और भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता के रूप में वो अपने आप को स्थापित कर पाए। फिल्म निर्माता के रूप में भी उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। वे निर्देशक भी रहे और अंत में एक राजनेता के तौर पर भी वो स्थापित हुए।

और समाज सेवा जब उन्होंने की तो उन्होंने राजनीति का क्षेत्र अपनाया कि विस्तार होकर, विस्तृत होकर वो समाज सेवा कर सके। श्रोताओं, कुछ फिल्मी गीतों का जब जिक्र करेंगे तो फिल्मी गीत तो बस थोड़ी देर में जब नमस्कार कोटा कार्यक्रम का समापन होगा तब 7:30 बजे से आप सुनेंगे। और हम यही बात करें कि आज आपको सुनील दत्त अभिनीत फिल्मों के कुछ गाने सुनवाएं। श्रोताओं, चलते चलते इस कार्यक्रम में एक और बात हम आपसे कहें। श्रोताओं, हम अपने मकानों में जब निर्माण करते हैं तब कुछ आधुनिकता अपना सकते हैं, यानी कि हम अपने मकानों को वातानुकूलित करना चाहें तो उसे प्राकृतिक रूप से भी कर सकते हैं। इस तौर पर हम हरित छतों का जिक्र यहां कर सकते हैं। श्रोताओं, इमारतों की छतों पर उगाई गई वनस्पति हरित छतों के रूप से हम मानते हैं, जो कि पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर भी कई प्रकार के महत्वपूर्ण लाभ देती है हमें। और ये प्राकृतिक इंसुलेटर का काम करती है, यानी वर्षा जल का प्रबंधन कर पाती है और हमारे घर का ही नहीं बल्कि संपूर्ण शहर का तापमान कम करने में अत्यधिक प्रभावशाली होती है हरित छतें। तो हरित छतों के लिए हमें क्या करना होगा, हरित छतों के पर्यावरणीय लाभ के बारे में हम जरा जान लें। श्रोता, ये तापमान में कमी करती है, यानी कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, हीट आइलैंड प्रभाव को कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी पारंपरिक छतें धूप में बहुत गर्म हो जाती हैं, जो अभी जो छतों का इस्तेमाल हम करते हैं ना, आरसीसी वाला वो, तो इसके स्थान पर हम हरित छतें सौर विकिरण को अवशोषित करती हैं और इससे इमारत अंदर के जो तापमान होता है उसका वो 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। और इसके लिए इसकी खास योगदान होता है इन छतों का। तो ऊर्जा की भी बचत इस वजह से हमारी हो सकती है, यानी कि उत्कृष्ट इंसुलेशन प्रदान करने में ये हमारे लिए मददगार होती है। गर्मियों में एयर कंडीशन और सर्दियों में हीटिंग की खपत भी कम हो जाती है, जिससे बिजली के बिलों की भी भारी बचत हो पाती है। तो श्रोता, ऐसी कुछ खास बातें हैं, यदि आप इसके बारे में जानना चाहें तो जरूर इसके बारे में अपने स्रोतों से पता कीजिएगा कि हरित छतें क्या हैं और इनका इस्तेमाल आप अपने घरों के लिए जरूर कीजिएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज का नमस्कार कोटा कार्यक्रम श्रोताओं करें संपन्न, स्वीकार कीजिए नमस्कार। श्रोताओं, चलते चलते आपको ये भी बता दें, इस कार्यक्रम में संयोजन तेजराम मीणा जी का था और तकनीकी सहयोग सुनील कुमार सुवाल का और मनोज भारद्वाज का भी था। तो अब राजेश महावर का एक बार फिर से नमस्कार स्वीकार कीजिए और दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार कोटा, सुबह सवेरे का एक कार्यक्रम चंबल चैनल पर आप सभी श्रोताओं ने सुना। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय शुमारी करने के लिए आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 9530120 और ईमेल एड्रेस भी है enjoyairkota@gmail.com। भाई, आज हम नमस्कार कोटा कार्यक्रम में खूब बोले, मगर आपने सुनकर कितना समझा, कितना आपको अच्छा लगा, ये हमें जरूर बताइएगा। अब श्रोताओं, चंबल चैनल पर हम आपको सुनवाएं वही बात जो हमने नमस्कार कोटा कार्यक्रम में कही थी, यानी सुनील दत्त अभिनेता जो हैं, उनकी अभिनीत फिल्मों के कुछ गाने आज इस कार्यक्रम में हम पेश करेंगे, पुराने फिल्मों के गानों के इसी कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम का पहला गीत पेश नजर है।

रेलवे प्लेटफॉर्म इस फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना, बड़ा फिलोसॉफिकल गाना था। इस फिल्म में अभिनेता थे सुनील दत्त।

0: श्रोतव कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म का नाम एक ही रास्ता। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की इस गीत के लिए आवाजें हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत के लिए शब्द लिखे और हेमंत कुमार का ही इसमें संगीत है। ये गीत कुछ यूं ही है।
1: शिमारू के नए

पुरानी फिल्म एक ही रास्ता जो 1956 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अभिनय के दौरान साइकिल पर इस गीत को फिल्माया गया था और साइकिल आज बहुत ही दूर की सी बात हो रही है। बस कुछ ही लोग हैं जो अपनाते हैं या फिर बच्चे इसे अपनाते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा में अपना फर्ज निभाते हैं। श्रोताओ, फिल्म संगीत चंपल चैनल पर आप सुन रहे हैं। आज के फिल्मी गीतों में सुनील दत्त की फिल्मों के गीतों का रंग है। अगला गीत सुनाने से पहले ये जानकारी जो आपके लिए है, आपकी सेहत। ये कार्यक्रम श्रोताओ हम इंतजार कर रहे हैं, आपको सुनवाएंगे। वक्त होगा 8:15 का, तब डॉक्टर साहब आपके साथ में होंगे। आज इस कार्यक्रम के लिए विषय न्यूरो संबंधी है, समस्याएं निदान और उपचार पर आधारित है और विशेषज्ञ डॉक्टर का नाम हम आपको बताएं, डॉक्टर सच्चिदानंद गौतम साहब ये होंगे हमारे साथ। और आप सभी श्रोता फोन के जरिए डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकेंगे। टेलीफोन नंबर है 29411142, एसटीडी कोड 0744। तो कार्यक्रम सुनने के दौरान फोन जरूर कीजिएगा और अपनी जिज्ञासा शांत जरूर कीजिएगा। ठीक है श्रोताओ, कार्यक्रम का यह है अगला गीत आपके लिए। फिल्म का नाम मदर इंडिया, कलाकार शमशाद बेगम मोहम्मद रफी और साथी, शब्द हैं शकील बदायूनी के और संगीत नौशाद का, और ये गीत कुछ यूं है।

तो शू तब ये गाड़ी गई, अगली गाड़ी आएगी ये। फिल्म का नाम मेरा साया, आवाज लता मंगेशकर की, शब्द राजा मेहदी अली खां के और संगीत मदन मोहन का।

इस गीत के लिए ये टेर लगाई मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम खानदान। शब्द इस गीत के लिए राजेंद्र किशन के और ये संगीत है रवि का।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फिल्म संगीत चंबल चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, फिल्म सुजाता के लिए ये थी आवाज आशा भोसले की। और अब कार्यक्रम के आखिर में ये गीत जो बयां करता है कि अभिनय कैसा था सुनील दत्त का।

श्रोताओ, आज के इस फिल्म संगीत का ये अंतिम गीत सुनते रहिए और इस फिल्म संगीत की समाप्ति पर आपको लिए चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा

0: महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूप से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323,00,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: Partnership that we have with Nepal.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
7: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
6: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को

0: नहीं बदल सकते।
1: I'd like to remind Pakistan that being a member of the
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देश बंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक।

0: जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान। इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला स्टेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है, FM 102, FM 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR और ऑल इंडिया रेडियो लाइव मोबाइल ऐप पर भी। श्रोताओ, लेकर उपस्थित हैं वो कार्यक्रम जिसका जिक्र हमने आपको किया। कार्यक्रम का नाम आपकी सेहत। और एक जिक्र और कर दें, इस कार्यक्रम में विषय आज का न्यूरो संबंधी समस्याएं, निदान और उपचार। एक और जिक्र कर दें, आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सच्चिदानंद गौतम। लेकिन श्रोताओं, खास बात यह कि ये सारी बातें हम आपको सुबह से लेकर अभी तक कहते आए हैं, तो कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू करें, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब की आवाज वाणी आप तक पहुंचेगी।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर तलवंडी कोटा। फोन नंबर 9351412449।
4: अब लेसिक लेजर से पाए चश्मे से आजादी। विश्व की सबसे आधुनिकतम अमेरिकन सिग्नेचर फेको मशीन द्वारा बिना इंजेक्शन, बिना टांके और बिना पट्टी बांधे मोतियाबिंद ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण।
3: आंख के पर्दे की सभी बीमारियों की जांच एवं ऑपरेशन सुविधा उपलब्ध। लेसिक लेजर सर्जरी, फेकिंग लेंस इम्प्लांटेशन, डिजिटल फंडस कैमरा से आंखों के पर्दों की जांच एवं एंजियोग्राफी, जापानी ग्रिल लेजर मशीन से मधुमेह रोगियों के पर्दे की सिकाई,
4: जटिल भेंगापन एवं कालापानी जांच और ऑपरेशन सुविधा।
3: सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर तलवंडी कोटा।
2: तो श्रोताओ, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम के आरंभ में ही। और जैसा कि हमने आपको बताया, आज का विषय न्यूरो संबंधी समस्याओं पर आधारित है। और आज हमारे डॉक्टर अतिथि हैं डॉक्टर SN गौतम साहब, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद गौतम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका।
5: थैंक यू, नमस्ते आपका।
2: जी श्रोताओ, आज हमारे जो डॉक्टर सच्चिदानंद गौतम साहब हैं, वो प्रोफेसर हैं, न्यूरो सर्जन हैं। और डॉक्टर साहब को SN गौतम के नाम से ही जाना जाता है तमाम लोगों के द्वारा। डॉक्टर साहब, लेकिन आपका जो नाम है सच्चिदानंद, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, सत, चित और आनंद, और इन तीनों का समावेश आपके भीतर हम देख रहे हैं।
5: जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसका मेन अभिप्राय यही है कि आप सत्य में मन लगाएं, तो आनंद ही आनंद है।
2: क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब। तो आपने जो ये हमें बताया कि जो आपका नाम SN गौतम के नाम से आप मशहूर हैं, क्योंकि संभवतः जब से आप इस पेशे में आए तब से इसी नाम से आप पुकारे जाते रहे हो। लेकिन जब हमें पता लगा कि आपका नाम सच्चिदानंद है, तो हमें यही लगा कि आपका पूरा नाम कितना सुंदर है। जी जी। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता बिल्कुल कतारबद्ध होंगे, अपने अपने रेडियो पर कान लगा के सुन रहे होंगे, क्योंकि आपकी जो ख्याति है वो इस रोग को दूर करने के लिए बहुत ही मशहूर है, फैली हुई है। तो डॉक्टर साहब, जब हम भी चंबल चैनल पर आपको आमंत्रित करते हैं तो हमें भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि चंबल चैनल के माध्यम से तमाम श्रोता अपनी बहुत सी ऐसी तकलीफों से जो जूझ रहे हैं, कहीं कह नहीं पाते।

0: रहते उसके बारे में जान पाएंगे आज इस कार्यक्रम के जरिए। इसलिए एक बार फिर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और तमाम श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं हम कार्यक्रम के आरंभ में ही। और श्रोताओं, जो न्यूरो संबंधी समस्याएं हैं वो क्या होती हैं, आप में से बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग उससे पीड़ित होते रहते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका आज का जो वृहद विषय है न्यूरो, ये किस तरह से आप व्याख्या देंगे इसकी?
1: आपके माध्यम से मैं श्रोताओं को सबसे पहले कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ
0: जी।
1: दिमाग में तीन तरह की परेशानियां हो सकती हैं, उनके तीनों की विधाएं अलग अलग है, उनके निदान अलग अलग हैं और चिकित्सक अलग अलग हैं। कई बार मरीज जो होता है उसके रिश्तेदार होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उनको किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए
0: जी।
1: तो तीन तरह की चीजें होती है। अगर दिमाग में किसी तरह की कोई पैथोलॉजी है, जैसे कि कोई ट्यूमर है, हेमरेज है या इस तरह के कोई ट्रोमा है, तो इस तरह की परेशानियों के लिए न्यूरोसर्जन जैसे कि हमारे विभाग में दिखाना चाहिए। कई बार इस तरह की चीजें होती है जो डिजेनरेटिंग होती हैं, हाइपोक्सिक होती हैं, जैसे कि लकवा हो जाता है किसी को, स्ट्रोक आ जाता है, पार्किंसन हो जाता है, डिस्टोनिया हो जाता है, जो कि डिजेनरेटिव होती हैं या हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से हो रही हैं, तो उनको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए जो न्यूरोफिजिशियन होते हैं। एक होता है केमिकल डिस्टर्बेंसेस, जिसको लिए कि अपन बहुत जागरूकता अभी तक भी नहीं है देश में, उनको मनोरोग चिकित्सक को दिखाना चाहिए। लोग उसको मानते हैं ऊपरी हवा किसी के अंदर आ गई, वो असामान्य व्यवहार कर रहा है, वो भी एक बीमारी है। उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो हार्मोन जो है बॉडी के, वो दिमागी में जो होते हैं उसके इम्बेलेंस हो जाते हैं, उसके कारण से इस तरह का व्यवहार उसमें होता है, लेकिन उसकी सीटी स्कैन एमआरआई में कुछ आता नहीं, वो नॉर्मल होते हैं। तो अगर किसी को पैथोलॉजी नहीं है दिमाग में, सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह नॉर्मल आ रही हैं और उसके फिर भी असामान्य व्यवहार है, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन होना, लड़ना या किसी तरह का भी इस तरह का व्यवहार होना, तो उसको फिर मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। तो तीनों विधाएं ओवरलैप हैं, तीनों विधाओं के डॉक्टर भी अलग अलग हैं और तीनों विधाओं के चिकित्सक मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हैं
0: जी। डॉक्टर,
1: तो अगर आज किसी तरह से न्यूरो डिजेनरेटिव या न्यूरो सर्जरी से संबंधित किसी भी तरह की समस्याएं हैं, तो आपके माध्यम से उसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा
0: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इसीलिए हमने आपका स्वागत किया, आपको आमंत्रित किया। तमाम श्रोता भी अब रेडियो पर जुट गए हैं और जैसे कि हम कार्यक्रम में आपसे बातचीत शुरू करेंगे, श्रोताओं को बता दें, श्रोता यदि कार्यक्रम सुनने के दौरान आपको लगता है कि आप डॉक्टर साहब से अपना प्रश्न करना चाहें तो टेलीफोन नंबर ये है 29-4-11-42 और एसटीडी कोड का भी आप इस्तेमाल कीजिएगा, वो है 0744। और अब राजेश महावर का नमस्कार स्वीकार कीजिए। तो डॉक्टर साहब, न्यूरो संबंधी जब हम बात करते हैं तो जो विद्यार्थी होते हैं जब अपने स्कूल लेवल की पढ़ाई करते हैं, विज्ञान में जरा आगे बढ़ते हैं, तो 8वीं-9वीं तक आते आते वो तंत्रिका तंत्र के बारे में जानने लगते हैं। डॉक्टर साहब, विद्यार्थी तो जान लेते हैं लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो तंत्रिका तंत्र के बारे में किस तरह से जाने ताकि आपका विषय उन्हें पता लगे?
1: देखो, तंत्रिका तंत्र जो है वो जब 9-10 से सीबीएसई की क्लासों में आना शुरू हो जाता है तो वैसे बहुत डिफिकल्ट माना जाता है इसको। बाकी की शारीरिक जो संरचना है वो थोड़ी आसान है इसको समझने की अपेक्षा। एक छोटे से दिमाग के अंदर सारे शरीर की कंट्रोलिंग पावर, आप मान के चले जैसे कोई कंप्यूटर है और उसके अंदर आपने कोई पेन ड्राइव लगाया
0: जी,
1: उस पेन ड्राइव में कितने ही जीबी का मटेरियल हो सकता है।
0: हाँ।
1: या उसमें कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आपके पूरे कंप्यूटर को हैक कर सकता है, या उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आपके कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकता है। तो ये सारा सॉफ्टवेयर जो है भगवान ने हमें दिमाग के अंदर दिया है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, तो इसकी संरचना भी उतनी ही जटिल है। मैं आपसे बात कर रहा हूं इसके लिए मेरे पूरे शरीर का कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, जिसमें सोचना, समझना, बोलना, वो सब इतने मिली सेकंड से भी कम समय में हो रहा है जितना आप कंप्यूटर पे अपने हाथ से नहीं कर सकते, किसी मशीन से नहीं कर सकते।
0: क्या बात है।
1: ये होता है रिएक्शन। आपने मुझसे कोई प्रश्न पूछा, सामान्य अवस्था में क्या होगा, उस प्रश्न को कंप्यूटर भी पहले चैट जीपीटी में डालेंगे ना आप, तो उसको पहले वो देखेगा डाटा में, फिर उस चैट जीपीटी का उसका प्रश्न ढूंढने के लिए वो उसको एनालाइज करेगा, फिर आंसर देगा, लेकिन आपका दिमाग तुरंत दे रहा है।
0: बिल्कुल,
1: ये इसमें कोई रिएक्शन टाइम भी नहीं आ रहा है बोलने में, सुनने में, समझने में। तो दिमाग की संरचनाएं बहुत जटिल है। तंत्रिका तंत्र को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने दो भागों का जिक्र किया लेकिन हमारे जो श्रोता है उनका आगमन हो चुका है,
1: कार्यक्रम उन्हीं का है।
0: क्या बात है डॉक्टर साहब, नमस्कार।
2: सर नमस्ते, मेरा नाम नितेश मिश्रा है, मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: जी नितेश जी,
2: जी
0: जी
2: सर, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे भाई हैं 45 साल उनकी उम्र हो गई है, उनको साइटिका की परेशानी है, जब एमआरआई की गई करवाई गई तो L4-L5 में डिसऑर्डर बताया गया है और शरीर में लगातार झुंझुनापन, सुन्नपन बना ही रहता है और काफी तेज दर्द उनको होता है, तो उनका इलाज किस प्रकार से संभव हो सकता है?

0: है।
1: फोन लाइन पर ही रहिएगा, सुनिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं।
2: नितेश जी बहुत प्रश्न, अच्छा प्रश्न है आपका। थोड़ी देर पहले हम इस बात में जिक्र भी कर रहे थे, जब भी किसी पेशेंट को किसी तरह की कोई परेशानी होती है और जांच हो जाती है, जांच होने के बाद जब उसका डायग्नोसिस बन के सामने आ जाता है कि उसको जैसे L4 L5 में आपने कहा डिस्क है, तो डिस्क कितनी ज्यादा एक्सट्रूडेड है, प्रोट्रूडेड है, ये MRI देखने के बाद संभव है बताना। उसका निदान दवाओं से हो सकता है या ऑपरेशन से हो सकता है, ये भी MRI देखने के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है। पर सामान्य अवस्था में सबसे पहले हम इसमें दवाइयां देते हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं, अगर उसके बावजूद भी अगर आराम नहीं आता है तो फिर इसमें ऑपरेशन की सलाह देते हैं
1: जी।
2: कुछ चीजों का जो भी मैं आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में यहां से बताना चाहता हूं, जो सामान्य अवस्था में सबको करना चाहिए, पब्लिक को सबके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए कि कभी भी आगे झुक करके भारी वजन ना उठाएं। जहां तक हो सकता है अगर आप जिम वगैरह करते हैं तो एक ट्रेनर की उसमें मदद लें और उसके साथ ही करें। कई बार सांस का आना और जाना, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये वजन उठाने के साथ भी जरूरी है कि उसका तारतम्य बना रहे, अदरवाइज सर्वाइकल या लंबर डिस्क होने की परेशानी रहती है। ब्रेकर पे ध्यान रखें, गाड़ी चलाएं तो कि उसमें ज्यादा उछाल ना हो, ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये परेशानी होने की संभावना कम रहती है। फिर भी हमारा निवेदन है आपसे कि आप अपने भाई को लेकर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कमरा नंबर 3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक गुरुवार के दिन या 206 नंबर MBS हॉस्पिटल के अंदर सेकंड फ्लोर पे नई बिल्डिंग में सोमवार के दिन आकर के आप न्यूरोसर्जरी विभाग में परामर्श लें। जहां तक हो सकता है आपकी मदद करेंगे और आपके भाई की समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलाज पूर्णतया निःशुल्क है यहाँ पर
1: जी।
0: सर अंतिम प्रश्न पूछा था मुझे, सर ऐसा अमूमन कहा जाता है कि जो हड्डियां हैं वो 30 से 40 के बाद कैल्शियम खोना स्टार्ट कर देती हैं, तो ये कितनी बात सत्य है अभी इस समय?
2: देखिए ये बात सत्य और असत्य का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है आप अपनी बॉडी की कितनी केयर करते हैं। अगर आप कोई नई कार लाते हैं, एक साल तक खड़ी रखते हैं, तो वो कार भी खड़ी खड़ी जंग लग कर से टायर खराब हो जाएंगे, लेकिन उसी कार को रोज चलाएंगे, सर्विस कराएंगे, मेंटेन रखेंगे, तो कार 10 साल के बाद भी आपको नई नजर आएगी। सेम चीज अपने शरीर के साथ है, भगवान ने एक मोटर लगा के अपने को दिया है, इस गाड़ी को चलाओ अच्छी तरह से, मेंटेन करो उसको, खान पीन का ध्यान रखो, नियमित रूप से एक्सरसाइज करो, तो ये 40 साल के बाद तो क्या 60 साल के बाद भी ठीक रहेगी। आपके पिताजी 90 साल की उम्र में भी ठीक रहे होंगे, क्योंकि उनका खान पीन दैनिक दिनचर्या बिल्कुल ठीक थी। आज आप 100 मीटर जाने के लिए बाइक या कार का इस्तेमाल करते हैं
1: जी,
2: वो मार्केट सब्जी लेने 2 किलोमीटर पैदल जाते थे। तो आप इन चीजों का नियमित रूप से ध्यान रखें। पहले लिफ्ट नहीं होती थी, सीढ़ियां चढ़ता था आदमी, अब आप एक मंजिल के लिए भी लिफ्ट का यूज करते हैं। तो प्रॉब्लम शरीर में नहीं है, शरीर को इस्तेमाल करने के जो ख्याल है, विचार है, उनमें है। आप जीवन शैली सुधारेंगे तो 40 तो क्या 80 साल तक भी फिट रहेंगे।
1: ठीक नितेश जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी दूर से आपने फोन किया। और डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा लगता है कि कार्यक्रम का विषय बदल कर थोड़ा सा इस चीज पर रख लें कि हमें अपने आदतों में किस तरह से सुधार करना चाहिए।
2: हाँ, वैसे भी मेरे नाम से लगता है बाबा जैसा सच्चिदानंद।
1: जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे,
2: देखिए आजकल जो आमतौर पे युवा जो आ रहे हैं बीमारी से ग्रस्त होकर, आपने यहाँ पे नियमित रूप से कार्यक्रम करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार कमर के दर्द। हाँ जी लीजिए
1: जी, नमस्कार
3: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार, नाम बताएं साहब।
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: हाँ राकेश जी, प्रश्न कीजिए
3: जी। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार।
2: नमस्ते नमस्ते राकेश जी।
3: जी तो मेरा सवाल ये है, जैसे जो न्यूरिक जो समस्या हो जाती है अक्सर जो है छोटे बच्चों में अगर ज्यादा होती है, तो छोटे बच्चों को किस तरह से बचाया जाए, मेरा ये प्रश्न है।
2: इस छोटे बच्चों में न्यूरो से संबंधित समस्याएं वैसे तो डिजेनरेटिव तो होती नहीं है, वो कंजेनाइटल होती है। अब कंजेनाइटल समस्याएं मेनली जो होती हैं वो की विकार होते हैं जो जन्मजात आते हैं बच्चे में, या तो वो दिमाग के अंदर पानी भर जाना, या उसके स्पाइन में स्पाइना बायफिडा हो जाना, मतलब जैसे कमर में से रसोली बाहर निकल जाना, इस तरह के विकार होते हैं। इन विकारों को बचने के लिए जो गर्भवती माता है उसको गर्भ धारण करने के समय से ही रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, उसकी नियमित रूप से जांच होती रहनी चाहिए, और उसको फोलिक एसिड जो कि दिमाग की संरचना को बनाने में सहयोग करता है, वो एक नॉर्मल जो डाइट होती है उसमें नहीं होता है, तो उसकी टेबलेट उसको 5 मिलीग्राम की रोज लेनी चाहिए, ताकि बच्चा जब गर्भ में हो तो उसका संपूर्ण रूप से विकास हो दिमागी तौर पर, और वो उसमें कोई भी कंजनाइटल यानी कि जन्मजात विकृति उसके दिमाग में ना हो
1: जी।
2: और ये दवाइयां आंगनबाड़ी के माध्यम से भी पूरे भारत में उपलब्ध है
3: जी।
1: ठीक है राकेश जी,
3: धन्यवाद धन्यवाद जानकारी देने
1: की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि श्रोताओं का एक कार्यक्रम है, इसलिए आपने अपनी बात को यकायक बीच में रोककर हमारे श्रोताओं को आमंत्रित किया। तो श्रोताओं, आपको एक बार फिर हम बता दें, कार्यक्रम सुने।

0: और आपको लगता है कि प्रश्न करना चाहिए डॉक्टर साहब से, जानकारी लेनी चाहिए, तो टेलीफोन नंबर है 29411 42 और एसटीडी कोड है 0744। डॉक्टर साहब आप जो बात कर रहे थे
1: जी, मैं बात कर रहा था कि आप लगातार कार्यक्रम करते हैं, आपने देखा होगा युवा जो है आजकल वो ज्यादा ग्रस्त है बीमारियों से
0: जी।
1: जैसे युवाओं में हार्ट अटैक आना, युवाओं में जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कभी सर्वाइकल डिस्क है, कभी कमर में दर्द है, तो ये बीमारियां केवल अपनी जीवन शैली से ही बदली जा सकती हैं
0: जी।
1: आप देखें कि लगातार युवाओं में जो भी है वो स्क्रीन टाइम उनका बढ़ रहा है, लगातार लेट करके भी पूरी वेब सीरीज खत्म कर दिए जाते हैं 2-2 बजे तक रात को।
0: वाकई ऐसा लगता है कि अगर वेब सीरीज खत्म नहीं की तो फिर अपमान हो जाएगा।
1: नहीं, जैसे वो कल तो मिलेगी नहीं नेट पर
0: जी।
1: तो उसको लगातार देखते रहते हैं वेब सीरीज को या मोबाइल पे स्क्रीन को लगातार देख रहे हैं, उनकी शारीरिक क्षमताएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं
0: जी।
1: जैसे आप देखेंगे वो उनको, आप कभी अपने घर में भी आप कभी एग्जांपल करके देखिए, उनको बोलिए कि पास से दूध की थैली ले आए, वो पार्लर से सरस पार्लर वो जाएगा, बाइक लेगा या कार लेगा, जबकि वो 100 मीटर पे होंगी।
0: बिल्कुल,
1: जबकि आपके और हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, स्कूल जाने के लिए बस आ जाती है या आपने ड्राइवर लगा रखा है जो गाड़ी से स्कूल छोड़ने जा रहा है, वो साइकिल से पैदल स्कूल नहीं जा रहा, जबकि 2-2 किलोमीटर दूर स्कूल होते थे अपने टाइम पे, पैदल जाते थे
0: 5-5 किलोमीटर भी डूब जाते,
1: पैदल जाते थे, पैदल आते थे। पर आज के जमाने में दिनचर्या में बिल्कुल खत्म हो गया शारीरिक श्रम करना
0: जी।
1: श्रम तो बिल्कुल रहा ही नहीं
0: जी। डॉक्टर साहब यहाँ एक विषय से इतर एक बात याद आई है, हम आपसे कहें, एक बार एक लेख पढ़ा था, उसमें ये था कि पहाड़ी जो महिलाएं हैं बड़ी खूबसूरत थी, तो उसके पीछे उन्होंने एक लॉजिक दिया कि उनकी खूबसूरती उनके प्रकृति का नजारा था, प्रकृति का एक आयन थी, और वो इसलिए कि वो 10 किलोमीटर जाकर और 10 किलोमीटर लौटनी थी, तो प्रकृति के साथ रहना उन्हें प्रकृति की तरह ही खूबसूरत बना दिया। तो जब प्रकृति से हम दूर होंगे तब ये विकार भी आएंगे।
1: तो शारीरिक श्रम जो है वो बिल्कुल कम हो गया है, खान पान की पूरा बदल गया है, पहले घर का ही खाना खाते थे, अब पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक ये वो हर तरह की चीज खाई जा रही है खाने में
0: जी।
1: जबकि खाने घर का जो बच्चों को खिलाएंगे तो खाएंगे नहीं, वो उनको तो ऑर्डर कर देंगे, थोड़े दिन बाद तो ये स्थिति हो जाएगी, किसी बच्चे से आप पूछेंगे कि खाना कहाँ मिलता है तो ये बोलेगा कि जोमेटो पे या स्विगी पे मिलता है, वो ही बोलेगा नहीं खेत में से गेहूं आता है, क्योंकि सबको बिल्कुल ऐसा लगता है ना, तो जीवन शैली बदल रही है। और अपन दोष दे रहे हैं कि वायरस आ गया है या वैक्सीन लग गया इसकी वजह से हार्ट में अटैक आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, पहले भी थे, अभी अपना खुद का ध्यान अपन खुद नहीं रख पा रहे हैं।
0: क्या बात है डॉक्टर साहब, ये बड़ी मार्मिक बातें आप अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। एक श्रोता से जुड़े हैं, नमस्कार। नमस्कार जी, हमने आपका फोन रिसीव कर लिया है, आपसे संपर्क नहीं हो पाया, कृपया दोबारा आप फोन करें।
1: आप देखेंगे तो जो चिकित्सक हैं वो आज भी उम्र दराज होने के बावजूद देखेंगे 60-70 साल के, तो लिफ्ट कम यूज करते हैं, सीढ़ियां यूज करते हैं
0: जी।
1: राउंड लेने जाएंगे 3 फ्लोर पे अगर वार्ड है उनका, वो सीढ़ियों से जाते हैं, सीढ़ियों से आते हैं।
0: इसके पीछे खास बात ये कि उनको जानकारी है,
1: क्योंकि शारीरिक श्रम करना चाहते हैं
0: जी।
1: मैंने थोड़ी देर पहले बताया गाड़ी जितना चलेगी उतना अच्छा रहेगी, अगर रुक जाएगी तो जंग खा जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो आप अपने शरीर के साथ भी ऐसा ही करें, उसको जितना आप चलाना चाहते हैं चलाएं, जितना चलेंगे उतना ही चलेगा।
0: क्या बात है डॉक्टर साहब, न्यूरो बहुत महीन विषय माना जाता है चिकित्सा क्षेत्र में, और आपने इस पर अंदरूनी अध्ययन किया है, चीरफाड़ करके आप देखते हैं, ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत क्रिटिकल कंडीशन जब आ जाती है तब लोग आपके पास पहुंचते होंगे कई बार, और न्यूरो के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आने के बाद भी सर्जरी से डरते होंगे। डॉक्टर साहब एक जाने माने सर्जन हैं आप, क्या कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है डिले करने पर?
1: ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये मेरे दिमाग में बहुत समय से चल भी रहा था कि इस प्रश्न को मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को बताऊं
0: जी।
1: अपने शरीर में 2 तरह की सेल होती हैं, एक परमानेंट होती हैं और एक टेम्पररी होती है
0: जी।
1: जो कि एक तो सेल बार बार बन जाती है, जैसे आपने देखा कि स्किन में कोई चीरा लगेगा त्वचा में तो बार बन जाती है, लेकिन अपनी जो ब्रेन की सेल है वो परमानेंट सेल है, अगर वो डैमेज हो गई तो दोबारा नहीं बनेगी। होता क्या है, जब भी किसी को सपोज करें ट्यूमर हो गया या जैसे अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने बोला कि डिस्क हो गया
0: जी।
1: अब अगर किसी को सर्वाइकल डिस्क है, लंबा डिस्क है, उसको ऑपरेशन की सलाह दी गई, वो ऑपरेशन से डरता है, वो बोलता है ऑपरेशन के बाद तो लकवा हो जाएगा। जैसे किसी के ट्यूमर है तो पहला प्रश्न उसका ये होता है कि साहब ऑपरेशन में सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ये बोलता है कि नहीं ठीक होने की संभावना है, गारंटी नहीं होती
0: क्योंकि प्रयास किया जाता है।
1: लेकिन अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे और जितना लेट कराएंगे वो ट्यूमर उतनी ही नर्वस सेल को खत्म करता जाएगा
0: और उसकी कोई गारंटी नहीं,
1: और वो परमानेंट डैमेज होगा। जैसे सपोज करो कि मेरे पास कोई पेशेंट आता है चलता फिरता, उसके दिमाग में ट्यूमर है, मैं उसका ऑपरेशन करूंगा तो हो सकता है वो चलता फिरता वापस जाए, ये संभावना रहेगी। लेकिन अगर कोई लकवाग्रस्त होकर मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब उसकी उस

0: हाथ और पैर की जो कंट्रोल करने की सेल्स हैं, नर्वस टिश्यू डैमेज हो चुका है। मैं ऑपरेशन करके उस ट्यूमर को निकाल भी दूंगा तो भी वो लकवा उसका ठीक नहीं होगा। हाँ। तो आप जितना उसमें डिले करते हैं उतना ही आपके कॉम्प्लिकेशन की रेट बढ़ती जाती है। ऑपरेशन तो के लिए जैसे आपके घर में सपोज करिए कि कोई सांप आ गया है
1: जी,
0: अब आप उस सांप को पालते तो नहीं है।
1: हाँ।
0: आप या तो उसको बुला करके स्नेक कैचर को पकड़ा करके जंगल में छोड़वाते हैं या अज्ञानता उस मार भी देते हैं जहरीला समझ करके।
1: जी, जी।
0: सेम चीज ये होता है अगर अपनी बॉडी में कोई बीमारी आ गई है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो वो तो आपका नुकसान करेगी। समय रहते उसका इलाज कराएं,
1: बिल्कुल,
0: चाहे वो इलाज ऑपरेशन हो चाहे दवा हो, अगर आपने समय रहते नहीं कराया तो ये दिक्कत हो जाएगी आपको।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब एक समय छोटे से अंतराल का। जी,
2: नजर धुंधली हो या नंबर हाई, चश्मा हटाना हो या मोतियाबिंद, सुवी आई हॉस्पिटल पर आपको मिलेगा आंखों की समस्या का हर इलाज।
3: अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आए ट्रेन डॉक्टर्स आप कोटा में एडवांस मशीन्स के साथ आंखों की हर समस्या की जांच और उपचार। लेजिक लेजर से पाए चश्मे से आजादी और फेकिक लेंस प्रत्यारोपण से मोटे चश्मे से छुटकारा।
2: विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा कैटरिक सर्जरी, रेटिना केयर और कॉर्निया उपचार।
3: सुवी आई हॉस्पिटल एवं लेजिक लेजर सेंटर, तलवंडी कोटा।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर, तलवंडी कोटा।
3: फोन नंबर 9351412449।
1: श्रोताओं, फिर से बहुत स्वागत है आपका चंबल चैनल का सुबह सवेरे का ये कार्यक्रम आपकी सेहत, जो आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखता है, हर शनिवार 8:15 बजे। और अब लगभग 8:30 बजे का वक्त हो चुका है। हमारे विशेषज्ञ अतिथि डॉक्टर एस एन गौतम साहब हमारे साथ हैं और आज का विषय आपको याद है श्रोताओ, न्यूरो सर्जरी पर और तंत्रिका तंत्र पर आधारित है। एक श्रोता हमसे जुड़े हैं डॉक्टर साहब, नमस्कार। ओ श्रोताओ, आग्रह ये है कि इस कार्यक्रम को संजीदगी से लें। आपके प्रश्न दूसरों का भी भला कर सकते हैं, आपका भी भला कर सकते हैं, और आप जब फोन कॉल रोकते हैं तब दूसरे श्रोता उससे बाधित हो जाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, आपके क्षेत्र में ये न्यूरो पर एक तकलीफ का नाम है मिर्गी, लोग इससे परेशान होते हैं और एक परेशानी ये भी है कि उन्हें वो इस तरह के उपाय देते हैं जो कि चिकित्सीय क्षेत्र में एक हंसी का पात्र,
0: जूता सुंघाना। जी, ये बिल्कुल सही बात है, जैसा हम भी देखते हैं। इसको मेडिकल की भाषा में बोलते हैं
1: एपिलेप्सी
0: या कन्वर्जन डिसऑर्डर।
1: जी,
0: कन्वर्जन कई प्रकार के होते हैं, पार्शियल भी हो सकते हैं, जनरलाइज भी हो सकते हैं, टोनिक क्लोनिक भी हो सकते हैं, टोनिक भी, ये बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, कई टाइप के होते हैं। लेकिन अमूमन ये जो भी एपिलेप्सी है इसके कारण के पीछे अपने को जाना चाहिए, क्यों आ रहे हैं।
1: जी,
0: अगर अपने को इसका कारण मिल जाता है तो उसका निवारण करने से ये तकलीफ दूर हो सकती है।
1: जी,
0: लेकिन कई बार इसके कारण नहीं मिलते तो इसका ये मान के चलते हैं अपन कि ये एक डेवलपमेंटल या कंजनाइटल डिसऑर्डर है।
1: तो उसकी शुरुआत कब से होती है?
0: वो कभी भी हो सकती है, जन्म के बाद भी हो सकती है, बचपन में बाद में भी हो सकती है, पर आमतौर पर माना जाता है कि अगर 40 साल की उम्र से किसी को मिर्गी का दौरा शुरू होता है तो कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर कोई पैथोलॉजी है, उसकी वजह से हुआ है। अदरवाइज ये 40 के पहले ही होना चाहिए, कि जो जन्मजात विकृतियां दिमाग में जो इस तरह से एपिलेप्सी के दौरे आते हैं, आमतौर पर बच्चों में आपने देखा होगा बुखार आता है, दौरा आ जाता है, लेकिन वो 5 से 7 साल के बाद नहीं आता, वो फेब्राइल कन्वर्जन होते हैं। तो कई टाइप के होते हैं ये, लेकिन एपिलेप्सी के दौरे में कभी भी जूता सूंघाना तो मजाक का विषय रहेगा।
1: बिल्कुल,
0: ये तो बिल्कुल ही साइंटिफिक नहीं है कि अगर आप किसी के मिर्गी का दौरा आ रहा है तो उसका ध्यान ही रखें कि आप करवट दिला दें, उसको पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके पकड़ने से रुकने वाला नहीं है वो। निकट के सरकारी अस्पताल या प्राइवेट चिकित्सालय जो भी आपके सबसे निकट है, सबसे पहले उसको वहां लेके जाएं, उसके बाद जब वो स्टेबल हो जाए तो किसी भी न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन को दिखाएं ताकि उसकी जांच करा करके वो एक निदान पे पहुंच सके। अगर उसको लगता है कि इसमें कोई ऐसी पैथोलॉजी है जिसका ऑपरेशन द्वारा या दवा के द्वारा ठीक किया जा सकता है तो उस पे जाएंगे, उसका इलाज करेंगे। अगर फिर भी लगता है कि नहीं, ये सब कुछ नॉर्मल है, इडियोपैथिक मतलब जिसका कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए फिर दवाइयां दी जाती है। अब होता क्या है, जैसे मान के चलिए किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसको बीपी के लिए दवाई दे दी, 8 दिन बाद वो महिला या पुरुष अपना बीपी चेक करवाता है, उसका बीपी नॉर्मल आता है, वो दवा छोड़ देता है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि ये जो ब्लड प्रेशर है ये बीपी की गोली खाने से कंट्रोल में है। आपका बीपी 160 था, दवा लिया आपने, बीपी 130 हो गया, अब आप छोड़ेंगे 3 दिन बाद वो 180 हो जाएगा, रिबाउंड फिनोमेना होती है। तो इसमें कई बार आपको दिमाग में ICH या इस तरह की कोई स्ट्रोक, इस तरह की संभावना, हार्ट अटैक, ये होने की संभावना रहती है। तो हम सबको ये बोलते हैं बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, इनकी दवाओं से ये कंट्रोल में रहती हैं,
1: जी,
0: खत्म नहीं होती है, उन दवाओं को आप कंटिन्यू करें। सेम चीज एपिलेप्सी में होती है, जब हम उसको दवा लिखते हैं 3 महीने 4 महीने तक दवाई खाता है, उसके बाद उसको लगता है

0: में कोई दौरे तो आ ही नहीं रहे, डॉक्टर बेकार दवाई खिला रहा है, वो दवाई नहीं खाता फिर दौरे आते हैं और कंडीशन खराब होकर आता है।
1: जी
0: सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में ये दवाएं निःशुल्क है सरकारी अस्पतालों में, किसी पे कोई पेशेंट पे कोई पैसे का बोझ नहीं लगने वाला है। अगर आप निकट के सरकारी अस्पताल से दवाई ले भी लेते हैं उसको खा लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका कोई नुकसान है आर्थिक रूप से, लेकिन आपका शारीरिक रूप से उसमें फायदा है। और जब तक दौरे नहीं आ रहे हैं तब तक आपका बौद्धिक और मानसिक विकास भी ठीक है, लेकिन जब एक बार दौरा आ जाता है तो आपका बौद्धिक और मानसिक विकास भी उसी स्तर पर ही खराब होता है,
1: जी।
0: तो आपका हर तरह से नुकसान होता है।
1: और हमें ये मान लेना चाहिए कि हम सामान्य हैं तो उस दवा की वजह से जो डॉक्टर
0: उसकी जो कंट्रोल में है।
1: जी
0: जैसे आप सपोज करें आपने स्विच चालू कर रखा है लाइट का, तब तक ही लाइट चलेगी। अब आप सोचे कि लाइट तो आ गई है मैं स्विच बंद कर दूं तो लाइट थोड़ी चलेगी।
1: बिल्कुल क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत ही सटीक उदाहरण। आप
0: लाइट तो बंद हो जाएगी तो वो स्विच है आपका, चाहे वो दवा डायबिटीज की हो, बीपी की हो, थायराइड की हो, चाहे वो आपके कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हो या आपके एपिलेप्सी की हो, ये दवा आपके स्विच है
1: जी डॉक्टर।
0: अब आप उनको जानबूझ के बंद कर रहे हैं।
1: वाकई और ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक कि
0: यहाँ तो लाइट है, ये वापस जलाई जा सकती है, वो आपकी जिंदगी का स्विच है।
1: वाकई
0: क्या पता वापस जले ना जले।
1: क्या बात है क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ी गंभीर बात है। एक श्रोता हमसे जुड़े हैं, नमस्कार।
2: नमस्कार
1: साहब, आपके धैर्य के लिए नमन है आपको, नाम बताएं।
2: चित्रलाल मरुड़ बोल रहा हूँ।
1: छीतर जी, छीतर जी स्वागत है आपका, कीजिए अपना प्रश्न।
2: ये न्यूरो सिस्टम यानी स्नायु तंत्र में योग प्राणायाम की और मानवीय सोच की दोनों की क्या भूमिका है?
0: बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं, योग और प्राणायाम इसका न्यूरो में नहीं पूरे शरीर में ही इसका योगदान है। जब भी आप योग और प्राणायाम करते हैं तो आपके स्नायु तंत्र के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मात्रा बिल्कुल बैलेंस पे पहुंचती है, जो कि आपके न्यूरोनल जो डैमेज होते हैं उसको रिकवरी में फायदा देती है। साथ ही आपके फेफड़े जिस तरह से मजबूत होते हैं आपके दिल को भी फायदा देते हैं, तो आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ जाता है। तो योग और प्राणायाम से केवल स्नायु तंत्र की ही बात ना करें, पूरे शरीर की उसमें एक तरह से मेंटेनेंस हो जाता है और वो उसको करना चाहिए रोज। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा से योग और ध्यान दो चीजों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उस पर पूरा विश्व भी इस चीज पे चर्चा में लगा हुआ है कि इस चीज को कैसे आगे डेवलप किया जाए।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब जी। चितर जी
2: धन्यवाद,
1: आपका भी शुक्रिया। और डॉक्टर साहब आपने जब योग की बात कही है तो भारत को संपूर्ण विश्व को देन है कि संपूर्ण विश्व योग दिवस मना रहा है।
0: अपने यहाँ पे जो प्राणायाम है और योग है ये एक ऐसी अवधारणा है जिससे पूरे शरीर के आसन और योग इससे पूरे शरीर का मेंटेनेंस हो जाता है
1: जी।
0: अगर आप रोज इसका अभ्यास करते हैं तो आपको बीमारी से तो बचाता ही है, कुछ बीमारियां ऐसी है जिनकी तकलीफ को भी ये कम कर देता है।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब,
0: इनको नियमित रूप से करना बहुत ही जिसे बोलते हैं कि आपके लिए लाभदायक रहता है। मैं तो कई बार मेरे पेशेंटों से बोलता भी हूँ, जब वो जिम जाते हैं बिना ट्रेनर के तो मैं परेशानी होकर आती है उनके पास, बिना ट्रेनर की सहायता के या बिना ट्रेनर के गाइडेंस में आपने वजन उठाया तो सर्वाइकल लंबर डिस्क होने की संभावना रहती है। वो पेशेंट मेरे पास यंग एज में आते भी हैं तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अपने शास्त्रों में हमेशा ध्यान और योग लिखा है, आसन लिखा है, जिम नहीं लिखा, जिम ना लिखा है।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब,
0: तो अगर आपको करें जिम भी तो किसी ट्रेनर के उसमें करें आप।
1: वाह साहब क्या बात है डॉक्टर साहब, एक बार फिर से इस बात को हम दोहराएं कि हालांकि ये तकलीफों से संबंधित कार्यक्रम है कि तकलीफें दूर की जाती है, इसलिए इसमें हास्य की भी उतनी भूमिका है क्योंकि हास्य भी तकलीफों को दूर करता है। एक श्रोता जुड़े हैं साहब हमसे, नमस्कार।
3: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते
3: जी। भैया हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, तरह छत्तीसगढ़।
1: योगेश जी स्वागत है आपका, बड़े समय के बाद आपने फोन किया जी, कीजिए अपना प्रश्न।
3: ये जो कुछ है भूलने संबंधित समस्या होती है वो भी इनसे जुड़ा हुआ है क्या भैया?
0: जी अगर आपको याद रखने के लिए दिमाग जिम्मेदार है तो भूलने के लिए भी दिमाग ही जिम्मेदार होगा।
1: क्या बात है,
0: ऐसा नहीं है कि आपके पैर चलने के लिए जिम्मेदार हैं तो हाथ नहीं चलने के लिए जिम्मेदार होगा। आपके दिमाग में मेमोरी जिसे बोलते हैं याद रखने की क्षमताएं होती हैं, उसमें अगर याद रखने की क्षमता में कमी आ रही है तो उसको डिमेंशिया बोलते हैं। याद रखने की क्षमता में कमी आना, अब वो कई तरह से हो सकता है। आपके दिमाग में अगर सपोज करें किसी तरह का इस्केमिक अटैक आता है, स्ट्रोक आता है, कोई ट्रॉमा हो जाता है जिसे हेमरेज वगैरह बोलते हैं, या कई बार आपके ट्यूमर हो जाता है, तो ये अर्ली चीजें हैं, याद नहीं रखने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है, याद नहीं रहता है। और कई बार उम्र के साथ साथ 60 साल के बाद धीरे धीरे आपकी याद रखने की क्षमताएं कम हो जाती है, उसको सिनाइल डिमेंशिया

0: डिमेंशिया बोलते हैं। अब जहां तक बात है सिनाइल डिमेंशिया की, ये सबके साथ हो सकता है। इसका जवाब आपको मेरे पहले वाले जो था भाग उसमें मिल जाएगा। अगर आप अपने दिमाग को लगातार उपयोग में लेंगे तो आपको सिनाइल डिमेंशिया की परेशानी नहीं होगी। दिमाग भी आपके शरीर जैसा है, जितना चलाएंगे उतना चलेगा। आप लगातार पढ़ने की क्षमताएं विकसित करें, किसी चीज को याद रख करके बोलने की डिस्कशन की क्षमता विकसित करें, लगातार नई चीज सीखने की क्षमता विकसित करें, तो आपका दिमाग 60 तो नहीं 100 साल तक भी डिमेंशिया का शिकार नहीं होगा, क्योंकि आप उसको उपयोग में ले रहे हैं। और जो चीज उपयोग में आती रहती है वो कभी खराब नहीं होती है, खराब वही होती है जो चीज उपयोग में नहीं ली जाती है।
1: जी।
0: मुझे लगता है आपकी शंका का समाधान।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया
2: जी। और डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि आपकी शंका के समाधान ने उनके प्रश्न भी समाप्त कर दिए थे। वैसे योगेश जांगड़े जी हमारे नियमित श्रोता हैं और हमें फोन करते हैं, और आप सभी जो विशेषज्ञ उनके रायशुमारी करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात बताई कि जिस वस्तु को हम उपयोग में लेंगे वो उसकी उम्र बढ़ जाती है, वैसे आज का जो विषय हमने न्यूरो पर रखा, लेकिन क्योंकि ये शरीर है, एक दूसरे से संबंधित हैं सभी अंग हमारे शरीर के, इस लिहाज से आपने जो संपूर्ण बात कही और उसमें जो योग का महत्व आपने बताया, योग आपने बताया कि केवल एक ही हमारे दिमाग के अंग को नहीं बल्कि पूरे शरीर को हमें वो दुरुस्त रखता है, ये बिल्कुल आशीर्वाद है जो संपूर्ण रूप से विकसित होता है।
0: सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन जो इस दुनिया में बनी है वो इंसानी शरीर है।
2: क्या बात है?
0: अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता तो वैज्ञानिक इसको कब का बना चुके होते हैं।
2: वाकई
0: ये ऊपर वाले ने इस तरह से डिजाइन किया है कि इसको दोबारा से बनाना
2: जी
0: बहुत असंभव है। आप देखेंगे कोई भी मशीन का एक नियत समय होता है कि इस समय के बाद ये मशीन, जैसे आपके कोई मोबाइल लिया आपने, उसमें वो बता देते हैं कि सॉफ्टवेयर में 8 साल के बाद एक्सपायरी है
2: जी, जी।
0: दवा लेंगे 6 साल के बाद एक्सपायरी है
2: जी।
0: आप अगर सपोज करें कि कोई मोबाइल की बैटरी भी लेते हैं या गाड़ी की बैटरी, 7 साल के बाद वारंटी नहीं है। शरीर का किसी तरह का कोई एक्सपायरी नहीं है अगर आप उसका सही तरह से सदुपयोग करते हैं
2: जी।
0: वो बात अलग है कि आपकी जेनेटिक्स जो है संरचना, उसके अंदर ही आपकी मृत्यु का राज छुपा है कि आपकी डेथ कब होनी है। आकस्मिक मृत्यु अलग है
2: जी।
0: लेकिन आप अपने शरीर के अगर ध्यान रखते हैं, नियमित रूप से उसका योग प्राणायाम शारीरिक श्रम खान पीन का ध्यान रखते हैं, तो आप फिट रह सकते हैं, बीमारियां आपके पास आएंगी नहीं ना
2: जी। क्या बात है डॉक्टर साहब। और अभी आपने ये बताया था कि किसी की उम्र इतनी है तो उन्हें तो अभी 100 साल जीना है, यानी हमारे जो ग्रंथों में शतक का तो
0: ज्यादा भी हो सकता है।
2: वाकई वाकई
0: मेरे पास एक 98 ईयर के एजेड पर्सन अभी भी आते हैं, वो खुद के काम खुद करते हैं, कपड़े तक खुद धोते हैं वो सबके, अपने खुद के सारे।
2: क्या बात।
0: और वो अभी भी अपनी जीने की लालसा को बिल्कुल चलते फिरते आते हैं, अभी छोड़ा नहीं उन्होंने
2: जी। और डॉक्टर साहब, वैसे तो ये आपका विषय है न्यूरो, लेकिन क्योंकि जब आप बिल्कुल संपूर्ण रूप से जब बात कर रहे हैं तो फिर समग्र रूप से हम भी एक बात डॉक्टर साहब हम आपसे कहें, जैसे आपने बताया कि उन्होंने कपड़े धोना नहीं छोड़ा, यानी कि आजकल जो एक तो विलासिता के लिए जो मशीनें आ रही हैं, या फिर एक जिसे कहते हैं ना कि इको के लिए भी हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं चाहे हमें उसकी आवश्यकता नहीं, तो इन सब चीजों का हमें किस तरह का नुकसान होता है अपने जीवन
0: देखो
2: में?
0: देखो सीधा सा इसका उदाहरण है, बहुत सीधा सा।
2: हाँ।
0: आज से 15 साल पहले
2: जी
0: आपको आपके 10 दोस्तों के मोबाइल नंबर या फोन नंबर याद रहते थे।
2: वाकई
0: रहते थे। आप कभी भी किसी जगह जाते थे एसटीडी कोड पे जाकर के फोन लगाते थे और बात हो जाती थी
2: जी।
0: आज मैं आपसे 4 दोस्तों के मोबाइल नंबर पूछ लो आप बता पाएंगे?
2: साहब परिवार के सदस्यों का ही मुश्किल हो गया।
0: नहीं बता पाएंगे
2: जी।
0: क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ आपके मोबाइल में डाल दिया। जब आप अपने दिमाग का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक तरह का डिमेंशिया है, आपको नंबर याद नहीं रह पा रहे हैं। सेम चीज ये हो रही है, आप जो कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आप लैपटॉप या स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं
2: जी,
0: जबकि जब आप बचपन में पढ़ते थे तो आप लिख करके पढ़ते थे, किताब कॉपी पे लिखते
2: दिमाग
0: थे
2: के द्वारा उसे दोहराया जाता,
0: तो वो रिटन मेमोरी आ जाती थी, वर्बल मेमोरी बोल के करते थे आप, सुन करके पहले बोला फिर सुना फिर लिखा, 3 मेमोरी आपके अंदर गई
2: जी।
0: अब क्या हो रहा है कि वो देख करके आप उस स्क्रीन पे सब कुछ किए जा रहे हैं, तो आपकी मेमोरी क्षमताएं कम हो रही हैं।
2: वाकई।
0: तो सबसे बड़ी बात जो मैं इस पूरे प्रोग्राम में एक बात आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आप अपनी किसी भी तरह की डिपेंडेंसी को कम करें,
2: क्षमताओं का विकास करें।
0: हाँ
2: जी।
0: कहीं जाना है तो पैदल जाने की कोशिश करें, कहीं कुछ लिखना पढ़ने की। अभी भी आप देखेंगे आपके घर में जो पुराने लोग होंगे वो डायरी और पेन मेंटेन करते हैं।
2: वाकई डॉक्टर साहब।
0: आप जैसे मोबाइल नंबर बोलेंगे वो उसको लिखते हैं
2: जी
0: कि नहीं मुझे इसमें विश्वास है, मोबाइल पे विश्वास नहीं। क्यों? मोबाइल में कभी भी कोई वायरस आ सकता है, इस कागज में कहां वायरस आएगा?
2: बिल्कुल। और
0: अब आप सपोज करें आपने सारी जिंदगी का डाटा किसी स्क्रीन में डाल दिया है
2: जी,
0: अब वो करप्ट हो गया,

0: फिर क्या होगा,
1: फिर क्या होगा? सेम चीज आपके दिमाग में है, आपके दिमाग में सब कुछ डला हुआ है, अब आप उसकी केयर ही नहीं कर रहे हैं, वो करप्ट हो गया तो क्या होगा?
0: वाकई वाकई डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब इसका तो प्रमाण है कि सुनते थे कि एक समय में इंसानों की पूंछ हुआ करती थी, इस्तेमाल नहीं हुई तो लुप्त हो गई। जी एक श्रोता हमसे जुड़े हैं, नमस्कार।
2: हेलो सर जी, आपको और मेहमान डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार साहब, हमें ऐसा लगा था कि बहुत देर हो गई आपको फोन करते हुए, अगर आपको हमने आमंत्रित नहीं किया तो कहीं आप भी लुप्त न हो जाएं। स्वागत है साहब आपका, नाम बताएं।
2: नहीं, सोता ये प्रोग्राम

0: अगर आपको हमने आमंत्रित नहीं किया तो कहीं आप भी लुप्त न हो जाएं। स्वागत है साहब, आपका नाम बताएं।
1: नहीं नहीं सोता, ये प्रोग्राम लाभदायक हम सुनते रहते हैं।
0: जी जी जी, नाम बताएं साहब।
1: बाबूराम जयपाल, गांव डांगरी, जिला जैसलमेर।
0: जी बाबूराम जी, प्रश्न कीजिए, अपना स्वागत है आपका।
1: क्वेश्चन है कि जैसे कोई भी लड़के घर में बदमाश होते होते तो माता पिता उस पर मतलब सिर पर ठोला मारते, या कोई भी स्कूल में विद्यार्थी जैसे होमवर्क नहीं करते तो भी वो टीचर भी मारते, तो ये शरीर मतलब ठोला मारना चाहिए नहीं चाहिए?
2: जी मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है आपकी जो लैंग्वेज है उसमें ठोला मारना मतलब थप्पड़ मारना। हाँ हाँ मैं समझ गया उसको, जैसे सिर पे थप्पड़ मार दिया किसी ने, मैं वो समझ गया बात को आपको। देखिए
1: अंगुली घुमा के मारते हैं उसको हम लोकल भाषा में ठोला बोलते हैं।
0: अच्छा साहब,
2: जो भी है जैसा भी, लेकिन सिर पे मारने की बात कर रहे हैं आप। जहाँ तो देखो मारने में क्या है, अगर आप हल्के से मार रहे हैं तब तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जोर से मारेंगे तो मेरे को भी नुकसान होगा और आपको भी होगा।
0: जी
2: मारना ठीक नहीं है ना, क्योंकि सिर का और गर्दन का जो एक हड्डी के ऊपर बैलेंस रहता है, अगर आपने आकस्मिक रूप से किसी को मार दिया और वो तैयार ही नहीं है तो उसकी जो डिसलोकेशन होने की संभावना रहती है। दिमाग में अगर बच्चा छोटा है, कई बार उसकी इलास्टिसिटी बोन की ऐसी रहती है लेकिन अंदर हेमरेज हो जाता है, तो मारना तो किसी भी तरह से सही नहीं माना जा सकता, और तो हिंसा में आता है तो मारना अच्छी बात नहीं है।
0: जी ठीक है साहब। हाँ जी हाँ जी, वैसे इस तरह का प्रमाण हमारे चिकित्सक महोदय से करवाना बहुत ज्यादा उचित तो नहीं था, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने शरीर की संरचना में जो चोट कर सकता है उसका जिक्र किया, इसका कहीं और इस्तेमाल मत कीजिएगा। डॉक्टर साहब, हम न्यूरो से संबंधित बात कर रहे हैं, अक्सर लोग आपके पास पहुंचते हैं नसों में क्षति या फिर दर्द होता है, ये क्या कारण होता है?
2: हमारे पास मेजोरिटी ऑफ जो प्रश्न वो पेशेंट आते हैं वो या तो सर्वाइकल गर्दन में दर्द, सर्वाइकल डिस्क, लंबर कमर में दर्द, कमर में डिस्क हो जाती है, ब्रेन में ट्यूमर होते हैं, ब्रेन में हेमरेज होते हैं, या ब्रेन के अंदर चोट लगने की वजह से हेमरेज हो जाते हैं, इस तरह के मरीज ज्यादातर मात्रा में आते हैं। तो आप भी देखेंगे ट्रोमा का तो बचाव आसान है, अगर आप चाहें सीट बेल्ट लगाएं, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, साथ में ब्रेकर स्पीड का इनका ध्यान रखें, हेलमेट लगाएं, 18 साल से कम उम्र में वाहन ना चलाएं,
0: वाकई
2: तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसको लोग आसान चीजों को ही फॉलो नहीं करते। हाँ। डिफिकल्ट चीजों को लोग फॉलो करते हैं। डिफिकल्ट चीज क्या है कि पुलिस वालों को देख करके गली से निकल जाएंगे, चालान नहीं बन जाए,
0: दूसरों को भी समस्या में डाल देना,
2: दूसरों को फोन कर देंगे तो पुलिस वाले खड़े हैं, चालान बन रहा है तुम उस गली से आ जाओ, ये डिफिकल्ट चीजों को अपन फॉलो करते हैं, आसान नहीं करते कि हेलमेट लगा के निकल जाए वहां से। आसान को अपने हिंदुस्तान में चैलेंजिंग जॉब लेते हैं लोग, बहुत आसान नहीं करते। दूसरा जैसे सर्वाइकल का है, सर्वाइकल में हम सबको बोलते हैं कि आप वजन उठाने की एक ध्यान रखें, लगातार स्टिफनेस ना रखें, अगर आप जो भी इस तरह का है कि आपको कंप्यूटर पे काम करना है, स्क्रीन पे काम करना है, तो हर 30 से 40 मिनट में एक ब्रेक लें, चाहे वो चाय पीने, पानी पीने, टॉयलेट जाने, ब्रेक लें, लगातार ना करें
0: जी।
2: कभी भी मोटा तकिया लगा के ना सोएं, लेट करके टीवी मोबाइल का उपयोग ना करें, इस तरह की चीजें हम उनको बताते हैं, पर वो सब चीजें नगण्य है, उनको लगता है ये सब बेकार है, जब होगा तब देखा जाएगा।
0: जी हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं।
2: हाँ हमारे थोड़े होगा, किसी और की होता है तो हमारे नहीं होता। सेम चीज कमर के लिए है, ज्यादातर मामलों में कमर में यही होता है कि लोग आगे झुक करके बहुत काम कर रहे होते हैं
0: जी,
2: या गाड़ी को ब्रेकर गड्ढों में बहुत तेज निकाल रहे होते हैं।
0: डॉक्टर साहब हमारी बातें बहुत ही उपयोगी है, एक श्रोता हमसे जुड़े हैं, उनसे हम बात करें। नमस्कार। ओहो हो, वो इंतजार नहीं कर पाए। जी डॉक्टर साहब,
2: होता क्या है, ये सब चीजें आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें बैन है, नहीं करनी चाहिए, कुछ लोग करते हैं और उनको कुछ होता भी नहीं है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये है कि वो अपनी शारीरिक संरचना को इतना फिट रखते हैं, इतने आसन प्राणायाम या जो भी है एक्सरसाइज, उससे उनकी मसल इस तरह की हो जाती है कि वो झुक के काम करें, वजन उठाएं तो भी कुछ नहीं होगा। जैसे आप देखिए ओलंपिक में वो 140 किलो तक के वजन उठा लेते हैं, लेकिन उसके लिए पूरी ट्रेनिंग चाहिए। आप देखेंगे महाराणा प्रताप का भाला 130 किलो का था
0: जी,
2: उस घोड़े पे बैठ के 130 किलो का भाला, अब 130 किलो तो आपसे खुद से ना उठे क्योंकि आप 30 किलो के हैं। आपके आइडियल तो महाराणा प्रताप है
0: वाकई,
2: लेकिन आपका खुद का वजन 60 किलो का है
0: वाकई,
2: तो आप अपना वजन भी उस तरह से बनाए कि आप महाराणा प्रताप जैसा भाला उठा पाए।
0: और आज के दिन हम थोड़े से तौर पर शिवाजी का भी जिक्र कर लें, आज उनके राज्याभिषेक का भी दिवस है, और आपको मालूम है डॉक्टर साहब जब उन्हें कैद हुई थी तब वो घोड़े पर एक लंबी यात्रा की थी उन्होंने। जी
2: जी
0: नमस्कार, हमने कहा जी नमस्कार, आपकी आवाज नहीं मिल रही। हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी आवाज आई आपको?
3: मेरी आवाज आ रही है?
0: हाँ साहब, नाम बताएं अपना।
3: रामेश्वर राठौर, गोविंद नगर, कुटा डगने।
0: वाह जी रामेश्वर जी, कीजिए अपना प्रश्न।
3: मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर साहब से।

0: जी जी
1: जी पूछिए आप, मैं सुन रहा हूँ, पूछिए।
2: उस टाइम पे मेरी उम्र है अभी 80 साल।
0: जी जी साहब।
2: तो तकरीबन 74-75 के आसपास हम फैक्ट्री में काम करते थे, जेके में।
0: जी जी, आप समस्या बताएं साहब।
2: हाँ, तो उस वक्त में एक ऐसा स्ट्रोक आया था मेरे दिमाग में
1: जी।
2: तो थोड़ा सा जो है घर वाले ये समझने लग गए थे कि ये कुछ पागलपन करने लग गए
1: जी।
2: तो उस वक्त तो दवा वगैरह करवाई और थोड़ा आराम भी आ गया, और फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ मतलब वो दवा की कमी रही या कुछ इलाज की कमी रही, तो कभी कभी थोड़ा वो स्टॉप आ जाता है। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ।
0: जी सुनिए साहब, सुनिए सुनिए। जी
1: देखिए, स्ट्रोक एक इस तरह की समस्या है जब दिमाग में खून की नस में कोई थक्का जमने से दिमाग का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है। तो आपको उसमें नियमित रूप से अपनी दवाइयां लेनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होता कि मैंने आज इलाज करा लिया, 2 साल बाद इलाज छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता।
0: जैसे कि आपने पहले भी बताया,
1: उसमें खून पतला करने के लिए एस्प्रिन नाम की एक गोली होती है, वो रेगुलर डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए आपको। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो बीपी की दवाई भी कंटिन्यू करनी चाहिए। जहां तक प्रश्न है रिकरेंट स्ट्रोक का, तो रिकरेंट स्ट्रोक आने के लिए ये दवाइयां नहीं लेना ही एकमात्र आपकी जिम्मेदारी है कि इसकी वजह से ही आ रहे हैं। तो आप नियमित रूप से दवाइयां लें। और जहां तक आपकी 80 साल की उम्र है, 80 हो या 90 हो, दवाई 9 साल के बच्चे को भी लेनी चाहिए, 90 साल के भी लेनी चाहिए
2: जी।
1: तो आपको अपना नियमित रूप से जो भी बनता है आपका इलाज, वो आप सरकारी अस्पताल में आए, दवाएं निशुल्क हैं और आपको लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में आपकी जो क्षमताएं 80 नहीं, आप 100 वर्ष तक भी सतायु करे भगवान आपको, आप लंबा जिए और स्वस्थ जिए।
2: आपने कमरा नंबर बताया था हमारे, वो
1: बिल्कुल कमरा नंबर 206 है, MBS हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज कैंपस में 3 नंबर है।
0: तो साहब आप वहाँ आइएगा और अपना उपचार करवाइएगा और अपने जो दवाइयाँ हैं उसे निरंतर रखिएगा। अब डॉक्टर साहब, अब क्योंकि कार्यक्रम अपनी समाप्ति पर है, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो इसके लिए हम जांचें करते हैं, कई बार ये कहा जाता है कि अपने शरीर की संपूर्ण जांच करवाई, उसमें कुछ तकलीफें अगर हो तो सामने आ जाती हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है न्यूरो के संबंध में?
1: देखिए, आदमी जो है अपने शरीर के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित और डरा हुआ रहता है। आपने एक वाहन लिया, वाहन चल रहा है, आप 1 साल में उसकी सर्विस पे बेचते हैं
0: जी,
1: तो उसको ये तो नहीं बोलते कि आपने ये सब पूरा चेकअप कर लेना
0: जी, जी,
1: उसको
0: जी।
1: बोलते हैं आप रूटीन सर्विस कर दीजिए, कोई खराबी तो ठीक कर दीजिएगा, यही बोलते हैं
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जब अपने शरीर की बारी आती है तो पूरा मेडिकल चेकअप जाता है।
0: हाँ।
1: वो जाता है बिना डॉक्टर की सलाह के, कोई भी चेकअप कराता है।
0: हाँ।
1: डॉक्टर के पास जब वो रिपोर्ट लेके जाता है तो डॉक्टर उस रिपोर्ट को फेंक देता है, बोलता है ये सब क्या कचरा ले आया तुम सामने, क्योंकि उसमें इस तरह की जांचें होती मेडिकल चेकअप के नाम पे, जिनका आपके शरीर की व्याधि बीमारी से कोई तरह का लेना देना नहीं है। लेकिन वो सूत्र की जांचें अननेसेसरी करा के आते हैं
0: जी।
1: मेरा केवल इतना मानना है कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप चिकित्सक के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है
0: जी।
1: आप अपना 40 साल के बाद केवल बीपी, शुगर, इतनी चीजों का आप ध्यान रख लें। 50 के बाद जाते हैं तो आप बीपी और शुगर के साथ में आपकी एक नियमित साल 2 साल में एक हार्ट के लिए इको वगैरह करवा लें। लेकिन अगर आप अननेसेसरी कोई जांचें करा रहे हैं तो उसका नुकसान है आपको। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को कुछ डर है, मुझे इस तरह की बीमारी से निकलना है या मुझे ऐसा हो सकता है, तो किसी चिकित्सक के परामर्श से ही जांच कराएं
0: जी डॉक्टर साहब,
1: ताकि वो चिकित्सक जो आपको देख रहा है वो वही जांच लिखे, अननेसेसरी की फालतू की जांचें ना लिखे,
0: हमें ये भी पता लगे कि कहीं ये हमारा भ्रम तो नहीं।
1: हाँ
0: जी डॉक्टर साहब, क्या बात है। और डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में आपने खास जो एक फोकस किया वो ये किया कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए।
1: जितना आप प्रकृति से ले रहे हैं, आप केवल प्रकृति को उतना दे दें, आप स्वस्थ रहेंगे।
0: क्या बात,
1: देने का मतलब है शारीरिक श्रम करेंगे, क्योंकि आप पेट्रोल डीजल की बर्बादी नहीं करेंगे।
0: वाकई वाकई,
1: क्योंकि आप उसको दे नहीं पा रहे हो तो लो भी मत।
0: वाकई,
1: और आपका जितना भी है, आप माइंड को चलाने के लिए पढ़ें, लाइब्रेरी जाएं, किताबें खरीदें, उनको पढ़ें, स्क्रीन पे ना पढ़ें।
0: वाकई,
1: जितना पढ़ेंगे उतना दिमाग ठीक रहेगा, डिमेंशिया नाम की कोई बीमारी आपको नहीं होगी।
0: बिल्कुल, और जो युवा अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं वो आगे के लिए भी अपना कार्य रखें कि शरीर को दुरुस्त रख सकें जी। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्व की बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
1: थैंक यू।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो श्रोताओ, ये था आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत, जिसमें आज का विषय और विशेषज्ञ डॉक्टर सच्चिदानंद गौतम थे और न्यूरो संबंधी तमाम जानकारियां आप तक मिली। आपको ये बता दें श्रोताओ, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग सुनील कुमार सुवाल का और मनोज भारद्वाज का था। इस कार्यक्रम के लिए संयोजन तेजराम मीणा का था। अब राजेश महावर भी डॉक्टर साहब के साथ में आपसे चाहता है इजाजत। तो डॉक्टर साहब, आपके आने का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
3: थैंक यू।
2: तो श्रोताओ, चंबल चैनल के इस कार्यक्रम से इजाजत दीजिए। आपको लिए चलते हैं जयपुर केंद्र प्रादेशिक समाचारों के लिए। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद किया, कहा राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है। सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून की। और खेत बचाओ अभियान से देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान जुड़े। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की बढ़ोतरी दर्ज की है। श्री मोदी ने दमन में कल शाम लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि देश गरीबों के लिए व्यापक अवसंरचना विकास और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधार की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया और कहा कि भारत हरित भविष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया है। वे आज भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पानी और बिजली की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार की विभिन्न योजनाओं का हर व्यक्ति को फायदा मिल रहा है।
2: हमारा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर फोकस है, उसे लेकर के हमारी ग्राम चौपालें लगातार चल रही हैं। अभी गांव वालों के साथ यहाँ के बिजली की, पानी की, खेती की, क्यारी की, यहाँ और क्या हो सकता है उसके लिए लगातार हम बात कर रहे हैं।

0: गांव की यहाँ पैदावार होती है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी तो मेरे गांव के नौजवान को यहाँ रोजगार मिलेगा। हम सरकार रोजगार देना चाह रही है, हम प्राइवेट स्तर पर भी देना चाह रहे हैं और वो निजी अपना कोई कारोबार प्रारंभ करें इसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। निश्चित रूप से आज मैं इस खारी का लांबा गाँव में हूँ, ये बहुत अच्छा गाँव है, निश्चित रूप से हमारी सरकार का और डबल इंजन की सरकार का हर व्यक्ति को फायदा मिल रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने गांव में मॉर्निंग वॉक और धर्मी तालाब के पास योगासन किया। इससे पहले कल रात उन्होंने ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने खारी का लांबा ग्राम पंचायत में नया कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय खोलने और कृषि पर्यवेक्षक का नया पद सृजित करने की घोषणा की। साथ ही विद्यार्थियों की मांग पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान संकाय खोले जाने का भी आश्वासन दिया। जयपुर में इंडिया फूड बिजनेस एक्सपो लगाया गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 दिन के इस फूड एक्सपो का कल शुभारंभ किया। ये एक्सपो राजस्थान उद्योग व्यापार महासंघ की ओर से लगाया गया है। एक्सपो का उद्देश्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों, निर्माताओं, डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक मंच उपलब्ध कराना है जिससे व्यवसाय विस्तार के साथ रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो सके। उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉ. बैरवा ने कहा कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से फूड इंडस्ट्री, कृषि उत्पादों और के संवर्धन, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
2: हमारे व्यापारियों के द्वारा फूड एक्सपो का यहाँ प्रदर्शनी लगाई है, अपने स्टोर लगाई है और एक छत के नीचे हर प्रकार की ब्रांड, हर प्रकार की चीजों की यहाँ प्रदर्शनी लगाकर निश्चित रूप से व्यापार जगत को एक छत के नीचे लेकर जो ये एक नवाचार किया है इससे व्यापार बढ़ेगा। इससे हर व्यक्ति, हर ग्राहक और हर व्यापारी एक दूसरे से मिलकर हो सकता है और बहुत बड़ा उद्योग मिल सकता है, व्यापार बढ़ सकता है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। भारत पाक सरहद पर स्थित जैसलमेर जिले में सुरक्षा कारणों से पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
3: इसमें सीमावर्ती क्षेत्र की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय से प्रतिवर्ष 163 का ये ऑर्डर निकलता है जिसमें कि ये प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी एक चुनौती जो जैसलमेर जिले की सीमा पर हम पाई जाती है वो यही है कि जो पाकिस्तानी सिम है वो यहाँ 3-4 किलोमीटर तक उसका वो फंक्शनल रहता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमने गृह मंत्री महोदय की जानकारी में भी हम लोग लेके आए थे। रूटीन के साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा एक हमारी सालाना एक एक्सरसाइज रहती है जिसके तहत फिर हम लोग पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इसमें कार्रवाई हुई।

0: राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने नवाचारों के लिए आमंत्रण मांगे हैं। विभाग के सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समस्याओं के प्रभावी समाधान, आजीविका बढ़ाने, सतत विकास तथा समाज के कल्याण में योगदान देने वाले नवाचारों को पहचान प्रदान करना और उन्हें व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करना है। विभाग ने ऐसे नव प्रवर्तकों, किसानों, विद्यार्थियों, स्टार्टअप, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सामुदायिक संगठनों से अपने नवाचार प्रस्तुत करने को कहा है। इच्छुक प्रतिभागी अपने नवाचार का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन प्रपत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश के मौसम में आए बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। भीलवाड़ा में कल दिन का पारा 8 डिग्री सेल्सियस गिर गया। वहीं जयपुर में 7.2, कोटा में 6.6, अजमेर में 6 और सीकर में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। रात का पारा भी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार इस नए मौसम तंत्र का असर अगले 2 दिन जारी रहने की संभावना है। इस दौरान आंधी चलने और बरसात होने का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद किया। कहा, राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है। सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून की और खेत बचाओ अभियान से देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान जुड़े। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से हम बोल रहे हैं। FM 102, FM 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 KHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR और ऑल इंडिया रेडियो लाइव मोबाइल ऐप पर भी। ये प्रसारण है चंबल चैनल का। और श्रोताओ, इस प्रसारण में अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। यह है कार्यक्रम का पहला गीत।

आलिशा चुनाय, शंकर महादेवन, जावेद अली और साथियों की आवाजें बंटी और बबली फिल्म के इस गीत के लिए थी, जिसके शब्द गुलजार के और संगीत था शंकर, एहसान और लोय का। यह कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम बरसात।

समीर और नदीम श्रवण का गीत संगीत था बरसात फिल्म के इस गीत के लिए, जिसे अलका याग्निक और कुमार सानू ने आवाजें दी। श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं चंबल चैनल पर FM 102, FM 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। फिल्म संगीत का अगला गीत हम आपको सुनवाएं, उसके पहले कार्यक्रम के संबंध में जानकारी आपको दे दें। श्रोता, 9:30 पर बहिने अपना कार्यक्रम सुनेंगी महिला जगत, जिसमें चर्चा प्रोसेस्ड फूड से बचें इस पर होगी। भेंटवार्ता होगी महिलाएं जुड़ें पर्यावरण से, श्रीमती सूरज मीणा से ये भेंटवार्ता आप सुन सकेंगे। जानकारी होगी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इंटर्नशिप पाठ्यक्रम हेतु आवेदन पर और महिलाओं के लिए आसान योगासन। सुनेंगी बहने अपना ये कार्यक्रम महिला जगत फिल्म संगीत के तुरंत बाद 9:30 से। और अब फिल्म संगीत का अगला गीत।

फिल्म खिलाड़ी से श्रोताओं कार्यक्रम का यह अंतिम गीत था। अभिजीत अलकायाग्निक की ये थी आवाजें। फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब बहिने सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, खम्मा घनी, राम राम सा। आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर जहाँ वक्त की सुइयां थम जाती हैं, जब सुबह के बजते हैं 9:30, तब आपके घर के सूनेपन को खुशियों से भरने आपके रेडियो के स्पीकर से होती हुई सीधे आपके दिलों में उतरने आ जाती है कौन, आपकी अपनी रेडियो सखी जिज्ञासा। और सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

सखियों, झांझर का बजना लाजमी है, चूड़ियों का भी बजना लाजमी है, क्योंकि सुबह आपका काम जो शुरू हो गया है और ऐसे में आप सबसे ज्यादा व्यस्त होंगी। और आज तारीख 6 और नई सुबह में आप सभी सखियों के हौसले और हिम्मत के लिए मैं कुछ खास लेकर के आई हूँ। क्या? अपनी डायरी से। आंखों में सपने और हाथों में हौसलों की लकीर रखती हूँ मैं। मुश्किलों के आगे कभी न झुके वो तकदीर रखती हूँ। घूंघट की ओट हो या फिर हो कामयाबी का आसमान, मैं हर चुनौती को चीर कर आगे बढ़ने वाली तासीर रखती हूँ, क्योंकि मैं हूँ दीवानी।

सखियों, ऐसे ही होता है ना, जब आप दीवाने होते हैं, और दीवाने कब होते हैं? जब आप खुश होते हैं, यानी खुशी हमारी दीवानगी का कारण है, और ये वो रूहानी एहसास है जब सुबह होती है ना सखियों, तो वो सुबह हमारे लिए जादुई बन जाती है, और ऐसे में सजती है महिला जगत की महफिल। तो सखियों, मुझे लगता है कि हम औरतें खुदा का क्या नायाब तोहफा है। आँख खुलते ही सुबह से सभी लोगों की आवाज़ों को हम सुनते हैं, और पूरे परिवार के लिए एक ढाल बन जाती है। पतिदेव की कड़क चाय हो या बच्चों की फरमाइशें, मम्मा

आज ये बना दे नाना, और बड़ों की डांट फटकार काम के बीच में सब कुछ हम हंसकर सह लेती हैं। क्यों हंसती हैं? क्योंकि हमें खुश रहना है, हमने यही सोचा है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और पूरे घर को संभालने वाली होम मिनिस्टर के आगे हम खुद को भूल जाती है। अक्सर ऐसे ही होता है ना सखियों, और अक्सर हम अपने आप से कहती हैं आईने के सामने खड़े होकर के, तू कैसी है? और घर की जो धड़कन है जब वो सुस्त हो जाए ना सखियों, तो घर आ जाता है घुटनों के बल। यानी कि हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारा खुश रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबको प्यार बांटने वाली मेरी सखियाँ सहेलियाँ अगर खुद से थोड़ा सा प्यार करना सीख लेना सखियों, तो जीवन में बाहर आ जाएगी। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। जब आप बाहर घूमने जाते हैं ना और तैयार होते हैं, वैसे ही आपको घर के काम निपटा करके नहा धो करके तैयार होना है। रोज एक पहल करके देखिए, आईने के सामने खड़े हो जाइए, आंखों में काजल लगाइए, होठों पे लाली यानी जिसे लिपस्टिक कहते हैं वो लगाइए, चेहरे को सजाइए, बालों को संवारिए। और जब आप कमरे से बाहर निकलेंगे ना, तो बच्चे पूछेंगे मम्मा कहीं जा रहे हो, पतिदेव भी जरूर पूछेंगे कहीं जाना है, घर के बड़े पूछेंगे तो आप बोलेंगे ना सिर हिला करके, ना बिल्कुल कहीं नहीं जा रहे हैं, घर में ही हूँ। लेकिन आप इतने तैयार क्यों हुए? खुद के लिए। जी हाँ, खुद के लिए। ये खुद के लिए, ये स्वयं के लिए करना सखियों बहुत बड़ा है, ये जादुई शब्द है। ये खुद, ये स्वयं आप में जान, सौंदर्य, प्रेम, आत्मविश्वास और सकारात्मकता डाल देगा। जी हाँ, आप खुद के लिए खुद को प्रसन्न रखें, फिर देखिएगा सब अपने आप कैसे ठीक हो जाता है, आपकी सेहत भी। और सखियों, सेहत की बात पर हमें याद आया कि आजकल हमारी रसोई में प्रोसेस्ड फूड यानी जो वो चमकीली थैली में जो खाना बना हुआ आता है ना, उसका उपयोग हम बड़ा करने लगे हैं। और सखियों, मुझे बड़ा दर्द होता है जब मैं देखती हूँ कि हमारी पारंपरिक रसोई में वो मक्के की राबड़ी, वो चूल्हे की सौंधी रोटी, वो ठंडी ठंडी मटके की छाछ और माँ के हाथों से पिसी चटनी, कभी कभी माँ हमें भी तो लगा दिया करती थी, चल जा पापा आने वाले चटनी बना दे, तो वो अब गायब हो रही है और इसकी जगह ले रहा है बाजार के चमकीले रंग बिरंगे डब्बा बंद पैकेट। जी हाँ, ये रंग बिरंगे डब्बा बंद पैकेट ने हमारा जीवन और सेहत खराब कर रखी है। और सखियों, कई बार होता है ना, समय बचाने के चक्कर में या बच्चों के लाड़ प्यार में हम अपनी रसोई में दो मिनट वाले जो नूडल्स हैं, फ्रोजन पराठे हैं और बोतल में बंद जो ये नकली जूस है, इसको हम अहमियत दे देते हैं। दे तो देते हैं, लेकिन पता है इससे आपकी सेहत बेहद खराब हो जाती है, क्योंकि ये एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारी बीमारियों को हमारे शरीर में ला देता है। ये डिब्बाबंद जो खाना है सखियों, इसको महीनों तक जिंदा रखने के लिए इसमें कई तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो पेट में जाकर के चिड़चिड़ापन, सुस्त और बीमारी ला देते हैं। ब्लड प्रेशर हो, मोटापा हो, डायबिटीज हो या दिल संबंधित बीमारियां हैं, ये हम उस चीज से ले लेते हैं सखियों। तो क्या करना है? घर का ताजा बना खाना खाएं, बच्चों को भी अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाएं, क्योंकि उसमें प्यार भी होगा, अपनापन भी होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। और सखियों, स्वस्थ रहने के लिए आज आपको क्या करना है? भाई संगीत भी तो सुनना है, तो चलिए एक मीठा सा प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं और आपके लिए कुछ खास। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान में बसता जहान है, ना समझो खुद को कम तुम किसी भी मोर्चे पर, तुम्हारी खूबसूरती और हौसले से ही तो क्या अरे यार घर में शान है, हम सभी के घर में शान है। तो लीजिए, पेश है आपके लिए खूबसूरत सा गीत और रेडियो सेट के करीब आ जाइएगा, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है महिला जगत, आपका पसंदीदा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
3: का निवेदन
4: है, तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर रखना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
5: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: श्रोताओ एक आवश्यक सूचना सुनिए। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 31 जुलाई 2026 को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसके लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जमा की जाएंगी। पोर्टल का पता है https://awards.gov.in। पोर्टल का पता पुनः सुने https://awards.gov.in। इसके माध्यम से ऑनलाइन ही ये नामांकन और अनुशंसाएं जमा की जानी है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई सन 2026। सूचना समाप्त हुई।
6: पृथ्वी पर मनुष्य हर दिन सफलता के नए प्रतिमान स्थापित करता चल रहा है। संचार, आवागमन, मीडिया और स्वास्थ्य की दुनिया में हलचल मचा देने वाली तकनीकी कामयाबी हमारे देश पर मनुष्य की सफलता का प्रतीक है। लेकिन इन सब के बीच है तृष्णा। तृष्णा मनुष्य की नियति बनती जा रही है और हमारा पर्यावरण इस अदम्य लालसा की भेंट चढ़ता जा रहा है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण का मार्ग जीवन संतुलन के लिए कितना आवश्यक है।

0: आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है पर्यावरण में महिलाओं की भूमिका। और कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्रीमती सूरज मीणा जी। आप पेशे से अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं और हेल्पिंग हैंड्स एनजीओ की सदस्य हैं। आइए इनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पर्यावरण में महिलाओं की भागीदारी पर। तो सबसे पहले सूरज मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है महिला जगत कार्यक्रम में। नमस्कार
1: जी। नमस्कार यशा जी। और आज आपने जो अपना टॉपिक है कि पर्यावरण में की सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी, इसकी शुरुआत करना चाहूंगी। आंचल में अपने समेटकर हरियाली जी। आंचल में अपने समेटकर हरियाली सारी प्रकृति की, हर सुबह है नारी सी ही प्यारी, वृक्षों को सींचकर जो ममता से बढ़ाती, वो नारी ही तो है, वो नारी ही तो है जो इस धरती को स्वर्ग बनाती। जी जिज्ञासा जी, वो नारी ही तो है जो इस धरती को अपने कर्मों से स्वर्ग बनाती।
0: बिल्कुल सूरज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और सबसे पहले बात कि प्रकृति और महिलाओं के बीच ये जो रिश्ता है इतना गहरा क्यों है?
1: महिलाओं और प्रकृति के बीच में जो ये रिश्ता है वो इसलिए गहरा है जिज्ञासा जी, यूं कह सकते हैं कि महिला और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं।
0: जी,
1: ईश्वर ने महिला को जो बनाया है वो प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए ही बनाया है।
0: जी,
1: हम ये कह सकते हैं कि यदि महिला नहीं है तो प्रकृति की कल्पना नहीं की जा सकती, और प्रकृति नहीं है तो महिला की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है माँ बेटों सा रिश्ता है। कहते हैं कि महिला एक ऐसी शक्ति है इस पृथ्वी पर कि वो असंभव को भी संभव बना देती है।
0: वाह,
1: और जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा में महिला जो है वो आधार एक तरह से।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि महिला अपने घर से लेकर के जो उसका पूरा जीवन है वो पर्यावरण पर ही आधारित है।
0: बिल्कुल,
1: उसका घर परिवार, उसके बच्चे, आपस के पास में जो उसका परिवेश है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, पक्षी हैं, या यूं कहें कि जो भी प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है वो पर्यावरण ही है।
0: बिल्कुल,
1: और महिलाएं हैं जो है इस पर्यावरण में अपनी मेहनत से वो हर चीज में ही मतलब सुरक्षा देखती है। कहते हैं ना कि महिला का जो मूल गुण है वो है ममता और सुरक्षा।
0: बिल्कुल,
1: तो जब वो अपने बच्चों की सुरक्षा करती है तो कहते हैं जिज्ञासा जी कि महिला जब किसी को शिद्दत से चाहती है, किसी की सुरक्षा का वो ले लेती है कि मुझे इसकी सुरक्षा करनी ही है, तो अपना पूरा जीवन सौंप देती है।
0: बिल्कुल,
1: तो कहते हैं कि महिला जो है वो पर्यावरण की सुरक्षा में पर्यावरण मित्र बन सकती है और दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है।
0: बिल्कुल, मूलतः आपकी बात निकल के आ रही है कि महिला बच्चे की तरह अपने पेड़ पौधों को प्यार करती है। अब यहाँ पर सूरज जी, मुझे वो दृश्य नजर आ रहा है चिपको आंदोलन, जहाँ पर महिलाओं ने पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। अब आधुनिक युग की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जंगल कम हो रहे हैं, कंक्रीट बढ़ता जा रहा है, ऐसे में महिलाओं का यह संघर्ष किस रूप में बदला है?
1: जैसे आपने कहा चिपको आंदोलन, तो वो पुरानी बात है, लेकिन आज के परिवेश में आपने कहा कि कंक्रीट में भी पर्यावरण को महिलाएं निकाल करके ला रही है, तो मैं इसको एक मेरे घर के उदाहरण से ही दूंगी
0: जी।
1: कि जैसे मैंने गार्डनिंग का मुझे शौक है और मैंने घर में भी बगीचा लगा रखा है
0: जी।
1: मैं पेशे से अध्यापिका हूँ, शाम को घर पहुंचती हूँ तो सबसे पहले अपने पर्स को भी बाहर ही रख देती हूँ और बगीचे के अंदर जाती हूँ और अपने पेड़ पौधों को संभालती हूँ। और जब मेरे हस्बैंड यदि उसमें से एक मनी प्लांट की टहनी को भी काट देते हैं तो मुझे ऐसे गुस्सा आता है कि यार ये क्या कर दिया। जैसे बच्चों के पिता शैतानी करने पर थप्पड़ मार देते हैं और माँ को दुख होता है, तो मुझे उतना ही दुख मेरे पेड़ पौधों की टहनी को टूट जाने से होता है
0: जी।
1: मेरा बगल में जो प्लॉट था जिज्ञासा, वो बंजर था, कुछ नहीं था उसमें
0: जी।
1: लोग कचरा डाल देते थे तो मुझे लगता था कि यार बहुत ऐसे गंदा सा लगता था, लेकिन मैं सोचा यार मैं मेहनत करके इसको बिल्कुल ऐसा जो मुझे सुकून दे वो बना सकती हूँ। मैंने उसमें घास लगाई, आसपास पेड़ पौधे लगाए, फूलों के भी लगाए, उसमें मैंने चीकू के पौधे लगा रखे हैं, अमरूद के पौधे लगा रखे हैं, आम का पौधा लगा रखा है, मतलब अपना समय देती हूँ उसको, तो मुझे सुकून सा नजर आता है,
0: सुकून महसूस।
1: तो आप सोचो कि जो प्लॉट पहले गंदगी का ढेर था, आज आप आकर के देखना कभी वक्त मिले तो मेरे घर, आपको लगेगा कि कितना सुंदर बन गया है वो। वहाँ चार लोग भी आते हैं तो कहते हैं कि वाह, यहाँ बैठ करके मन को सुकून और शांति सी मिल रही है।
0: सखियों सुन रहे हैं ना आप, कितने प्रेम से इन्होंने हमें न्योता भी दे दिया कि आप घर पर आए, हम घर पर जरूर आएंगे। और इसके साथ हम सूरज जी बात करें जलवायु परिवर्तन की, जो कि एक बहुत बड़ा वैश्विक संकट के रूप में हमें नजर आ रहा है, तो इस विषय में आपके क्या विचार है?
1: जलवायु अपने आप परिवर्तित नहीं हो रही जिज्ञासा, इसे हम लोग ही हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित कर करके जलवायु को दूषित कर रहे हैं
0: जी।
1: और कहते हैं कि प्रकृति पर जब किसी तरह का कोई आघात होता है तो प्रकृति भी रोती है, उसे हम देख नहीं पाते। और प्रकृति जब रोती है तो सबसे पहला जो आंसू है महिला की आंख से निकलता है
0: जी।
1: और मैं ये कहना चाहूंगी कि ठीक है हम शहर की महिलाएं भी संघर्ष करती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का जो सबसे बड़ा भुगतान करना पड़ता है वो गांव की महिलाओं को करना पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि पेड़ पौधे कट रहे हैं, बरसात कम हो रही है, पानी सूख रहा है, तापमान बढ़ रहा है
0: जी।
1: गांव

0: की औरतें पानी की बूंद के लिए भी तरस जाती है। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि जब मैं छोटी थी, गर्मियों की छुट्टियों में मैं गांव आया करती थी, तो मेरी माँ, भाभी, बहनें और हमारे आसपास की महिलाएं कोसों दूर कुएं से पानी भरने जाती थी। मैं भी उनके साथ जाती थी, तो वो कुआं जब तेज गर्मी में सूख जाता था तो कहते हैं ना कि औरत तो पत्थर को खोद कर भी पानी निकाल सकती है। तो फिर गांव में मैंने छोटी छोटी कुइयां औरतें खोदती थी और उस कुई से पानी छान करके भर के ला करके अपने परिवार को पालती थी,
1: जो कि बड़ा कठिन
0: जो कि बड़ा कठिन है, लेकिन उन महिलाओं के लिए तो एक तरह से तपस्या है। कहते हैं ना कि महिला किसी को दिल से चाहती है तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। तो महिला जो कर रही है प्रकृति प्रेमी तो है या पर्यावरण मित्र है
1: जी,
0: उसके साथ उसके परिवार के लिए यदि उसे कुछ भी करना पड़े तो महिला अपने परिवार के लिए कुछ भी कर जाएगी। जिज्ञासा, चाहे वो महिला अनपढ़ हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसी उच्च पद पे हो
1: जी।
0: तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन औरत उस जलवायु परिवर्तन को भी अपनी हिम्मत से हरा रही है।
1: बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल सही कही। और गांव का जो उदाहरण दिया

0: रहेगी जिज्ञासा, चाहे वो महिला अनपढ़ हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसी उच्च पद पे हो
1: जी।
0: तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन औरत उस जलवायु परिवर्तन को भी अपनी हिम्मत से हरा रही है।
1: बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल सही कही। और गांव का जो उदाहरण दिया वाकई में काबिले तारीफ है। हम शहर वाले गांव की परिस्थिति को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते
0: जी, जी।
1: तो जैसा आपने बताया कि हमारे पास में अभी पानी है, लेकिन हमें उसे व्यर्थ खर्च नहीं करना है, उसे बचा करके रखना है, और शायद थोड़ी थोड़ी बचत ही संरक्षण की ओर हमें ले जाती है। अब बात तो सकारात्मक पहलू की करते हैं सूरज जी, जहां महिलाएं छत पर बागवानी कर रही है, और आपने देखा होगा बागवानी के साथ में जीरो वेस्ट
0: जी,
1: स्टाइल
0: जी,
1: को भी
0: जी
1: बढ़ावा दे रही हैं, तो इस बदलाव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: ये एक सकारात्मक बदलाव है हमारे लिए पर्यावरण के प्रति
1: जी,
0: क्योंकि हमारे पास शहरों में एक लिमिट की जगह होती है।
1: बिल्कुल,
0: है ना, हम चाहें गांव की तरह में खेत मिले या खुली जगह मिले, वो तो संभव नहीं है
1: जी।
0: यहाँ पे मकान है लोगों के, लेकिन यदि मकान के अंदर भी औरतें वो अपनी छत पे जैसे प्लास्टिक के उनके पास कंटेनर है, या उनकी टंकियां टूट जाती है, या उनके पास छोटे छोटे गमले हैं, उनके अंदर ही वो खाद बीज डाल करके वहां पे सब्जियां उगा देती है, जैसे टमाटर है, बैंगन है, मेथी है, हरा धनिया है, मतलब हमारे घर में जितनी भी काम आने वाली सब्जियां हैं। तो महिलाएं जैसे अपना समय भी सदुपयोग भी कर रही है
1: जी,
0: अपने बच्चों को प्रेरित भी कर रही है। कहते हैं बच्चा माँ को देख करके सीखता है।
1: बिल्कुल,
0: और महिला को अपने घर में ऑर्गेनिक सब्जियां मिलेगी तो एक तो आर्थिक रूप से फायदा, दूसरा मानसिक संतुष्टि, तीसरा परिवार भी खुश और महिला भी खुश, और कहते हैं कि आसपास यदि हरियाली है तो मन को सुकून सा मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलती है।
1: ऑक्सीजन मिलती है, और सबसे बड़ी बात है कि आप जो एक खाली वक्त है अपना, वो उस खाली वक्त का आप इतना अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं कि आपके आसपास हरियाली है, प्रसन्नता है, शांति है और सुकून है।
0: जी जी बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगी जिज्ञासा, आपने कहा जीरो वेस्ट
1: जी,
0: हमारी किचन में जो हम सब्जियां हैं, फल फूल है, काम में लेते हैं, कई लोग उनको फेंक देते हैं अज्ञानतावश। मैं जैसे केले के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, टमाटर के छिलके हैं, और चाय पत्ती जो हर घर में बनती है और दिन में तीन चार बार बनती है, हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन नहीं, मैं चाय पत्ती को, चाय के पत्ती को चार पांच बार पानी, साफ पानी से करके छान करके उस चाय पत्ती को एक थाली में रख लेती हूँ।
1: यानी आप उसे साफ कर लेते हैं?
0: उसको साफ कर लेती हूँ, क्योंकि यदि उसमें मीठा रहेगा तो फिर चींटियां लग जाएगी और पेड़ खराब हो जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो उसको थाली में रख लेती हूँ, प्याज के छिलकों को रख लेती हूँ, केले के छिलकों को रख लेती हूँ, और मैं उनको धूप में सुखा देती हूँ। दो तीन दिन वो तेज धूप में रहते हैं, फिर मैं उनको पीस लेती हूँ, पीस करके उसमें थोड़ी हल्दी डालती हूँ, तो वो एक तरह से मेरे पेड़ पौधों के लिए ऑर्गेनिक खाद का रूप, जब मैं पेड़ों की गुड़ाई करती हूँ तो एक एक दो चम्मच पेड़ों में डालती जाती हूँ। और उसके अलावा मेरे घर के सामने जैसे गाय भैंस गोबर कर देती है, उस गोबर को इकट्ठा करती हूँ, मैं खुद ही खाद बनाती हूँ, तो मुझे पेड़ पौधों के लिए जो देसी खाद है वो भी मिल जाती है, और मेरे पेड़ पौधे इस देसी खाद से, मतलब कोई नुकसान नहीं, कोई केमिकल, थोड़ी मेहनत है, पर मेरे पेड़ पौधे बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं।
1: बहुत अच्छी बात है। सूरज जी, बात की शुरुआत की कि आप एक अध्यापिका हैं, तो जब आप क से कबूतर और ख से खरगोश पढ़ाती हैं, और जब प से पर्यावरण आता है, तो उसका पाठ नन्हे दिलों में आप कैसे जगाती
0: हैं? मेरा मानना है जिज्ञासा जी कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसको हम प्रैक्टिकल रूप से कुछ करके दिखाएंगे
1: जी,
0: तो बच्चे जिज्ञासा और उत्सुकतावश वो ज्यादा अच्छी तरह सीखेंगे
1: जी।
0: क्योंकि हम किसी को सैद्धांतिक ज्ञान देंगे, किताबी ज्ञान देंगे, रटवाएंगे तो वो चीज बच्चा भूल जाएगा, लेकिन बच्चा उस चीज को यदि प्रैक्टिकल करके देखेगा तो सीखेगा और उसके अमिट छाप बन जाएगी
1: जी।
0: अप्रैल में मेरे एक पाठ आया था बच्चों का
1: जी,
0: बीज अंकुरण
1: जी,
0: तो मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो छोटे छोटे चौथी पांचों के बच्चे हैं, ज्यादा नहीं समझते, तो मैंने बच्चों से कहा कि बेटा तुम बीज से पौधा बनाना चाहोगे? तो सब बच्चों ने कहा जी मैम। मैंने कहा बेटा कौन कौन से बीज रहते हैं तुम्हारे घर? तो अब बच्चों ने, किसी ने कहा मैम गेहूं, किसी ने कहा जो, किसी ने कहा चने। मैंने कहा बेटा सब कल अपने घर से बीज लेकर के आना
1: जी।
0: और मैंने कहा आम खाते हो? कि हाँ मैम, अभी अप्रैल में आम आ रहे हैं ना, तो आम की गिठली लाना, जामुन का बीज लाना। तो सब बच्चे अपने अपने घर पे जो भी था लेकर के आए, अपने मिट्टी का सकोरा सा था उसमें मिट्टी डाली, और मैंने बच्चे से कहा कि इसमें गेहूं के, चने के और उसके दाने हम डाल देते हैं, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया, उसको रख दिया।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों से मैंने कहा जो मैंने आज किया उसको तुम घर पे जाकर के करना बेटा
1: जी।
0: तो बच्चों ने जाकर के किया जो मैंने उनको बताया था
1: जी।
0: चार पांच दिन बाद मैंने स्कूल में भी देखा कि जो चने के बीज थे और जो गेहूं के बीज, मतलब पौधा बन गया। और दूसरे बच्चों ने भी कहा कि हाँ मैम, जो आपने कहा था हमने घर जाकर के देखा, और हमने उस पौधे को ऐसी जगह पे रखा, उस बर्तन को, कि जहाँ से सूर्य का प्रकाश भी मिले, हवा भी मिले, और बच्चों ने पानी भी डाला। तो आप सोचो जिज्ञासा, कि बच्चे दूसरे दिन आकर के कह रहे थे दो चार दिन बाद कि मैम जो आपने बीज का दिया था ना, वो बीज तो हमारे उग भी गया। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे और सीख रहे थे, तो मैंने ये उनको बच्चों को ये प्रैक्टिकल इसलिए करके दिखाया।

0: कि बच्चों बीज से पौधा कैसे बनता है, पौधे से फिर पेड़ कैसे बनता है, और फिर पेड़ से हमें क्या क्या फायदे हैं। तो बच्चे ने प्रैक्टिकल करके देखा तो उसको प्रकृति के प्रति प्रेम की तरह प्रेरित भी हुआ वो, और कुछ सीखा भी।
1: बिल्कुल,
0: और शायद जो मैंने ये सिखाया वो जीवन भर याद रहेगा कि कैसे बीज से पौधा बनता है।
1: बिल्कुल सही बात है। और आपका सिखाने का तरीका बड़ा नया रहा। आपने कहा अभी जब अपनी बात बता रहे थे कि मैंने बच्चों को प्रयोग करने के लिए कहा कि बच्चों आप क्या खाते हैं, तो अचानक अनायास सूरज जी मेरे मुंह से भी क्या निकला, जी मैडम
0: जी।
1: तो शिक्षिका का जो अस्तित्व है, या यूं कहें शिक्षिका हमेशा सम्माननीय नजरों के रूप में हमें नजर आती हैं, तो वो कहीं पर भी हो उनका सम्मान समाज में सबसे ज्यादा बड़ा है, अग्रणी है।
0: धन्यवाद जिज्ञासा जी।
1: तो आप इस पद पर हैं तो इसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देती हूँ। ये वो सम्मान है जो हमें ऊंचे पद की ओर ले तो जाता ही है, लेकिन कहते हैं ना कि बच्चा बड़ा होकर के कहीं और निकल जाता है, लेकिन शिक्षिका वहीं रह जाती है। आपने अपने हाथों से, या यूं कहें कि बच्चों का जीवन नहीं बच्चों का भविष्य संवारा है।
0: बिल्कुल जिज्ञासा, एक बच्चे ने आकर के मेरे पैर छुए,
1: बिल्कुल,
0: तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा बेटा तुम कि मैम आप भूल गई, लेकिन मैं जानता हूँ सूरज मैम मैं
1: हाँ।
0: अब कोटा में इतने सालों से नौकरी कर रही हूँ जिज्ञासा
1: जी,
0: मेरा पद ऐसा है कि एक शिक्षक के लिए उसका व्यक्तित्व बच्चों के लिए आदर्श है।
1: बिल्कुल,
0: मेरा प्रयास रहा है जब से मेरी नौकरी लगी है कि मैं जीवन में मतलब अपना व्यक्तित्व इस तरह का रखूं कि बच्चे मेरे व्यक्तित्व से कुछ सीखें।
1: जी,
0: शिक्षक बच्चों का आईना होता है, वो अपने आप को देखता है।
1: जी,
0: बच्चे मुझे ऐसा कहते हैं कि मैम हम आप जैसा बनना चाहते हैं।
1: अरे वाह।
0: तो मुझे बहुत खुशी होती है।
1: बिल्कुल,
0: कि मैं बहुत कुछ नहीं करती, बच्चों को मेरा एक संदेश रहता है कि बेटा हम अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के समाज के लिए भी जीना चाहिए। दूसरा, कई बच्चे कॉपियां नहीं ला पाते, मैं उनको कोशिश करती हूँ कि मैं कॉपियां दिलाऊं। मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ, बेटा हम पढ़ लिख के नौकरी लगे ना लगे, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बने।
1: बिल्कुल सही बात है, इंसान का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: जी जी जी।
1: अंत में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप कोई सीख हमारी सखियों को, क्योंकि महिला जगत कार्यक्रम है।
0: मैं कहूंगी कि हम हर वर्ष हमारे बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं।
1: जी,
0: है ना, हमारी शादी की सालगिरह आती है, कई ऐसे मौके आते हैं तो हम उसमें खुशियां मनाते हैं, तो उस खुशी के मौके पे हम एक पौधा जरूर लगाएं अपने घर में, और दूसरे जो हमारे मेहमान आते हैं उनको भी प्रेरित करें कि हम एक पौधा लगा करके प्रकृति को बचा सकते हैं, एक अच्छी पहल कर सकते हैं। दूसरा जिज्ञासा मैं कहना चाहूंगी, हम उपहार देते हैं लोगों को।
1: जी,
0: तो हमें कोई भी हमारे यदि अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, कोई इस तरह का समारोह हो रहा है, तो हम हमारे मेहमानों को कोई दूसरा उपहार नहीं दे करके एक पौधा उपहार में दें।
1: जी,
0: और दूसरे लोग प्रेरित होकर के उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि मुझे भी एक पौधा उपहार में मिला था, आज उस पौधे से मैंने मेरे घर में 10 जेड प्लांट तैयार कर दिए हैं, और उन जेड प्लांटों को मैं उपहार स्वरूप दे रही हूँ। और मेरी इच्छा है जिज्ञासा कि मेरे बेटे की कभी शादी होगी तो महिला संगीत में मैं कोई उपहार न दे करके, चाहे 100 पौधे हों, 200 पौधे हों, 500 पौधे हों, तो अपना यह है कि खुशी का कोई अवसर हो तो हम एक पौधा जरूर लगाएं, ताकि हम हमारे प्रकृति प्रेमी बन सकें, पर्यावरण मित्र बन सकें।
1: बहुत अच्छी बात है, और आपने जो संदेश दिया है महिलाओं के लिए वो काबिले तारीफ है। उपहार तो हम सभी को देते हैं, लेकिन पौधा देना खुशहाली का और हरियाली का प्रतीक दोनों है। तो ये जो आपकी नई पहल है, हमारी सखियां आपकी बात सुन रही हैं और जरूर वो भी इस नई पहल को अपनाएंगी। चूंकि आप कार्यक्रम में आई, आपने इतनी अच्छी बात कही, इतनी अच्छी जानकारी दी, तो यही बात कही जा सकती है, जो सहती है मौन रहकर हर जख्म जमाने का, वही जानती है हुनर उजड़े चमन को बसाने का। वो गौरा देवी का साहस, वो अमृता की अमर कहानी, पेड़ों से लिपटकर दी जान पर हिम्मत कभी न हारी। वो चूल्हे का धुआं सहकर भी आंगन में तुलसी रोपती है, धरती अगर माँ है यारो तो नारी उसकी परछाई है, इस बंजर होती दुनिया में वही हरियाली लाई है। आज आपने कार्यक्रम में अपनी शिरकत की, इतनी अच्छी जानकारी हमारी सखियों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सखियों, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता पर्यावरण में महिलाओं की भागीदारी, और हमारी आज की मेहमान रही सूरज मीणा। सखियों, 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। योग अगर हम नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये हमें ऊर्जावान रखता है, तनाव मुक्त रखता है और प्रसन्न रखता है। इसी के साथ सखियों, चलते चलते यही बात कहूंगी, वजूद से तेरे इस जहां में रंगत है, तो खुद को पहचान, तुझमें ही ईश्वर की मूरत है। अपनी हिस सेहत का ख्याल रखिए, योग करिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का। महिला जगत के अगले अंक में हम फिर मिलेंगे, तब करें

0: बहिनें अभी अपना कार्यक्रम सुन रही थीं महिला जगत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों के लिए हम आपको लिए चलते हैं।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूँ बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं, शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर। शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है, और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कहकर गई है पता है? कह रही थी जो हुक्म, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा, और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर, कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी, पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है, और तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूं? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी। बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें ये चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा, मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किराएदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। दो दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई जैसे मेरी बुराई कर रही हूँ और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी

हो तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं, और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है। वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है। प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी। रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आई, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थी। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और

डर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुनूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ, आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में, संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा, और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के

बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर, अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटाकर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना, जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतनी सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना, माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना, तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी। मैंने कहा तो था तुमसे, माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी, आप इतनी सुबह? हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो, तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है, तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठी गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ, मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी, वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी, और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी। चंदेरी की साड़ी, मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी, इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी, कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश है ना? भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर

करवाया, मुझे क्या आता है। भावना, अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी। भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी, ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं। और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना।

क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है, मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया, और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आई। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे। अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था मौसम। गीतकार थे गुलजार साहब और संगीत दिया था मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: यह आवाज थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इसे लिखा था शहरयार ने और धुन बनाई थी खयाम साहब ने।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ

0: साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहेब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में मखदूम मोहिउद्दीन की लिखी है रचना। गायिका है छाया गांगुली और फिल्म का नाम है गमन।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत। जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साथ साथ की ये गजल। इसे जावेद अख्तर ने लिखा है और संगीत दिया है कुलदीप सिंह ने।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
3: लीजिए अब सुनिए हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं आशा भोसले और सत्यशील देशपांडे की। ये फिल्म है लेकिन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और अब आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए मैटिनी शो।

मैटिनी शो में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म थ्री इडियट्स के कुछ गीत। जी हाँ, फिल्म थ्री इडियट्स, जिसे आपने भी देखा होगा, इसी पर आज हम कुछ बातचीत कर लेंगे। क्यों, ठीक है ना? तो आप सभी जानते हैं कि फिल्म थ्री इडियट्स बहुत ही फेमस फिल्म है और ये फिल्म कई विषयों की पड़ताल के लिए जानी जाती है, खासतौर से शिक्षा प्रणाली की जो मुद्दे हैं, शिक्षा प्रणाली के मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी जो आलोचनाएं हैं और शिक्षा से जुड़े जो सामाजिक दबाव हैं बच्चों पर, परिवार पर, उस पर केंद्रित रही ये फिल्म थ्री इडियट्स। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, आवाजें सोनू निगम, शान और स्वानंद किरकिरे की। गीत को स्वानंद किरकिरे ने ही लिखा है और धुन शांतनु मोइत्रा।

0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स की। इसमें ये फिल्म 2009 में आई थी और आमिर खान के अलावा आर माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर, बोमन ईरानी और ओमी वैद्य मुख्य भूमिकाओं में थे। और इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया था, गीत स्वानंद किरकिरे ने लिखे थे और संगीत था शांतनु मोहित्रा का। और हाँ, हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म में आमिर खान ने फुनसुक वांगड़ू के रूप में भूमिका निभाई थी रेंचो की, जिसे रेंचो के नाम से हम जान रहे थे। शर्मन जोशी जो है राजू रस्तोगी के रूप में बहुत ही अच्छा किरदार निभा रहे थे और आर माधवन फरहान कुरैशी के रूप में थे। करीना कपूर ने पिया के रूप में अपनी बहुत ही खास भूमिका निभाई और इस फिल्म का केंद्र बिंदु थे बोमन ईरानी, जिन्होंने प्रोफेसर वीरू वायरस सहस्त्रबुद्धे के रूप में अपनी भूमिका निभाई। ओमी वैद्य ने चतुर रामलिंगम जो साइलेंसर के रूप में थे अपनी काफी अच्छी भूमिका निभाई और मोना सिंह मोनिका के रूप में थी। राहुल कुमार को मिलीमीटर के रूप में फिल्म में दर्शाया गया था। तो कुल मिलाकर ये फिल्म जो थी बहुत ही शानदार तरीके से एक शानदार विषय पर फिल्माई गई। निर्माता विधु विनोद चोपड़ा थे जिन्होंने बहुत ही सुंदर विषय उठाया। और कहते हैं कि फिल्म जो है चेतन भगत के उपन्यास 5.1 पर आधारित थी और इस फिल्म की पटकथा यानी स्क्रीन प्ले राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने लिखा था। और जैसा कि हमने बताया, शांतनु मोहित्रा ने संगीत दिया था और स्वानंद किरकिरे ने अपने गीतों से इस फिल्म में चार चांद लगा दिए थे।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।
0: ये स्वर है सूरज जगन और शर्मन जोशी के।

0: तो मैटिनी शो में आज हम बात कर रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स की। थ्री इडियट्स फिल्म भारतीय हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मील का पत्थर माने जाने वाली फिल्म है और ये फिल्म शिक्षा प्रणाली की कमियों और सामाजिक दबाव, जिस पर मैंने अभी बात कही थी आपसे, उस पर एक तीखा व्यंग्य है जो दर्शकों को अपने जुनून को चुनने की एक सलाह देता है, संदेश देता है और जीवन को सरलता से जीने का भी संदेश देती है ये फिल्म। क्योंकि जिंदगी में हम आज इतने तनावग्रस्त हैं, हमारे बच्चे जो कैरियर चुनना चाहते हैं अच्छा मनपसंद, लेकिन इतना बोझ है शिक्षा का कि वे समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए। तो ये फिल्म स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं, जो एजुकेशन है, वो सिर्फ रटने वाली विद्या पर बढ़ावा देती है, यानी नवाचार, जो कहा जाता है कि नवाचार कीजिए, उस पर इतना नहीं जोर देती है जितना कि रटने जैसी विद्या पर, ताकि बच्चे किसी पोस्ट पर जब जाते भी हैं, किसी कैरियर को चुनते भी हैं, तो कई बार उनका पढ़ा हुआ कहीं काम ही नहीं आता है। तो ये फिल्म ये भी दर्शाती है कि जो माता पिता हैं वो बच्चों पर कैरियर का विकल्प थोपे नहीं कि आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, यानी आपको काबिल बनना है, कामयाबी की राह पर चलना है और इसके लिए आपको अपने सपने देखने हैं, अपने सपनों के पीछे भागना है। ये फिल्म साफ संदेश देती है कि काबिल बनो और कामयाबी तो आपके पीछे झक मार कर आएगी, बस तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है।
1: जाने नहीं।
0: और मेहनत भी ऐसी जो आपके सपने हैं, जो आपके ख्वाब हैं, जो आपकी कल्पना में हैं।

जी तो आप सभी ने फिल्म थ्री इडियट्स देखी होगी, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो इंसानी जीवन का संघर्ष है उसकी एक शानदार कहानी है। और ये फिल्म दर्शाती है कि हमें अपने अस्तित्व के लिए बचपन से ये लड़ाई लड़नी शुरू करनी होती है, क्योंकि बच्चा जब दुनिया में आता है तो अपने माता पिता की आशाओं से भरी निगाहों को देखता है, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने या कोई बड़ा अधिकारी बनकर परिवार का नाम रोशन करे। माता पिता इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं कि उनकी अपेक्षाएं वास्तव में उनके बच्चों को लाभ पहुंचा रही हैं या उनके मानसिक दबाव को बढ़ा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं, बल्कि या ऐसा कि उनका कोई निजी स्वार्थ होता हो, लेकिन हाँ, माता पिता भी कई बार जरूरत से ज्यादा बच्चों पर जब बोझ लाद देते हैं तो फिर एक अलग कहानी पैदा हो जाती है। माता पिता की अपेक्षाओं का दबाव और बच्चे को और ज्यादा गंभीर बना देता है, तनावग्रस्त बना देता है और अपनी जिंदगी में जो बचपन की दुनिया है उसे भूलकर एक मानसिक दबाव की जिंदगी जीने लगता है। तो ये फिल्म एक ऐसे पिता की कहानी बताती है जो अपने बेटे को, जिसे वन्य जीव फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इंजीनियरिंग करने के लिए मजबूर करने की अपनी गलती को अंततः स्वीकार करता है और उसे अपने दिल की बात मानने की अनुमति देता है, जो कि हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे से बात करे और पूछे कि आखिर उनका बच्चा क्या बनना चाहता है और उस दिशा में क्या वो सच में मेहनत करेगा या खाली ख्वाब देख रहा है या सपने देख रहा है। ये बातचीत करने की आज परिवार में बेहद जरूरत है, ना कि अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को बच्चों पर लादने की। फिल्म थ्री इडियट्स यही कहती है संदेश।

ये आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की थी। तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स की, और आप सभी ने अगर ये फिल्म देखी है तो निश्चित रूप से आप इस फिल्म को पसंद किया होगा। और इस फिल्म में शायद पहली बार शहरी कॉलेज जाने वाले छात्रों को एक सही रूप से बोलते हुए या कपड़े पहने हुए दिखाया गया है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बहुत ही बड़े रूप में, एक अलग रूप में कॉलेज का दृश्य दिखाई देता है जो आम कॉलेजों से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इस फिल्म में वैसा ही दृश्य दिखाया गया है जैसा फिल्मों में हमारे जीवन में भी वैसा ही दृश्य हमें कॉलेज का मिलता है। और दोस्ती की एक दिल को छू लेने वाली और दिल को उत्साहित कर देने वाली कहानी है, और जहां इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। और हमें लगता है कि इस तरह की फिल्में अगर बनाई जाए तो निश्चित रूप से ये फिल्में हमें कुछ सीखने को तो देगी ही, और आम लोगों से भी फिल्मों का कनेक्शन जुड़ेगा। क्योंकि थ्री इडियट्स जैसी फिल्में जब बनती हैं जहां पर किसी विषय को, किसी मजबूरी को, किसी सपने को, किसी सच्चाई को उठाया जाता है, तो वो आम लोगों से कनेक्ट करती है फिल्म, ऐसा माना गया है। ये है थ्री इडियट्स फिल्म का आखिरी गीत, शान और शांतनु मोइत्रा की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे की रचना, शांतनु मोइत्रा का संगीत।

चल रहा वो, हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाती।

मैटिनी शो में अभी आप सुन रहे थे फिल्म थ्री इडियट्स के कुछ गीत। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर

0: पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में यह घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सहअध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानव सुथार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमने राजेंद्र कृष्ण जी के लिखे गीतों को शामिल किया है। आज उनका जन्मदिन है, तो आइए सुनते हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में गीतकार राजेंद्र कृष्ण की रचनाएं।

सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में हम आपको राजेंद्र कृष्ण की लिखी गीत रचना सुनवा रहे हैं। युगल स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के, फिल्म का नाम है अमरदीप।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और सी रामचंद्र का गाया हुआ फिल्म का नाम है आजाद। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की और संगीत सी रामचंद्र यानी चितलकर का।

कार्यक्रम में आप सुनिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की फिल्म का नाम गोपी।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म ब्लैकमेल में।

कार्यक्रम का अगला गीत मदन मोहन के संगीत निर्देशन में है। गीतकार राजेंद्र कृष्ण तो है ही, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है मन मौजी।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्यों? क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: खत लिख दे।
3: राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत, मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजें फिल्म शहनाई के लिए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म शारदा से आपके लिए चुना है। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और आशा भोंसले, राजेंद्र कृष्ण के बोल तुम्हें ही और सी रामचंद्र का संगीत है।

0: लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज थी फिल्म शारदा के लिए।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने गीतकार राजेंद्र कृष्ण को याद किया।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भीलवाड़ा जिले के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया है। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने पानी और बिजली की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। डबल इंजन की सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा हर व्यक्ति को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने गांव में मॉर्निंग वॉक और धर्मी तालाब के पास योगासन भी किया।

0: इससे पहले कल रात उन्होंने ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर खुशखबरी मिली है। बाघिन T-124 रिद्धि नन्हे शावकों के साथ नजर आई है। शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। वहीं वन विभाग ने एहतियात के तौर पर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है।
1: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर खुशखबरी मिली है। पर्यटकों को नाल घाटी वन क्षेत्र में बाघिन T-124 रिद्धि दो नन्हे शावकों के साथ नजर आई है। पर्यटकों के अनुसार शावक 1 से 2 सप्ताह के हैं तथा इनकी संख्या अधिक भी हो सकती है। 2019 में जन्मी बाघिन रिद्धि प्रसिद्ध बाघिन मछली की वंशज है तथा एरोहेड की बेटी है जो तीसरी बार माँ बनी है। शावक देखे जाने की खबर के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में हर्ष की लहर है। वहीं वन विभाग की ओर से क्षेत्र में सघन निगरानी और गश्त के निर्देश दिए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले महीने की 31 तारीख तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेजे जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन और अनुशंसाएं भेजने की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू की गई है। देश की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में आने वाले पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2026 के दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये समारोह राष्ट्रपति भवन में 23 जून को आयोजित किया जाएगा। और अब मौसम। राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की बरसात दर्ज की गई। प्री मानसून गतिविधियों के चलते करौली, दौसा, डूंगरपुर, नागौर और जयपुर सहित कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। सबसे अधिक 14 मिलीमीटर पानी बीकानेर के डूंगरगढ़ और झालावाड़ के डग में बरसा। 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। इससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। हालांकि विभाग ने 8 जून से फिर से तापमान में बढ़ोतरी की आशंका व्यक्त की है। इस बीच अगले 24 घंटे तक पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काका मेगाराहा में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से और जापान ने मलेशिया को 8-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हमें आपकी संगत का असर हो गया है, या यूं कहें कि आपको हमारे साथ रहने का असर है कि हमारी पसंद मिलने लग गई है। तो बस आज के गीतों में रे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बताइए कौन से गीत हो सकते हैं वो। आपने बहुत सारे गीतों को बताया भी है और उसका जिक्र हम करने भी वाले हैं। लेकिन हाँ, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि फिल्मी गानों में हमारे गीतकारों ने अलग अलग प्रयोग किए हैं और ये प्रयोग बहुत सफल भी हुए हैं। आज के सभी गीतों में रे का संबोधन है ना। कहते हैं कि हिंदी और उर्दू साहित्य का एक बहुत ही काव्यात्मक और भावनात्मक तरीका है ये, जिसमें

हम किसी निर्जीव वस्तु, विचार या खुद के मन को सीधे पुकारते हैं तो उसमें संवाद करते हैं और कहते हैं सुन रे, है ना। बस इन्हीं गीतों को आज हमने चुना है जहां गीतकारों ने उसमें खुद से, किसी वस्तु से, किसी विचार से या किसी अपने से सीधे संवाद किया है रे के माध्यम से, जैसे कि सूरज रे जलते रहना। तो सुनिए आज का ये पहला गीत।

देखा आपने सूरज रे जलते रहना, कितना खूबसूरत गीत। हेमंत कुमार की आवाज थी, हरिश्चंद्र तारामती फिल्म का नाम था, कवि प्रदीप की रचना थी ये और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आपने सुना इस गीत को और महसूस किया होगा कि यहाँ कवि प्रदीप प्रकृति के सबसे तेजस्वी तत्व सूरज से बात कर रहे हैं और उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। सूरज रे जलते रहना, बुझना मत जलते रहना, कितना खूबसूरत तरीके से गीतकार ने इस गीत को लिखा है ना। हमारी श्रोता लिखती है कि कोई चीज खो जाए और न मिले तो मन कैसा उदास हो जाता है, मन का रेगिस्तान उसी पल सूख जाता है। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, पर ऐसा नहीं होता। इंसान नियति के आगे झुककर जीने को बाध्य है और जब हम जानते हैं कि हाल कैसा भी हो जीना तो पड़ेगा ही, तो क्यों नहीं जीवन थोड़ा हंसकर और थोड़ा भूल कर जिया जाए। जीवन को जितनी गंभीरता से लिया जाएगा उतनी ही पीड़ा होगी। इसे कुछ इस तरह से जियो कि यह उम्र एक सड़क है और हम सिर्फ चलने वाले हैं, हमें सिर्फ चलते जाना है। बहुत सुंदर।

वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की इस आपाधापी में अक्सर मन का सागर उथला और शांत हो जाता है, उम्मीदों का किनारा छूटता सा लगता है और आत्मा एक सुकून भरी छांव की प्यासी हो जाती है। ऐसे में खुद को दोष देने के बजाय जरा उस वृक्ष को देखिए जो खुद तेज धूप सहकर पथिकों को शीतल छाया देता है। यही इस नश्वर जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सार है, दूसरों के जीवन में प्रेम और प्रकाश को बांटना। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात कही है कि अगर कोई ये पता लगा ले कि मन की उत्पत्ति कैसे हुई तो मैं उसे वैज्ञानिक कहूंगी। सब कहते हैं मन मेरा है, लेकिन मन क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई और ये किससे बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका उत्तर नहीं मिलेगा। मन की उत्पत्ति निरंतर बदलती रहती है, इसलिए कोई नहीं बता सकता कि ये कैसे अस्तित्व में आया। मन को ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों के बीच कड़ी यानी मध्यस्थ माना गया है। अंतःकरण के चार भाग, अंतःकरण के चार अंगों में से मन एक है, शेष तीन बुद्धि, चित्त और अहंकार। कार्य मन का मुख्य स्वभाव है संकल्प विकल्प, चंचलता दुविधा और इच्छाएं पैदा करना। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन के अंदर भी एक रेगिस्तान होता है, बाहर भले हरियाली हो लेकिन अंदर सूखी और गर्म रेत। मन का रेगिस्तान पानी नहीं मांगता, वो मांगता है बस इतना कि कोई उसे समझे बिना, जज किए बिना उस उदास मन को बस वो जो थक गया है मुस्कुराते उसे मुस्कुरा कर देखे। उदास मन के भीतर भी एक कोना होता है जहां उम्मीद की एक बेल जिसे सींचना पड़ता है, खुद से बात करके, खुद को समझ के और बेवजह खुद को ही गले लगाकर। आपने बहुत सारे गानों का जिक्र किया है, जो इसमें से आपका एक गाना हमसे मिलता है, सूरज रे जलते रहना। तो आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, शब्द रे। सोना रे,

आशा भोसले मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। कितनी प्यारी इल्तजा कर रही है महबूबा अपने महबूब से, ओ मेरे सोना रे। जी तो आज के दो सवाल नोट कर लीजिए। वैसे तो आपने अपनी टिप्पणियों में बहुत सारे गीत लिखे हैं जो हमारी गीतों से मेल भी खा रहे हैं और उसके अलावा भी गीत लिखे गए हैं, तो वही हमारा सवाल है कि रे का ये प्रयोग किन किन गीतों में हुआ है, आप बताइए। जैसे ही आप बताएंगे हो सकता है आपकी पसंद हमारी पसंद से और मेल खा जाए और इसके अलावा कुछ अन्य गीत भी हमारी नजर में आ जाए। तो रे का प्रयोग यहाँ और फिल्मों में किन किन गीतों में किया गया है इसका उल्लेख आपको करना है, कम से कम 4 या 5 गीत। और दूसरा सवाल ये है कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी गीतकार जब लिखता है जैसे सोना रे सूरज रे, ये क्यों और कब। जैसे कि मैंने पहले कहा भी था, आप अपनी कल्पना से बताइए, अपने भावना से बताइए कि रे का ये काव्यात्मक रूप गीतकार कब कब गीतों में किस रूप में इस्तेमाल करता है। अगर वो कहता है सूरज रे चंदा रे मन रे तो क्यों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइएगा कम से कम शब्दों में।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत आधुनिक अंधी दौड़ की मरीचिका का उल्लेख करते हुए जीवन के दर्शन को बयां कर रही है। अंततः इस मृग तृष्णा का सुखांत सूर्य की उपमा संग प्रदान कर सुखद उपसंहार में समापन किया गया है। विषय पूर्णतः तथ्यपूर्ण और दार्शनिक है। अभिनव गीत चयन भी प्रशंसनीय है। अल्पकालीन सूचना पर भी आशा है कि यह संक्षिप्त इबारत सफर की गरिमा बरकरार रखेगा। बिल्कुल, ये आप सभी श्रोताओं पर है। हो सकता है आज का ये सफर थोड़ा छोटा हो जाए, आप सभी लोग कम से कम टिप्पणियां कर पाए क्योंकि आपको वक्त कम मिला, लेकिन जितना भी मिला उसी में हम इस सफर का आनंद उठाएंगे, क्यों है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में जीवन में छाई उदासी या ग्लानी को एक तरस या प्यास की उपमा के साथ उभारने की कोशिश हुई है और एक शब्द को खास कर प्रयोग में लाया गया है गीतों के जरिए, वो भी खास है रे, यानी मन वो उदास हो या धीर कैसे धरे या हो या सूरज जो जीवन की शक्ति के लिए अपने को जलाता रहे, यही जीवन की सच्चाई को उजागर करते हुए गाने होंगे। आपने भी कुछ गीतों का चयन किया है तो देखिएगा आपकी गीत हमारी पसंद से मेल खा रही है या नहीं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी ये पंक्तियां जीवन के एक बहुत ही गहरे और कड़वे सच को बेहद खूबसूरती से बयां कर रही है। मंदाकिनी जी, भागदौड़ भरी इस जिंदगी में अक्सर हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते अंदर से पूरी तरह रीते और थकावा महसूस करते हैं। ये ठहराव जिसे हम प्यास या खालीपन समझ रहे हैं वास्तव में खुद को भीतर से सींचने और एक नई

ऊर्जा के साथ खिलने का अवसर है। हमें किसी बड़े चमत्कार की नहीं बल्कि अपनेपन और सांत्वना की बस एक छोटी सी मीठी बूंद की तलाश है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी मीठी बूंद की तलाश में हम पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। वो मिलती है कि नहीं ये हमारे अपने अपने सोच और कहना चाहिए अनुभव पर निर्भर करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने श्रोताओं के मन को रेगिस्तान बना दिया। पोस्ट लगभग सिर्फ 45 मिनट पहले आई है। मेरे ख्याल से सभी उत्सुकता से आपकी राह देख रहे थे कि कब सुरीला सफर की रेल आए, हम उसमें सवार हों, इबारत को देख अपनी जिज्ञासा की प्यास बुझाए। तो अब तो आप रेल में सवार हो गए हैं ना, चलिए करते हैं यात्रा शुरू। और हो गई है यात्रा शुरू, देखिए रेल हमारी चल पड़ी है फटाफट। एक श्रोता लिखते हैं कि अपने मन की उदासी को कोसने के बजाय खुद पर हौसला रखें और उगते सूरज की तरह चारों तरफ प्रकाश फैलाएं, अर्थात परिश्रम करें, आगे बढ़े। मन रे तू काहे न धीर धरे, आपने इस गीत का चयन किया है और वाकई हमारा अगला गीत यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बधाई जिन्होंने ये गीत पसंद किया है या अपनी पसंद में ये गीत शामिल किया है।

रोशन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। मोहम्मद रफी की आवाज थी और फिल्म का नाम था चित्रलेखा। कितना खूबसूरत गीत, गहरा और सुंदर। दार्शनिक प्रयोग यहाँ पर रे का, देखा आपने, रे का अर्थ यानी यहाँ मन या आत्मा से है। और यहाँ गीतकार जो साहिर लुधियानवी है, अंतरात्मा को एक दार्शनिक उपदेश दे रहे हैं। जो मन अशांत है उन्हें धैर्य रखने की सीख दे रहे हैं। कह रहे हैं कि रे मन, तू धीरज क्यों नहीं धरता? इस जीवन की धूप छांव को किसने बांधा है, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दे। रे मन, मन को समझा, अपने आप को समझा। कितना गहरा गीत, और इस गीत को सुनकर तो मन को शांति मिलती ही है। आपको भी निश्चित रूप से बहुत गहरी शांति मिली होगी।

0: और आप मन को समझा सकते हैं इस गीत को सुनकर कि इधर उधर व्यर्थ की दौड़ भाग में कुछ नहीं रखा, मन को शांत और सौम्य रखा जाए, वही जीवन का सार है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप इस रेगिस्तानी सफर में गर्मी में आज सुरीले गानों से मन की प्यास बुझाएंगी, मन को शीतलता मिलेगी। बहुत सुंदर। वहीं गीत एक श्रोता लिखते हैं कि इंतहा हो गई इंतजार की। नमस्कार, क्या बात है, आज सुरीला सफर बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा पोस्ट के लिए। अरे आप तो फिर भी इस सफर में शामिल हो गए, और क्या चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती रे, मंदाकिनी बहन रे, आप ही बताओ आज की पोस्ट इतनी देरी से क्यों आई। वैसे रोज सुबह आ जाती है मगर इतनी छोटी सी इबारत भी नहीं होती है। सुरीला सफर में जुड़ रहे सभी के संग आपको मैं स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका कि आप हमारे साथ हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप पानी की बूंदे लेकर आई हैं, तो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलेगी। बाकी तो जब प्रोग्राम चलेगा तब पता चल जाएगा कि कितनी ठंडक मिलेगी। मिली ठंडक आपको? वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सूरज हमें जीवन दर्शन भी सिखाता है। सूरज हर दिन बिना थके अपना काम करता है। ये सिखाता है कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो अपने कर्तव्य से नहीं डिगना है, नहीं हटना है। रात कितनी भी लंबी हो और सवेरा जरूर आएगा, और इसी तरह हमारे जीवन में भी दुख के बाद सुख जरूर आता है। सूरज स्वयं जलकर भी संसार में प्रकाश बिखेर कर परोपकारी बनना सिखाता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत अनुरूप संभावित गाने, समय कम है इसलिए ज्यो ज्यो याद आएंगे जोड़ते जाएंगे। सूरज रे जलते रहना, फिल्म हरिश्चंद्र तारामती, मन रे तू काहे नधीर धरे, और आपने और भी गानों के बारे में लिखा है। तो हमारी जो आज की सवाल है, हमारा जो आज का सवाल है, उसमें हम आपके गीतों को शामिल करेंगे जो आपने रे के प्रयोग वाले गीत लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म नागमणि का गीत। इसे आवाज दी है प्रदीप ने। गीत को कवि प्रदीप ने ही लिखा है और धुन बनाई है अविनाश व्यास ने।
1: पिंजरे के पंछी
0: रे,

जी, तो सुना आपने कि कवि प्रदीप ने कितने दार्शनिक तरीके से ये बात कही है कि पिंजरे में बंद पक्षी और शरीर यानी दुनिया में फंसी मानव आत्मा की जो उन्होंने तुलना की है। आप देखिए कि वो कहते हैं कि जिस प्रकार पिंजरे में कैद पक्षी अपने पंखों के कटने और अपनी स्वतंत्रता यानी अपनी आजादी छिन जाने का दर्द किसी को नहीं बता सकता, ठीक उसी तरह मानव शरीर में कैद आत्मा सांसारिक बंधनों और दुखों के कारण मौन रहकर भीतर ही भीतर तड़पती रहती है। तभी तो उन्होंने कहा, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। हमारे श्रोता लगातार अपनी बात कह रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रख रखे हैं और मुझे लगता है बहुत गहराई में चले गए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कहीं उलझ गए हैं हम मंदाकिनी जी शब्द जाल में, जब आप होती हैं तो कुछ नया होता है, एक बजे का बस इंतजार है, हम नहीं उलझेंगे। बिल्कुल मत उलझिए, बस आप हमारे साथ बिल्कुल आराम से सफर में रहिए और आरामदेह सफर का मजा लीजिए। एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मन इतना सूख जाता है कि आंखों में आंसू होते हुए भी प्यास नहीं बुझती, भीड़ के शोर में चलते चलते अपनी ही आवाज कहीं खो जाती है, हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है पर भीतर कोई चुपचाप टूट रहा होता है, कोई रोटी का प्यासा है, कोई मोहब्बत का, कोई बस एक अपने का, मन ढूंढता एक मीठी सी बूंद जो माथे पर हाथ रखकर कह दे मैं हूं, तुम अकेले नहीं हो, मगर अक्सर शाम ढल जाती है और वो बूंद नहीं आती। बिल्कुल सही कहा। फिर नजर उठती है आसमान की ओर जहां सूरज रोज जलता है, अपने हिस्से की आग सहकर दुनिया को उजाला देता है, तब दिल रो पड़ता है कि शायद जीवन का अर्थ यही है, अपने दर्द को सीने में रखकर भी किसी और के अंधेरे में दीपक बन जाना। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि सबसे ज्यादा रोशनी बांटते हैं जो, अक्सर उनकी तन्हाइयों का हाल कोई नहीं पूछता। क्या बात कह दी आपने, मेरी आंखें नम हो गई हैं, गला रुंध गया है। सचमुच यही होता है कि जो दूसरों की चिंता और फिक्र करता है उसके लिए आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो आपने कह दिया है। एक श्रोता लिख रही है कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की पोस्ट 12 बजे के बाद आई है, रोज की तरह हम तो पोस्ट का सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को पोस्ट 10 बजे के करीब आ जाती है, आज बहुत देर कर दी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर के अंदर दर्द भरे उदासी के सॉन्ग शायद सुनने को मिलने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है, आज हम कुछ दर्शन पर बात कर रहे हैं, जिंदगी का दर्शन जिसे आप भी पसंद करते हैं, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सूर्य केवल आकाशीय पिंड नहीं है बल्कि अनंत ऊर्जा, प्रकाश, जीवन और त्याग का सकारात्मक प्रतीक है। सूर्य निरंतर गतिमान और कर्मशील है, इसे आलस्य त्याग कर निरंतर कर्म करने और ऊर्जावान बने रहने की प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। ये निराशा के काले बादलों को चीर कर रोशनी और प्रकाश रूपी किरणों को विस्तारित कर आशा का संचार कर देता है। जी बिल्कुल, आशा का संचार तो आपने भी कर दिया, इतने कम समय में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर सफर में हमारे साथ हैं, और क्या चाहिए। आपका ये जो है ना मैं हूं ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है, दवा का। और जब हमारे श्रोता हमारे साथ हैं तो रे का प्रयोग भी तो श्रोता रे बने रहना है ना। चलिए तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए फटाफट कि रे का प्रयोग और किन किन गीतों में हुआ है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, हम पढ़ेंगे जल्द ही। वहीं हमारा दूसरा सवाल है कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है, आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए। आप क्या सोचते हैं गीतकार कब रे का प्रयोग करता है, जैसे मैंने कहा श्रोता रे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था दिल ने फिर याद किया। जी एल रावल के बोल थे और सोनिक ओमी का संगीत। कितना गहरा और दर्द भरा गीत था। जब हम किसी को पुकारते हैं और कोई नहीं आता तो जी जान से हम पुकार लगा देते हैं, आ जा रे आ जा रे आ जा रे, है ना। बस यही है रे का प्रयोग जो आपको बताना है कि गीतकार ने किन किन अर्थों में किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में किसी भी शब्द का चयन नहीं करना है क्योंकि रे जैसे संबोधन परक शब्दों से ही संबंधित गीत बजाए जाएंगे, लेकिन रेगिस्तान तो अपने आप में ही सूखा होता है और इसीलिए उसे मरुस्थल कहा जाता है। ऐसे में सहारा का रेगिस्तान, थार रेगिस्तान जैसे रेगिस्तानी इलाकों का नाम सुना है, किन्तु मन का रेगिस्तान प्यासा हो यह तो संभव है। लेकिन एक तो रेगिस्तान वैसे ही सूखा, दूसरे सूखे में और सूखा। बात कुछ समझ में नहीं आई भाई। जहां सूखा होता है वहां भूख प्यास के लिए धरती ही नहीं, अभी तो हर जीव ही एक बूंद के लिए तरसते हैं। लेकिन अब भी ये तो कहावत प्रचलित है कि जहां कोई नहीं वहां रेड़ का ही पेड़ प्रधान हो जाया करता है। फिर भी क्या बात है, बहुत गहरे में चले गए आप तो। देखिए, हम जब हमारा मन रेगिस्तान हो जाता है यानी सूखा हो जाता है तो हम मिठास को तरसते हैं, एक बूंद मिल जाए, प्यार की एक बूंद, पानी की एक बूंद जिसे हम कह सकते हैं, और वो बूंद हमें सुरीला सफर में मिल रही है ना। हम भले ही हमारा मन रेगिस्तान है लेकिन आपकी प्यार की बूंद, या यूं कहें कि हमारी तरफ से जो आपको प्यार मिल रहा है वो बूंद काफी नहीं है क्या हमारे जीने के लिए, सोचिएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। अरे आना तो था ही, आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर पोस्ट है आपकी, और एक श्रोता लिखते हैं कि विशेष रूप से ये कहना है मुझे कि कल शाम को 5:30 बजे से

लीजिए रात 9:30 तक आपने बहुत मस्त गीत सुनवाए। अच्छा, कल आप सुन रही थी। बहुत आभार और शुक्रिया आप सबकी अथक मेहनत को सलाम। बहुत शुक्रिया आपको भी कि आप भी तन मन धन लगाकर हमें सुनते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज छोटी सी इबारत और अच्छा अंदाज आपने दे दिया रे शब्द के गाने। अब ये सोचने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े शायद, पर आप हैं तो हम लोग तुक्का लगाना बेकार ही मानेंगे। आप कहां कहां से अनसुने गाने खोज खोज के लाती हैं, हम लोग अवाक रह जाते हैं। आपको पसंद है यही हमारे लिए काफी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम तो दिलचस्प पहेली जैसा लग रहा है। आपके संकेत के अनुसार आज के सभी गीतों में रे शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदी गीतों में रे बहुत ही आम है, इसलिए कई संभावनाएं हो सकती हैं। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, मन रे तू काहे न पिए, धीर धरे ओरे पिया, रे कबीरा, नैना रे, सजन रे, चलत मुसाफिर मोहलिया रे। क्या बात है, बहुत खूब। मुझे लगता है कि आपकी इबारत का मुख्य संदेश गीतों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मन उदास हो, जीवन में आशा की छोटी सी किरण तलाशनी हो, सूरज का उदाहरण देकर आपने यही बताया कि जीवन का सार संघर्ष के बावजूद प्रकाश बांटना है। बिल्कुल, आप लोगों के विचार लगातार हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या करें, समय का ध्यान भी हमें रखना होता है। बहुत सुंदर विचार आपने लिखे हैं। मन का रेगिस्तान भी एक दिन खिल जाएगा, सब्र की बारिश से हर जख्म सिल जाएगा, तो खुद को कमजोर समझना छोड़ दे, तेरे भीतर का सूरज भी एक दिन मिल जाएगा। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पीतल की मोरी गागरी दिल्ली से मोल मंगाई रे, दो बूंद पानी का। अच्छा, इस गीत में रेगिस्तान है, पानी के लिए कश्मकश भी है, प्यास भी है और रे शब्द भी आ रहा है, तो पूर्ण रूप से ये गीत शामिल होना चाहिए। आपकी लिस्ट में गीत शामिल हो गया है, और क्या चाहिए। देखिए ना, आप कितना गहरा उतर कर इस गीत को उठा लाए हैं कहीं से। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़े समय के लिए मन उदास हो गया था, क्योंकि रोजाना सुहाना सफर की सुरीला सफर की पोस्ट 8 से 10 घंटे पहले आ जाती है। आज 12 बजे के बाद सुहाना सफर की पोस्ट आई, जो पढ़कर मन प्रफुल्लित तो हो गया। मेरा मन अगर उदास हो जाता है तो मैं हमारे घर से नजदीक लाखोटा तालाब के पार्क में खुली हवा में टहलने चला जाता हूँ। वहाँ रेडियो बजता रहता है, FM रेडियो बजता रहता है, और मैं मधुर गाने सुनता हूँ, मन को शांति मिलती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है।

वाणिज्यराम को आपने सुना, फिल्म का नाम था गुड्डी और गुलजार साहब के बोल थे वसंत देसाई का संगीत था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी आवाज में एक खनक है, आप मुस्कुराते हुए गीतों को लेकर आती हैं तो हमें अच्छा लगता है। आज की इबारत कुछ अलग सी बड़ी प्यारी लग रही है, बस हम थोड़े बिजी हैं पर आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल रहिएगा। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट के इंतजार का मन प्यासा बन गया था, मानो दिल का रेगिस्तान बन गया था, अब पोस्ट आ गई है तो आपने कुछ गाने लिखे हैं जो हमने पूछे थे। मन रे बिल्कुल बूझ मेरा क्या नाव रे, क्या बात है, मेघा रे बदरा छाए रे, खाई है रे हमने कसम, जा जा रे वाह वाह, और बोले रे पपीहरा, तो आपकी पसंद हमसे मिल गई है, आ जा रे प्यार पुकारे। ये अगला गीत अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना ही था, दिल पुकारे आ रे ओ माझी रे पंछी रे, क्या बात है ओ साथी रे, तेरे बिना क्या जीना, ऐसे करके सखीरी सुन बोले पपिया उस पार। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत शानदार आपने गीत मालिका तैयार की है जो रे पर आधारित है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरे मन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और आपने लिखा है कि बहुत सारे गाने हैं जो रे पर आधारित है। मेरे मन से जुड़ा टॉपिक है, आज तो रेगिस्तान कभी मन हो जाता है लेकिन जीना है तो हंस के जीना है, इसी फंडे पर मैं हमेशा जीती हूँ चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए और मैं मुश्किलों का सामना करती हूँ। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मन रे तू काहे न धीर दे रे, ये गाना आपकी लिस्ट में है, बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि वाह आज के कार्यक्रम का शीर्षक ही दिल को छू गया है, जहां आपने रे का संबोधन वाले गीत चुने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज चंदा रे कभी तो जमी पे आ बैठेंगे बात करेंगे, बिल्कुल आपने ए हरिहरन की आवाज में ये गीत पसंद किया है, नई फिल्म से गीत है, बहुत सुंदर गीत आपने चुना है चंदा रे चंदा रे। वही एक श्रोता लिखते हैं ओ माझी रे अपना किनारा नदिया करे धरा, अच्छा ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, चंदा रे दिल से रे दिल से रे, बिल्कुल सही आपका चुनाव भी बहुत सही है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना चंदा रे मेरी मोरी पतिया ले जा वाह, जा जा रे जा बालम वा, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, जरा सा झूम लू मैं ना रे बाबा ना, क्या बात है बहुत नया गाना आपने चुना है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते है कि मैम आपकी स्माइल कितनी प्यारी है, अरे वाह आपको दिख रही हूँ मैं हंसते हुए शुक्रिया मेहरबानी। वही एक श्रोता लिखते हैं कि ओ मेरे सोना रे ये गाना तो मेरी लिस्ट में नहीं था, क्यों भाई क्यों नहीं था, ये गाना तो बहुत ही पॉपुलर है और सभी को पसंद आता है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी लिस्ट में जो गाने थे वो तो लिखिए जनाब। एक श्रोता लिखते हैं माई री चंदा रे आओ रे ओरे पिया, ये गाने नदिया चले चले रे धारा, रात का समा झूमे चंद्रमा मन मेरा नाचे रे वाह, क्या बात है कहाँ पकड़ा है आपने रे को, बहुत सुंदर। और वहीं और भी श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी है, रे मन सुर में गा ओरे ताल मिले नदी के जल में, ये तो हमने भी गीत चुना था फिर हमने इसे हटाया, पिया तो से नैना लागे रे, क्या बात है रे मा तेरे मेरे नैना सावन भादो। और वहीं आप लिखते हैं तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के रे, अच्छा इसमें भी आप सुन रहे हैं, और यानी आज आपने रे जिनमें रे है और मन की प्यास उदासी उम्मीद की बात है, मंदाकिनी जी आज आपने वो गाने सुनकर हमें बहुत आनंदित किया है, ऐसा हमारे श्रोता लिख रहे हैं। अब आपने हमारे पहले सवाल का जवाब तो दे दिया, और भी बहुत सारे श्रोता अपनी पसंद के गीत लिख रहे हैं जहां रे का प्रयोग हुआ है, लेकिन आपने इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब किन किन गीतों में इस्तेमाल किया गया है। गीतों का नाम तो आपने लिख दिया है लेकिन कब इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल किया गया, इसका छोटा सा बताइए ना बात। अगला गीत हमने चुना है सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है पूनम की रात साथी रे।

0: help.
1: ये वे हमारी जान ले लेता है ना?

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपको हार्दिक नमस्कार और अक्षर रे का जो आज स्पेशल प्रोग्राम है वो बहुत ही शानदार लग रहा है। आपने फिल्म आ का गीत आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा ही गीत पसंद किया है और लिखा है कि इसमें रे का इस्तेमाल बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, ये गाना भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर नया गाना है। आप एक श्रोता हमारे सवाल का जवाब देते हैं दूसरे सवाल का कि रे शब्द का काव्यात्मक आविष्करण खुशी उदासी आशा निराशा चैतन्य वैराग्य अभिमान प्यार स्नेह के अनुभव में अपने आप बखूबी हो जाता है गीतों के माध्यम से गीतकारों के माध्यम से। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेघारे मेघारे ये गाना आ जाए तो इतनी गर्मी में थोड़ी ठंडक मिल जाए। हाँ, आज तो आपको ये गाना नहीं मिलेगा लेकिन हो सकता है अगले किसी और कार्यक्रम में हम आपके लिए गाना लेकर आए। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जब कोई गीतकार किसी अमूर्त भावना जैसे कि मन है सूरज है चांद है को व्यक्ति के रूप में अपने खास प्रेमी के रूप में महबूब के रूप में अपनेपन के रूप में देखता है तब वो रे लगाकर उसे संबोधित करता है ताकि वो जो बात वो जो प्रार्थना वो जो इल्तजा वो जो प्रेम की बौछार वो जो भी संदेश देना चाहता है वो रे के माध्यम से और मजबूत रूप से उस व्यक्ति तक उस इंसान तक पहुंच जाता है। जैसे सूरज रे जलते रहना है ना रे का प्रयोग। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने बहुत अच्छा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा हुआ, जसपाल सिंह की आवाज, फिल्म का नाम श्याम तेरे कितने नाम।

0: से मनता बंधन सच्चा, मन से मनता बंधन सच्चा, बाकी बंधन झूठे कभी अपना साथ न छूटे।
1: जी हाँ, कभी अपना साथ न छूटे। प्यारे श्रोताओं रे, बने रहना इस सुरीले सफर में हमारे साथ, कभी अपना साथ न छूटे। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है इस सफर को और लंबा करने का, तो बस यही थम जाते हैं इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर से। अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में। नमस्कार।

दोस्तों आइए विचार करें कि पर्यावरण को बचाने की मुहिम किस तरह से चलाई जाए। पर्यावरण प्रदूषण के दूरगामी दुष्प्रभाव बहुत ही घातक हैं। वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है, ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं, हवा में विषैले कण घुल रहे हैं, जल प्रदूषित हो रहा है, इंसान तमाम बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है। क्या अब भी हमें सचेत नहीं होना चाहिए? अगर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अभी भी हम सजग नहीं हुए तो ऐसी धरती सिर्फ इतिहास के पन्नों में अंकित रह जाएगी।

0: पर नहीं।
1: दोस्तों, जिस तरह हमारा जनजीवन पर्यावरण से प्रभावित होता है, उसी तरह हमारे कार्यकलापों से पर्यावरण प्रभावित होता है। लकड़ी के लिए जब हम पेड़ काटते हैं तो भूल जाते हैं कि धीरे धीरे पूरे जंगल समाप्त हो रहे हैं। जंगल समाप्त होने से वन्य प्राणी कम हो रहे हैं, जलाशय सूख रहे हैं, कुछ जंगली जीवों की तो पूरी की पूरी प्रजाति ही नष्ट हो रही है। गाँव के भीतर कई शहरों में भी वन्य प्राणियों के प्रवेश का ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सबसे पहले पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए, नए नए पौधे लगाए जाएं।

पर्यावरण प्रदूषण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण शामिल हैं। नदियों में गंदगी फेंकना, घर के कचरे को खुले में फेंकना, तेज आवाज में लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, कारखानों का धुआं, इसके अलावा बहुत सारा ई कचरा, ये सब जिम्मेदार हैं पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में। आइए त्रिवेणी तट पर विचार करें, जितना संभव हो प्रदूषण न फैलाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए हरियाली के बीज रोपें। लहलहाएंगे जब आपके रोपे पेड़ पौधे, तो आपका मन भी खुशियों से झूम उठेगा।

0: विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया।

0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
0: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक

0: परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जलटमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का

0: अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
1: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरत ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की, और ये फिल्म है बारिश।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है चंगेज खां, आवाज लता मंगेशकर की, गीत के बोल कमर जलालाबादी ने लिखे हैं और धुन बनाई है हंसराज बहल ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंगेज खां। आइए सुनते हैं SN त्रिपाठी के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास के बोल। आवाजें हैं गीता दत्त और मन्नाटे की। फिल्म का नाम है जन्म जन्म के फेरे।

तालियां शाम के भजन में बजाऊं मैं तो तालियां राधा संग कान्हा का रास जहां चला दे इस झूठी दुनिया को छोड़।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे, दिल उनको दे आए।
3: यह आवाज आशा भोसले की और फिल्म का नाम है मेरा सलाम। शिवान रिज्वी की रचना है और हाफिज खान का संगीत।

किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म पेइंग गेस्ट का गीत सुनवा रहे हैं। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना, माशा अल्लाह कहना

0: नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: और आइए अब सुनते हैं दत्ताराम का संगीत, हजरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की युगल स्वर। फिल्म का नाम है कैदी नंबर 911।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है हिल स्टेशन, गायिका हैं लता मंगेशकर, बोल हैं SH बिहारी के और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है मन चाहे गीत।

0: बन जाएगी।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी।

0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मनचाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

तो प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचा है गीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमें खत लिखा है, आप हैं अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर। ये खत हमें मिला है अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। और ये खत हरियाणा से सेक्टर 18 जगाधरी से लिखा है विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म महबूब की मेहंदी का गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं। शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा। ये खत हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाने का। और कोटवा नारायणपुर से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है अभिमान, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत एसडी बर्मन का।

Thank you.

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसल कमाल का लिखा ये गीत सुना। आवाज सलमा आगा की थी और फिल्म का नाम था निकाह। इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहेगी
0: और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे।
1: शहजादियों से भलाई कैसे हो सकता कि ये आज लाल किले के इस भरे दरबार में नाचे।
2: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
3: रोहेला का मुगल शहजादियों और बेगमात पर जुल्म है।
4: हाँ।
3: आलम शाह सानी ने इन्हें पाला पोसा और ये उसी की आंखें फोड़कर आज हरम की बेगमात को दरबार में नचा रहा है।
4: ये सब मंसूर अली की दगा और अंग्रेजों की साजिश से हुआ है।
3: अंग्रेज जब हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं।
4: नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख और मराठे बादशाह के साथ हैं ऐसा नहीं होगा।
3: तुम

0: ठीक कहते हो। आज ये सब गुलाब की ऐसी पंखुड़ियां हैं जो गुलाब के इस फूल की हिफाजत के लिए मैदान जंग में आ गए हैं।
1: हाँ, ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बल्कि तलवार की धार है जो विदेशी ताकत को काट कर रख देंगी।

0: गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा।
1: मंजूर अली
2: जी, आलम पना,
1: आज कितने दिन हो गए इन अंग्रेजों से लोहा लेते, लेकिन ये लोग भी गजब के चालबाज हैं। बिहार पर दोबारा हमला भी किया, लेकिन उस जनरल कार्निक ने फिर हमारे कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाकर हमें मात दे दी। इतने फर्माबरदार बहादुरों के होते हुए भी कुछ गद्दार लोग इन गोरों के जाल में फंस ही जाते हैं और बाई से शिकस्त बन जाते हैं।
2: आलम पना, वाकई इनकी जासूसी भी बेमिसाल है। इस पर भी ताज्जुब है कि ये लोग फतेहयाब होने के बाद भी हुजूर के साये में ही पनाह लेते हैं, खुद को जहां पनाह की रियाया तस्लीम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना जाल फैलाने से बाज नहीं आते। अब यही कार्निक
1: कैसा भीगी बिल्ली बनकर हमारे हुजूर में पेश हुआ, जमी बोस करता हुआ कंपनी की तरफ से नजर पेश की और शाही फौज के खिलाफ जंग करने के लिए मुआफी की दरख्वास्त की,
2: और हुजूरे वाला ने उसे मुआफ भी कर दिया। लेकिन इनकी खास मंशा सिर्फ यही थी कि आलम पनाह उनके बनाए बंगाल के नवाब मीर कासिम की शाही फरमान के जरिए तरक्की फरमा दे और इनके इरादों पर नकाब पड़ा रहे।
1: हाँ मंजूर अली, लेकिन हमने भी इनके साथ पटना जाना इसलिए कबूल कर लिया था कि इन लोगों के अंदरूनी हालात व ताकत का सही अंदाजा हो सके, और इसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई।
2: जी हाँ आलम परवर, आपकी बार पूरी तैयारी के साथ इन लोगों को शिकस्त फाश देनी चाहिए।
1: इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, अब इनकी हरकतों से तंग आ चुके हैं हम।
2: जी हाँ जहां पना, हमारे जासूस बराबर ऐसी खबरें ला रहे हैं।
1: नवाब शुजा के पास मीर कासिम ने खत भी भेजा है कि शायद उसे जल्द ही बंगाल छोड़ना पड़े, क्योंकि अंग्रेज कंपनी उसे हटाकर मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाने की फिराक में है।
2: जहां पना, अगर ऐसा हुआ तो हमारी ताकत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मीर कासिम की सिपाह भी हमारे साथ हो लेगी।
1: ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सूरत बनती है, लेकिन बरसात गुजरने से पेशतर हमला करना मुमकिन नहीं होगा। हाँ मंजूर
2: जी, आलम पना,
1: उस अंग्रेज लड़की के बारे में कुछ?
2: जी आली मकाम, उसी के बारे में हुजूर से गुजारिश करने के लिए आया था।
1: अंग्रेजी रक्स और मुसीकी तो हमें कतई पसंद नहीं आई, मगर वो कमसिन अंग्रेज लड़की, उसे हमारे रूबरू पेश किया जाए।
2: जो हुक्म आली जा।
1: तस्लीमात, क्या नाम है तुम्हारा?
3: मेरा नाम एमिली है, योर मैजेस्टी।
1: ये क्या अल्फाज बोलती हो तुम?
3: जी, योर मैजेस्टी।
1: हाँ, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम हमें जहां पनाह या आलम पनाह कहो।
3: आलम पनाह, आलम पनाह।
1: बिल्कुल ठीक, तुम तो हिंदुस्तानी जुबान अच्छी तरह जानती हो।
3: जी जी हाँ, जान पाना, यहाँ बचपन से रही हूँ। तो आलम पनाह, आपने हमें पसंद किया या नहीं?
1: जरूर जरूर, हमने तुम्हें बहुत पसंद किया है।
3: ओह, हमारा अच्छा किस्मत है, हमने भी आलम पनाह को बहुत पसंद किया। आप बहुत रहम दिल है।

0: हम यहाँ आपकी आपकी पनाह में रहने चाहता है।
1: ठीक है एमली, तुम यहाँ रह सकती हो।
0: ओह थैंक यू।

0: हाँ, हमें भी तुम अच्छी लगती हो। तुम जब चाहो आ जा सकती हो, लेकिन सिर्फ हमें बताकर।
1: ओह, शुक्रिया आलिम पिना, कितना अच्छा है, कितना ग्रेट है, बहुत बहुत बड़ा दिल है आपका।
0: नवाब शुजा, अब तो नवाब मीर कासिम अली भी हमारे साथ शरीक हो गए हैं।
2: जी हाँ जहांपनाह, इन चालबाज अंग्रेजों से किसी भी नवाब की नहीं पड़ सकती। ये तो बंगाल में भी ऐसा नवाब चाहते हैं जो इनके इशारों पे नाचे।
0: अब मीर जाफर को फिर मसनद नशी कर दिया और कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया।
2: जी हाँ आलमपनाह, अंग्रेज तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूरी तौर से हावी हो जाना चाहते हैं।
0: यही नहीं शुजा, इनके मंसूबे तो पूरे हिंद को हड़प लेने के मालूम होते हैं। लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी फौज में गोसाई हिम्मत बहादुर और उमराव गोसाई तो हैं ही, इनायत खान रोहिला भी शामिल हो गया है, मीर कासिम मई सिपाही आन पहुंचा है।
2: जी हां जहांपनाह, और बनारस के राजा बलवंत सिंह भी मैं अपनी पलटन के हमारी इमदाद के लिए आ गए हैं। जर्मन कप्तान सैमरे भी अपने तोपखाने को एकदम मुस्तैदी से तैयार कर रहा है।
0: नवाब
2: जहांपनाह,
0: अगरचे शिकस्त दर शिकस्त होती रही है, ताहम हमारे फर्माबरदार सिपहदारान का अभी भी हौसला बुलंद है। हमारी सिपह वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखो देखो, जिस तरह ये गुलाब का फूल पंखुड़ियों की वजह से इतना दिलकश बना है, उसी तरह हमारी फौजों में भी हर कौम और मजहब के बहादुर मिलकर एक कुल की शक्ल में काम करते हैं। इसी पर हिंदुस्तान को फख्र है।
2: जी हां आली मकाम, इसमें कोई शक नहीं है।
0: पंखुड़ियां गिरती हैं, मुरझाती हैं, लेकिन नए गुल और भी खूबसूरती से जहूर में आते हैं। चंद गद्दार मुरझाई पंखुड़ियों की तरह भटक जाते हैं, यही बदनसीबी है। इसके बावजूद कई राजा, नवाब और अमीर नई पंखुड़ियों की तरह हमारी इमदाद के लिए आन पहुंचे हैं। इस दफा अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला करना है, ताकि हिंदुस्तान से इनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए।
2: जी हां आलमपनाह, हुजूर के इकबाल से इस दफा हमारे जासूस भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। नवाब मुनरुद्दौला का जासूसी दस्ता खबर लाया है कि मेजर हेक्टर मुनरो की फौज में कुल 6-7 हजार सिपाही हैं और सिर्फ 20 तोपे।
0: फिर तो हमारी इतनी बड़ी फौज और 100 से ज्यादा तोपों के मुकाबले में उनका ठहर पाना नामुमकिन है। हम जल्द से जल्द इन सरकशों को सबक सिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
2: जी आली कद्र, हमें कप्तान सैमरे ने बताया है कि हमारी 133 तोपें बिल्कुल सही हालत में है, और उधर मीर कासिम और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिले तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐन वक्त पर वहां के अफसरों और सिपाहियों को हमारी तरफ मिल जाने को उकसा रहे हैं।
0: वाह, बहुत खूब, कुछ कामयाबी हासिल हुई।
2: जी हां सरकार, हमें पुख्ता खबर मिली है कि करीब 70-80 छोटे बड़े अफसर और नायक और करीब 1000 सिपाहियों की पलटन ऐन वक्त पर हमसे आन मिलेंगी।
0: वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। अब हम शर्तिया फतेयाब होंगे, इन पदसात अंग्रेजों को मुल्क से निकाल बाहर करेंगे।
2: बेशक आलमपनाह, बेशक इस बार हम यकीनन कामयाब होंगे और इन पदसात अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो एक अहम मामला और हुजूर के इल्म में।
0: जरूर नवाब, बोलो बोलो।
2: अली कद्र, वो अंग्रेज लड़की जिसको हुजूर ने पनाह दी थी, उसका रवैया इन दिनों कुछ अजीब सा नजर आ रहा है।
0: तुम्हारा मत

0: मतलब एमली से है, क्या हुआ?
1: हुजूर, वो शुरू के कुछ महीनों में तो काफी संजीदगी और बुर्दवारी से।
0: और अब क्या हुआ उसको?
1: हुजूर आला, पिछले एक माह से उसकी हरकतें काफी हैरत अंगेज हो चली है। वो शाही फौज के खेमों में मुख्तलिफ सिपादारान हुक्काम वगैरह से अक्सर बड़ी बेतकल्लुफी से मिलती रहती है।
0: नवाब शुजा, वो भोली लड़की जरा चुलबुली जरूर है, फिर इन अंग्रेजों की तहजीब में औरतों को काफी आजादी है।
1: वो तो वजह है जहां पना, लेकिन हाल ही में मेरे कुछ खास हरकारों ने खबर दी है कि ये खेमों से दूर जाकर अंग्रेज घुड़सवारों से भी गुफ्तगू करने लगी है।
0: ये तो बहुत संगीन मामला है।
1: जी हां अली मकाम, जब से हम लोग बक्सर के नजदीक पहुंचे हैं उसके सरगर्मियां और भी बढ़ गई हैं।
0: इस वक्त वो कहां है?
1: वो इस वक्त शाही हरम के खेमे में है, यहां से तकरीबन 4-5 कोस।
0: उफ, नवाब शुजा, इधर सामने मेजर मुनरो अंग्रेजी सिपह के साथ आगे बढ़ रहा है, उधर ये लड़की न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी।
1: आलमपना, मैंने ख्वाजा सराओं और कुछ चुनिंदा नायकों को ताकीद कर दी है कि उस लड़की पे कड़ी नजर रखें, मगर हुजूर पता नहीं कि इससे पेशतर क्या किया हो उसने।
0: मगर हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
1: जब तक कुछ पुख्ता सबूत न मिले आलम पनाह को जहमत देना मुनासिब न होता, और इसके अलावा हुजूर इस जगह के लिए कूच भी कर चुके थे।
0: शुजा, ऐसे मशकूक शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बाद तफ्तीश असलियत का पता लग जाता।
1: हुजूर, मैंने आपके खौफ के मारे ये जुर्रत करना मुनासिब न समझा।
2: हुजूर, बेगम साहिबा बारियाबी की इजाजत चाहती हैं।
0: कौन? सकीना बेगम? यहां? फौरन भेजो।
2: जी जहां पना।
3: आलम पना, गुस्ताखी मुआफ फरमाए।
0: हाँ हाँ, बोलो बेगम, यहाँ क्यों कराना हुआ हरम से मैदान जंग में?
3: आलीजा, मैंने एमिली को गिरफ्तार करने की जुर्रत की है। वो कुछ गोरे घुड़सवारों से गुफ्तगू कर रही थी, कुछ कागजात भी।
0: उफ सकीना, घुड़सवारों को भी गिरफ्तार कराया या नहीं?
3: पहले सिर्फ दो थे, भागते भागते एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा कुछ कागजात लेकर भाग रहा था तो हमारे जवानों ने उसका पीछा किया, मगर आगे जाकर 20-25 गोरे सवार और मिले और बंदूकों के फायर करते हुए सब भाग निकले। वक्त की नजाकत देखकर मैं खुद चली आई।
0: दूसरा सवार पकड़ा नहीं जा सका?
3: जी नहीं आलम पना।
0: वो कमीनी कहाँ है?
3: जी, बराबर वाले खेमे में ख्वाजा सरा मंजूर अली की हिरासत में है।
0: नवाब शुजाउद्दौला को बुलाओ।
1: जहां पना ने याद फरमाया।
0: हाँ नवाब शुजा, तुम्हारा शुबा ठीक मालूम होता है, उस बदसात को सकीना बेगम ने गिरफ्तार तो कर लिया है, एक आध कागज भी बरामद हुआ है, मगर दो में से एक घुड़सवार भाग निकला, कुछ कागजात भी ले भागा। अब उस सराम खोर एमिली को कोड़े मार मार कर कुल तफसील मालूम करो और हमें बताओ, बराबर के खेमे में है वो बदसात?
1: जी आलीजा, हुक्म की तामील होगी।
0: बेगम, तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो, इस मामले की तहकीकात हो जाए तो अपने खेमे की तरफ वापस चली जाना, यहां ठहरना खतरे से खाली नहीं।
3: जी नहीं आलम पना, मुझे आराम की कतई जरूरत नहीं, फिर जहां हुजूर का कयाम हो वहां मुझे भला क्या खतरा हो सकता है?
0: नहीं बेगम, तुम्हारी जल्द से जल्द वापसी ही लाजिम है।
3: जैसी आलम पना की मर्जी।
1: आलम पना, मैंने तहकीकात कर ली है, अफसोस है कि बहुत खौफनाक सूरत बन गई है। एमिली ने बामुश्किल तमाम कबूल किया कि वो अंग्रेजी जासूस है। उस कागज में अंग्रेजी सिपाही के कुछ लोगों के नाम हैं जो हमसे मिल जाने के लिए तैयार थे, मगर इससे पेशतर वो हजारों नामों की फेरिश्ते मेजर मुनरो को भेज चुकी है। कोड़ों के मार से वो लहूलुहान हो गई, तब कहीं उसने जाकर
0: उस कमबख्त कमीनी को हाथियों से कुचलवा दो।

0: 除下一，
1: 好，
0: 一下，
1: 哦，讲吧呢，协助，协助俺们做几多呗。पता नहीं एक एक धमाके में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा होगा।
0: उफ नवाब, तो क्या हमारे जासूसों की कुल मेहनत बेकार गई? क्या वो हजारों को मार डालेंगे?
1: हुजूर, मालूम तो ऐसा ही होता है, धमाके पे धमाके हो रहे, हजारों की मौत के पैगाम हैं ये धमाके। हुजूर, हमारे सिपाह में न जाने कौन कौन गद्दारी पे आमादा होगा।
0: शुजा, फिर भी हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। सकीना बेगम की वापसी का इंतजाम कर दो और फौरन जंग के लिए कूच का ऐलान किया जाए, और उससे पेशतर उस अंग्रेज जादी को हाथियों से कुचलवा दिया जाए।

0: नवाब मुनीरुद्दौला, समझ में नहीं आता कि अभी भी हमारी गर्दिश और दुश्वारियों का दौर क्यों खत्म नहीं होता।
1: आलमपनाह, वक्त सबका बदलता है।
0: बक्सर की शिकस्त का कुछ और जायजा मिला?
1: जी हाँ, वही तफसील अर्ज करना चाहता था। आलमपनाह, हमारे करीब 2000 बहादुर मारे गए। हमारी तमाम तोपों पर मुनरों ने कब्जा कर लिया। सिपाहियों में मुर्तजा खान, मियाँ ईसा, यासीन वगैरह मारे गए।
0: ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
1: नवाब शुजाउद्दौला पूरे खानदान के साथ बरेली की तरफ चले गए हैं और नवाब मीर कासिम रोहेलखंड, हमारी बहुत सी सिपाह घायल हो गई है और बाकी भाग निकली है।
0: नवाब मुनीर, इस बक्सर की जंग ने तो हमारे हौसले पस्त कर दिए। अब कोई सूरत नहीं अंग्रेजों से लोहा लेने की। इतनी मुकम्मल तैयारी के बाद ऐसी शिकस्त फाश। सुना है कप्तान सेमरे भी बरेली की तरफ भाग गया है।
1: जी हाँ अली मकाम, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी है। अवध का इंतजाम तो अंग्रेज कप्तानों ने संभाल लिया है, वो भी बड़ा जुल्म ढा रहे हैं रियाया पर।
0: तो फिर हमारी हालत बहुत ही नाजुक है इस वक्त। ताहम ये समझ में नहीं आता कि जनरल कार्निक ने हमसे मुलाकात की दरख्वास्त क्यों की है। अंग्रेज कंपनी का गवर्नर हमसे सुलह चाहता है। हमने उसे मुलाकात के लिए इजाजत का परवाना भिजवा दिया है।
1: सुना है हुजूर वाला, ये अंग्रेज नवाब शुजाउद्दौला से भी सुलह की कोशिश कर रहा है।
0: अंग्रेजों की चालबाजियां समझ में नहीं आती नवाब मुनीर।
1: बेशक आलीजा,

0: जयपना, मुझे आपकी राया इंग्लिश कंपनी का गवर्नर क्लाइव साहब ने आपके हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, ये नजर कबूल करें।
1: शुक्रिया। अंग्रेज कंपनी क्या उम्मीद रखती है हमसे?
0: उम्मीद? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ हुजूर को इलाहाबाद और खोड़ा के जिले देना चाहती है। चैपना का हिफाजत करना हमारा काम होगा और आपकी वफादार अंग्रेज रियाय की तरफ से एक अफसर आपके पास रहेगा।
1: अफसर? वो अफसर क्या करेगा?
0: वो आपका खिदमत करेगा। अगर कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा तो अंग्रेजी फौज बुला लेगा और योर मैजेस्टी का मदद करेगा।
1: अच्छा अच्छा, इसके बदले में हमारी वफादार रियाया अंग्रेज कंपनी क्या चाहती है?
0: योर मैजेस्टी कुछ नहीं, बस एक फरमान, ओनली वन शाही फरमान।
1: फरमान? कैसा फरमान?
0: जापना, बंगाल की दीवानी का फरमान।
1: बंगाल की दीवानी का फरमान? लेकिन बंगाल में तो तुमने मीर जाफर को नवाब बनाया है, फिर हमारे फरमान से क्या मकसद है?
0: योर मैजेस्टी,

0: और शहंशाह में जमीन आसमान का फर्क होता है। सारा मुल्क का असली मालिक तो आप ही है। आपका फरमान हमारे लिए बहुत इज्जत का बाइस होगा। इसके लिए हुजूर का रियाया कंपनी हुजूर को 26 मेरा मतलब है 26 लाख रुपया सालाना खिराज अदा करती रहेगी।
1: लेकिन अंग्रेज कंपनी हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में भी मदद करेगी या नहीं?
0: जरूर योर मैजेस्टी, लॉर्ड क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है, वो जरूर मदद करेंगे।
1: ठीक है ठीक है, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
0: शुक्रिया योर मैजेस्टी, फिर हमको इजाजत बख्शे।
1: इजाजत दी जाती है।

0: लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की, आज 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई।
1: जी आलमपना, इधर इस अंग्रेज कमांडर बारकर के दिनों दिन दिमाग बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुलाजिमों से बदसलूकी से पेश आता है, कहता है हम तुम्हारे बादशाह को 26 लाख रुपए वजीफा देते हैं।
0: अच्छा कमांडर तैनात किया हमारी हिफाजत को, एहसान फरामोशों ने 26 लाख सालाना देकर हमें खरीद लिया है। बंगाल की दीवानी से करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं, उसका कोई एहसान नहीं।
1: हुजूर, वो कहता है कि हमारी इजाजत के बगैर कोई शाही मुलाजिम इलाहाबाद से बाहर नहीं जाएगा।
0: गोया हम शहंशाह नहीं, इस कमीने कमांडर के कैदी हो गए।
1: लेकिन जब आलम पना के हुजूर में पेश होता है तो वो मेमना बन जाता है, जमी बोस करेगा, योर मैजेस्टी की रट लगाया जाता है।
0: मगर ये कमबख्त मेमने की खाल में भेड़िया है, भेड़िया।
1: अलीजा, अब तो मराठों के जवाब का इंतजार है। सैफुद्दीन खान को कई महीने हो गए माधोजी सिंधिया के पास गए हुए।
0: देखो क्या होता है। अब तो हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने की तमन्ना है। साबता खान किले पर काबिज है और उसका रवैया दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है।
1: जी आली कदर, वो
2: आलम पना, सैफुद्दीन ने पैगाम भिजवाया है कि मराठों ने हुजूर के शरीक दौलत होकर मदद की रजामंदी दे दी है। सिंधिया की फौजें रवाना हो चुकी हैं और यहां पहुंचने ही वाली हैं। उन्हीं की मदद से सैफुद्दीन मोहम्मद खान ने दिल्ली पहुंचकर जामा मस्जिद से हुजूर के शहंशाह होने का ऐलान भी कर दिया है।
0: वाह वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। मंजूर, सब सरदारान और उमरा से कह दो कि कूच की तैयारी करें।

0: आली जा वली अहद शाहजादे और बुजुर्ग बेगमें हुजूर के इस्तकबाल को आते हैं। जाब्ता खां हुजूर के खौफ से किला छोड़कर भाग गया है और उसकी सिपह भी सिर पर पैर रखकर भाग रही है।
1: वाह वाह बहुत खूब।
0: और आलमपना सारा इंतजाम मुकम्मल है। अब हुजूर का जुलूस शाहदरा से दिल्ली दरवाजे होकर लाल किले में दाखिल होगा।
1: लगता है मंजूर आज हमारी मुरादें पूरी हुई और उम्मीदें भर आईं।
0: हुजूर वली अहद ने बताया है कि जाब्ता खां फौजें जमा कर रहा है।
1: वो है कहां? कहां तैयारी कर रहा है?
0: जी वो नजीबाबाद है।
1: ठीक है, दिल्ली में तख्त नशीनी के फौरन बाद हम उस पर चढ़ाई करेंगे और बगावत की सजा देंगे। हमने माधोजी सिंधिया से भी मशवरा कर लिया है, वो भी हमें पूरी इमदाद देने को रजामंद है।

0: जहां पना अब दिल्ली दूर नहीं।
1: ये कौन सा मुकाम है मंजूर?
0: आलम पना, ये मौजा धनौली है। यहां से शाहदरा करीब 4 मील है।
1: ओहो, तब तो दिल्ली आन पहुंचे। अरे, ये इतनी शानो शौकत से किसका जुलूस चला आता है? मंजूर, जरा पता लगाओ।

गुलाब की पंखुड़ियां। अभी आप सुरेंद्र कांत के लिखे इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। निर्देशक मुमताज शकेब। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आज सुनिए पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर

मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें।

0: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
0: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी? तो फिर क्या किया आपने?

टेरेंस को गले लगाया। टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने आप को फील करवाता हूँ, और बहुत ही बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊं, ये बात मैं जानता हूँ कि क्यों है आप इसके हकदार। इसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है, और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो जरूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूँ इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए।
1: तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से। हाँ। जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा, और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में, और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और मीडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे, और मम्मी मुंबई से ही है। तो हम सभी आठ भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 20-20 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए साहब, 45 साल के जवान, या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बात कर रहा हूं। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ मुंबई में, कहां हुआ, कैसे आपका बचपन बीता। हाँ। और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है।
0: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में, एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो बहुत प्यार मिला, और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन वैसा वाला फील था। किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी। हाँ। सिर्फ रेडियो हुआ करता था
1: उस जमाने में, तो
0: था नहीं। और लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने इतनी चीजें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला, और लोगों का प्यार बहुत जबरदस्त।

0: मिला और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस की वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे यू नो इर्द गिर्द जो यू नो नेबर्स थे या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नज़र से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे या फिल्मों में, या डांस करता था, तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला करते, आज बुलाओ बुलाओ इसको, बुलाओ उसको बुलाओ, ये नाचेगा हमारे लिए।
1: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूँ कि आज टेरेस आए, अभी टेरेस नाचेंगे तो नहीं लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
0: अरे वो जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव हुआ था, क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट टेरेसा हाई स्कूल। तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, ओके, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट टेरेसा हाई स्कूल। हम 4 भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर के जी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे लोग, कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो यू नो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश यू नो एनवायरनमेंट में पला पड़ा। यू नो बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था। और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके, आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वाज जस्ट हैप्पी, और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग, सिंगिंग, एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है। तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूंगा, तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ, और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, यू नो जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने यू नो सर्टिफिकेट्स सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सभी सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूं कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे। तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया।
1: अरे इतनी चीजें याद है आपको बचपन की, तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय। चलिए गाइए तो गाना तो बताइए।
0: तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बोनियम, ओके,
1: बोनियम का, ओके,
0: बोनियम 1975 में। तो एक गाना था, ब्राउन गर्ल इन द रिंग ट्रा ला ला ला ला, सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक यू नो हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल,
1: सौतन,
0: सौतन। तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे यू नो फिर अजीब दास्तां है, अजीब दास, मेरी बहनें रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सबको चाहिए था, तो वो लिखती थी। तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं था, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात तक कि वो यू नो वो लव्स जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं कि नहीं। तो वो भी गाते थे, हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में। तो वही
1: याद भी हो जाते थे,
0: याद हो जाते थे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तां के लिए मैंने बहुत बार यू नो पुरस्कार बहुत बार मिला है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यारा लगता है। तब मेरी आवाज यू नो एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड वाज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेंड नहीं हुआ था, और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था, और बहुत यू नो वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया, डांस की लाइन।

0: ये दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है,
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ।
0: लेकिन हमारे लिए
1: कुछ भी, मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं, मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे हैं मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है,
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना। हाँ। आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है। सिंपल, पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग, डांसिंग। मुझे बहुत मारनी पड़ती थी, लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई, तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं, मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा। लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा जिद्दी भी था, तो और रिजल्ट भी लेकर आता था, पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों

0: ना बोल रही है, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से। फिर बोला अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। ऐसा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
0: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने यू नो आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था या मुझ में ना बचपन से लेके क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। फिर इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया। वो एक तुक्का ना एक लॉटरी पहले ही लग गई तो उसकी वजह से वो ना एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप उसकी दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गए ना आप तो वो डर जो होता है ना
1: वो निकल जाता है।
0: तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है यू नो स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं। वो डर मेरा चला गया तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर वो अपने आप को यू नो एकदम यू नो जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होगा, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद उसमें बच गया। तो

0: टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया है तो मेरे डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोला कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी लिए, अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूं, तो मेरे एक दोस्त ने उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देते थे उनको डांस सीखना था, तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो, कॉलेज फीस और सभी जो यू नो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया तो मेरी लॉटरी लग गई।
0: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल
1: होगी, 17 साल की थी
0: उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं
1: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया। तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे, तो जब भी उनका उन पास टाइम नहीं होता था तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उनके आप ले लो, यू नो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
0: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में दिलचस्प, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
1: अच्छा,
0: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन

0: संघर्ष का नाम है। और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप चलो आप डांस सिखा रहे थे, लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे यार? सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
1: एग्जैक्टली क्यों, देखो मैं पढ़ाई में होशियार था, तो मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था। फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ रहा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए, फिर वहां से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया, पैसे अच्छे रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का, और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे, उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने। मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई मैं हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तो इतना पढ़ा लिखा है, तो इतना होशियार बच्चा था, तो डॉक्टर बनने वाला था, और फिर तुम माइक्रोबायो बायोस्टोकेमिया, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुम अभी डांसर बन रहे हो। तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी, क्योंकि हमारे परिवार में डांस के एक लग्जरी है, ये ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें। तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक मतलब आइदर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है। मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूं, तो उन्होंने सबने ना कर दी। मैंने बोला कि नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज्यादा कमा रहा हूं। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा। तो सब लोग मेरे भाई बहन, तो तू गिरेगा, तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में, वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अभी खत्म, तो तुम क्या करोगे? ऐसे क्यों, दूसरे आएंगे? ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे? ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे,
0: हर तरह से तोड़ने की कोशिश थी।
1: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
0: ये एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है।
1: करेक्ट।
0: वो हर चीज से डरता है। हाँ। क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने के लिए, हाँ, वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा होता है।
1: हाँ, अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन लोग सपोर्ट मिलता है। लेकिन हमारे मेरे डैडी तो मजदूर हैं, उनको सिर्फ वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ पढ़ा लिख कर मेरा बच्चा आगे जाए, वो
0: ये बहुत बड़ी बात है ना। और देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, आगे बढ़े। हर बाप की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। बस आपने 2 कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए,
1: खुश हो
0: तो खुशी मिल गई।
1: हाँ, लेकिन वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायो बायोलॉजी में किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के, तू इतना पढ़ता है, तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गया, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई? तो मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ। और
0: फाइनली फिर आपके मदर फादर खुश हुए कि नहीं?
1: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए। बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं फिर मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर। तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया। और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पे जा रहा हूं तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पे आ रहा हूं, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है।
0: एक और बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं होता।
1: तो वो अकल बाद में फिर जो जमीन पर उतरा मैं उड़ रहा था कि मेरा ऐसा होगा। मैं सच में ना जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा,

फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, देखें कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। और यू नो, तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते मेरे दिमाग में। फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और बोले कि मेरी फिल्म करो। तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

0: अच्छा टेरे साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में
1: जरूर,
0: लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फहरिस्त पूछी जाए तो किस तरह के गाने होते थे? किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, तुम हम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन
1: और मुझे, सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा यू नो, और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़,
1: कई बार
0: लटक जाऊं।
1: I'm telling you, मैं सच कह रहा हूँ कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूँ। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना

0: है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं। तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़
1: नहीं, सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हसमुख रह करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था, गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। लाइक मैं बताऊं कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुए में उड़ा। ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है।

0: ये गीत तो हमने सुन लिया,
1: हाँ,
0: जिंदगी के जो कश्मकश रहती है उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
1: ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत थे, आज भी है।
1: तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 साल की उम्र में, 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली, फिर मैंने लोग सिगरेट पीते थे, क्या है, तब तक तो मुझे कोई थे ही नहीं।

मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था और देखा क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है, लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे बहुत कम है, तो कभी वो लत या लगाम लगाई नहीं।

0: गले लगा दे।
1: अच्छा टेरेंस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा।
2: हाँ।
1: फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी ये इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदार

0: की बात करूं तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं आज भी हैं
1: शुक्रिया
0: है ना। तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
1: देखिए आज की तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है। मेरे जमाने में मुझे कोई समझ नहीं थी और कोई यू नो गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा ऐसा करो। तो यू नो कई हद तक मैं यू नो सोचा रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
0: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना?
1: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था।
0: अच्छा।
1: और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था। शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा नहीं, उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था।
0: हाँ।
1: उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल जो मॉडलिंग जो मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस मैंने किए बड़े बड़े यू नो जाने माने डायरेक्टर के साथ, लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊं, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपने परिस्थिति आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं यू नो अच्छा बनाऊं, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और यू नो ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है यू नो तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है, जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं थोड़े मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है, तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के यू नो माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त में मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊंगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी उन्हीं के बच्चे सपूत जो है वो आगे बढ़ते थे, तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं के बगे तो मैंने लगा कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया, किसी की गलती नहीं है। मैंने
0: फिर आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
1: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया, और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं और फिर 18 या 19 साल में मैंने कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में यू नो सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, यू नो स्कूल कॉलेज फंक्शन सब यू नो दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज करने, क्योंकि ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं, तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूं भी तो उनके साथ काम करूं, बोलते नहीं क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया। और फिल्मी जो मुझे मिली पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था लगान में, वॉल्स का सेक्शन था, वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की, तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स जो टेक्निकल वॉल्स है वो कोरियोग्राफ करके दिखाए,
0: वो जो अंग्रेज लड़की डांस करती है वो वाला डांस सेक्शन
1: वो वाला। हाँ, तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था कि डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था।
0: उस पे हम बात करेंगे लेकिन अभी पहले इसको
1: हाँ। तो रीना मेरी यू नो वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए। मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना और उन्हें मुझे ये यू नो प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तो मैंने कहा कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो ये तो तुम करते हो तुम्हारे मतलब यू नो पार्टीज में से। नहीं मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं नहीं नहीं ये तो पाना चाहिए क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो जो तुम्हारी ट्रेनिंग है लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला, आशुतोष जी से मिला, और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं वॉल्स तो हमें चाहिए, लेकिन हमें ना वो 18th सेंचुरी, क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में
0: कहानी है
1: तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी, वियनीज वॉल्स, वो हमें चाहिए।

0: बताइए।
1: तो मैं तो वहीं पर, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
0: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, कि आप कोरियोग्राफी करते थे स्कूल्स में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
1: एकदम अलग सर,
0: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं।
1: एब्सोल्युटली,
0: वो तो आप जानते नहीं थे।
1: एब्सोल्युटली,
0: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया, ये सवाल पे मैं आने वाला था, आप खुद ही आ गए, तो आप दोनों चीजों को जोड़ के बताइएगा।
1: जरूर। तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा। तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म यू नो कोरियोग्राफ किया है। तो मैंने रीना को यू नो रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। रीना ने मुझे फिर से रूम में बैठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ, और उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे। तो आशुतोष ने बोला क्या है आप बताओ। आशुतोष सर वॉज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, आप डरो मत। It was so sweet, क्योंकि मैं बहुत, I think was only 24 years. He says, मैं नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना है। सर क्यों डरे हो, आपको आता है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है। ऐसे वो हमारी जिम्मेदारी और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरा मैन है, सबसे सीनियर्स, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। अरे ठीक है। आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा। मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है। तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, नेपिन सी रोड का घर था मलबा हिल में, मैं गया, उनको बोला कि मुझे सीखना है, और उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने भर्ती किया अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज़ कोरियोग्राफी में डाली। गाना ए आर रहमान का गाना था, वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया। वहां पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया, और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा सेट पे, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूं कब नहीं, कब यू नो नगाड़े को बोलूं कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। सर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे दो दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा। अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता लेकिन कैमरा के बारे में बताता है, और ये क्या बोलते हैं ना, ग्रंथ है। अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज अ बुक फॉर टू गो फॉर द 5 C's ऑफ कैमरा। तो अभी मुझे पढ़ाई लिखाई में बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ, और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए। मैंने अनिल मेहता सर को बता दिया कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए, ऐसे आप 2 दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी मतलब, मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाया तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पे रह के मैं सीख गया, और फिर मेरी तीसरे दिन मेरी शूट लग गई, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
0: एक तो और बड़े कलाकार को बड़ी फिल्म थी
1: हाँ।
0: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
1: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
0: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
1: एक्चुअली मैं कहूंगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
0: जाहिर सी बात है ना।
1: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं। लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, तो वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया।

सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का पहला भाग।

अभी श्रोता सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का प्रसारण। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 KHz पर। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज शाम की सभा में। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं युवा साथियों के साथ कार्यक्रम युववाणी।

0: अगर सपने बड़े हैं तो आवाज भी दमदार होनी चाहिए,
1: और अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो शाम बन जाती है युवाणी वाली शाम।
0: यहाँ बात होगी युवा सोच की, नई उम्मीदों की, उन ख्वाबों की जो नींद में नहीं खुली आंखों से देखे जाते हैं।
1: तो जुड़ जाइए आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर कार्यक्रम युवाणी के साथ, और आज के कार्यक्रम में आपसे मुखातिब हूँ आपकी रेडियो दोस्त मनीषा,
0: और मैं हूँ चेष्टा।
1: तो सभी सुनने वालों को हम दोनों की ओर से हंसता खिलखिलाता प्यार भरा नमस्कार।

0: दोस्तों, छुट्टियां कुछ लोगों के लिए आराम का समय होती है तो कुछ के लिए घूमने फिरने का। वैसे तो छुट्टियां आते ही सबसे पहले दिमाग में आराम, मोबाइल गेम्स, देर तक सोना, ये सब कुछ आता है, क्यों मनीषा?
1: बिल्कुल आता है। और तुमने छुट्टियों का नाम लेते ही हमारे पहले के टाइम का याद दिला दिया ना, बचपन में छुट्टियां हाँ, कितनी एंजॉय करते थे।
0: बिल्कुल, जब हम छोटे थे ना, तो जैसे कि मैं अपना पर्सनली बताऊं तो कि हम जब छोटे थे तो क्या किया करते थे कि सुबह उठते थे जल्दी, किस लिए कि हमको साइकिल चलाने को मिलता था, क्योंकि हम जब छोटे थे ना तब भी इतने ही बिजी

0: हुआ करते थे जितने आज बच्चे हुआ करते हैं। हमारा रूटीन यही रहता था कि स्कूल जाना है, वहां से आना है, फिर ट्यूशन जाना है, फिर शाम को आके होमवर्क करना है, डिनर करना है, उसके बाद तो बच्चे ऑब्वियसली सो जाया करते थे। तो हमें गेम्स खेलने का जो टाइम है वो एक्चुअली मिलता ही समर्स वेकेशन में था।
1: पूरे साल हमें छुट्टियों का ही तो इंतजार रहता था ना।
0: बिल्कुल, ये जो 1.5 महीने की छुट्टियां होती थी ना, ये तो मान लो बस कि हाँ नानी के जाना, खेलना है दोस्तों के साथ, पूरा एंजॉय इन्हीं छुट्टियों में हुआ करता था।
1: जैसा कि तुमने बताया कि हम अब जो छुट्टियां हैं आराम करने में, मोबाइल गेम्स और देर रात तक सोना, इन्हीं में हम कर देते हैं ना चेष्टा। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जो अपनी छुट्टियों को सिर्फ बिताते नहीं है बल्कि उनसे समाज में बदलाव की शुरुआत भी करते हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि असली खुशी सिर्फ खुद के लिए जीने में नहीं होती बल्कि किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने में भी होती है।
0: वाह क्या बात कही है मनीषा आपने। तो दोस्तों क्यों ना इस बार की छुट्टियों का सदुपयोग श्रम दान करके किया जाए। अगर इन छुट्टियों में आपके छोटे छोटे प्रयास किसी की जिंदगी में मुस्कान ला दे तो कितनी अच्छी बात होगी, है ना।
1: वाकई में बात तो बहुत अच्छी होगी चेष्टा। और श्रमदान का मतलब ये नहीं कि आप कोई भारी भरकम काम करें, जैसा कि शब्द सुनने में लगता है ना कि श्रमदान नहीं, हम कोई शरीर से भारी काम करेंगे तो वो श्रमदान, ऐसा नहीं है। बल्कि अपने समय, मेहनत और ऊर्जा को समाज की भलाई के लिए काम में ले, ये श्रमदान है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा काम करें या मतलब बहुत ही कुछ एफर्ट डाले उसमें। आप किसी की मतलब घर पे जाके मदद कर सकते हैं, उसकी सफाई कर सकते हैं और पेड़ लगा सकते हैं, किसी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ा सकते हैं, पानी बचाने के लिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, ये सभी श्रमदान के हिस्सा होता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, यदि हम अपने आसपास की सफाई करें, पौधे लगाएं, अच्छे अच्छे काम करें तो हम पूरा माहौल जो है कहीं ना कहीं अच्छा कर सकते हैं, बना सकते हैं ना चेष्टा।
0: बिल्कुल। और दोस्तों श्रमदान का मतलब केवल सफाई करना ही नहीं, ये सोच है, एक जिम्मेदारी है, अपने समाज, अपने गांव, अपने शहर को बेहतर बनाने की पहल है।
1: बिल्कुल, जरा सोचिए दोस्तों, अगर हर युवा अपनी छुट्टियों के कुछ घंटे भी पेड़ लगाने में, किसी पार्क की सफाई करने में, जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने में या पानी बचाने के अभियान में लगाए तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है ना।
0: बिल्कुल मनीषा, बिल्कुल सही कहा। और आज कई युवा छुट्टियों में सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं, लेकिन वही समय अगर किसी अच्छे काम में लगाए तो छुट्टियों को यादगार भी बना सकते हैं और प्रेरणादायक भी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल बना सकते हैं, जैसा कि तुमने अभी बताया कि हम जो है सोशल मीडिया पर घंटों बिता देते हैं। 5 मिनट की वीडियो देखते देखते कब 50 मिनट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज हम एक ऐसी स्क्रीन जेब में लेकर घूमते हैं कि बस उसी में हम खोए रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो उस दुनिया से भी थोड़ा सा बाहर हट करके हम आसपास की भी सोचें। दोस्तों श्रमदान हमें केवल समाज सेवा ही नहीं सिखाता बल्कि टीम वर्क, अनुशासन और जिम्मेदारी का एहसास भी करवाता है।
0: तो दोस्तों अपनी छुट्टियों को केवल आराम तक सीमित ना रखकर बल्कि श्रमदान के जरिए उन्हें सार्थक और प्रेरणादायक भी बनाएं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का संवाद। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों, आपसे हमारी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और अब आपको सुनवाते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: श्रोताओं नमस्कार। ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले की सरढ़ी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री राम जी भगत, जो कि सरपंच हैं सरढ़ी ग्राम पंचायत के। भगत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
2: भगत जी, राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है, जिसकी उपलब्धि आपकी पंचायत को देश भर में एक अलग पहचान दिलाती है। तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी, तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
3: मैं तो सरपंच हूँ, लेकिन मेरे ग्राम और जितने भी हमारे जन प्रतिनिधि हैं, वो भी खुशी के झूम उठे। और मेरे जनपद के अधिकारी, जिले के अधिकारी ने भी इस राष्ट्रीय लेवल का तृतीय स्थान, जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरढ़ी विकास खंड बगीचा जिला जशपुर को मिला, उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस मुकाम पे पहुँचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है, आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले, उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुँच पाए, उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
2: सरपंच जी, जब आपने इस काम को करना शुरू किया तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ थी, और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया? और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीकी स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
3: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए। हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास, हमारे गांव में, और जंगल है, पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर, हम लोग का जन प्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए और उनका मैं सपोर्ट लिया और हर मोहल्ला में लोककर सभा किए, बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है, और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए, और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में चार बार, और हम लोग पूरे गांव जनभागी के द्वारा सहयोग, पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं। और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमारे सपोर्ट में जन प्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए, इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुँचे हैं।
2: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़ कर आपकी
3: बढ़ चढ़ कर मेरा सहयोग दिए।
2: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो खुले में शौच से मुक्त

0: सकती वाली बात है, तो शत प्रतिशत सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौतियां आपके सामने थी?
1: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था, काहे कि हम लोग आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं, और धीरे धीरे हम लोग लोकर सभा, जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक, हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से, अब हम लोग पंच के माध्यम से, अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है, उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।
0: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
1: जल संरक्षण के लिए केड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, और पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था, उस समय मैंने केड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया, इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया, इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
0: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
1: सर बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं, जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है इसकी हम लोग पानी का बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए, और पिछले 5-10 साल जो टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप के माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है, और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सोखता गड्ढा जो बोलते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं, 2.5 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मीटर का, उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहिए, अभी वाला जो हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के वजह बढ़ रहा है।
0: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
1: सर मैं पहले माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रो वाटर शेड में काम किया, माइक्रो वाटर शेड का ही मतलब है कि वाटर पानी को इकट्ठा करना, और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे, उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैंडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है, बरसात का पानी।
0: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
1: सर पहले हम लोग के यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, क्या है कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं, हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है, आने वाला पीढ़ी के लिए, हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए, और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
0: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है, मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
1: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय, हम लोग पहले जैसे माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था, उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए, उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए, और जनपद से भी आया कुछ पैसा, और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग वृक्षारोपण लगाए।
0: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
1: सर आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए, अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे,
0: मतलब उसके लिए भी आपने कार्य योजना
1: तैयार कर रहे हैं।
0: और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
1: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, कहा कि उसको हम लोग बनाते नहीं है, उसको हम खुद नहीं बनाते हैं, तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग को इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए, वहाँ हम लोग का मतलब कि गांव में कोई प्लास्टिक मुक्त है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
0: इस तरह की जो गतिविधियां खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहाँ पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
1: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्व सहायता समूह को, उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं, और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर बेहतर हो रहे हैं,
0: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
1: और सप्ते में हम जैसे हम लोग पूरे गाँव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
0: सरपंच जी,

0: आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
1: सर, केडा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केडा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहा है
0: जी,
1: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहे हैं।
0: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
1: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता।
0: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं।
1: सर, उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
0: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
1: सर, हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है, एकदम सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं और सारा समस्या का हल मैं स्मार्ट उठता हूँ बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, उसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या है क्या है, तो मैं स्मार्ट उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ। मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पे उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
0: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
1: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी जो लगता है सचिवालय उस दिन अलग है, वो तो सरकारी कर्मचारी शाम है, मेरा सोमवार मंगल बुध भी मेरा 3 दिन लगातार बैठक अपने घरे में बैठता हूँ और 3 दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में बैठता हूँ, अब 3 दिन मेरा काम हो जाता है, मतलब हमेशा व्यस्त रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है।
0: यही कारण है कि आपकी पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
1: जी सर।
0: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जब गाँव में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
1: सर, उसके लिए अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, जो बचा कुचा है उस काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहां हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूर्ण कर सके।
0: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंडसेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
1: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं ना, आदिवासी लोग रहते हैं ना, उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था, फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव के बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए, जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया, उसी कारण से ODF मतलब पंचायत बना, जैसे शौचालय मुक्त है ना, उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
0: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए, आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
1: सर, डिजिटल एक आज का आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है, हम बैठे बैठे अपने कार्य को जिला का हुआ चाहे राज्य का हुआ, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं
0: जी,
1: चाहे जिससे कहा महिला KYC वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। अब हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब का उसके लिए मकान बनने वाला है।
0: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गांव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
1: जिन्होंने मतलब के जागरूक नहीं तो उसको मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया, इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाइए, उसका लाभ उठाइए।
0: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है या लोगों की अपेक्षाएं

0: बढ़ गई है, दोनों चीजें बढ़ गई हैं।
1: सर राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है। जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है। प्रशासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी भी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ।
0: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
1: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि है या जनता आपको वहां तक पहुंचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा, उनको और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
0: तो भगत जी आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरडी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

विषय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: FM 102 और 103.6 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी, आपकी रेडियो दोस्त मनीषा
1: और चेष्टा के साथ।
0: दोस्तों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चेष्टा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे आज के अगले सेगमेंट की ओर।
1: हाँ बिल्कुल, और सुनवाते हैं हमारे दोस्तों को ये रिकॉर्डिंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने कार्यक्रम युववाणी में, और आज है आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त चेष्टा गौतम। दोस्तों, जैसे कि मई के महीने को हमने अलविदा कह दिया है और अब आ चुका है जून का महीना, और जून के महीने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस आता है जो कि है योग दिवस। और दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ है अंकित दीक्षित जी, जिनसे हम बात करेंगे योग के सिलसिले में। तो अंकित जी, कैसे हैं आप?
2: जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: तो अंकित जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं।
2: जी, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम अंकित दीक्षित है। वैसे तो मैं एक शिक्षक हूँ, पर मैं अपने आप को एक विद्यार्थी से कम नहीं समझता, क्योंकि मेरा सीखना आज भी जारी है। करने को मैंने BSc मैथमेटिक्स, फिर MSc, BEd और भी बहुत कुछ कोर्सेज किए हैं, कुछ योगा को लेकर भी कुछ कोर्सेज किए हैं, और साथ में ही मैं पढ़ाता भी हूँ। और जैसा मैंने पहले बताया, मैं आज भी तैयारी कर रहा हूँ, आज भी मैं एक विद्यार्थी हूँ।
1: तो अंकित जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने कोर्स किया हुआ है योगा में, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपको योगा में इंटरेस्ट तो है। तो कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ?
2: इंटरेस्ट है, और ये दिनों दिन मेरा इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है।
1: तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है ये कहाँ से डेवलप हुआ था?
2: जी, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता था, पास ही में हमारे इधर शिवपुरी धाम है थेकड़ा के यहाँ पर। तो जब जाता था वहाँ, कुछ जो लगभग 35-40 या कुछ इससे भी ज्यादा उम्र के लोग थे वहाँ पर, वो योगा करते थे। हम दौड़ लगाकर जाते और वहाँ पेड़ की छांव में जाकर के कुछ देर के लिए योगा करते थे। हम उन लोगों को देखते हैं कि उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक है, वो बढ़िया खुश मिजाज, उनको बिल्कुल कोई तरह का स्ट्रेस लगता ही नहीं था। तो धीरे धीरे हमें भी लगा कि यार, ऐसी पर्सनैलिटी हमारी भी होनी चाहिए। तो उनके पास जाकर कुछ दिन योगा ट्राई किया, जहाँ पर हम वर्कआउट करते थे, रनिंग करते थे, तो फिजिकल हेल्थ तो अच्छी थी, बट जब योगा किया तो एक अलग ही लगा कुछ। तो हमें लगा कि यार, हमें कुछ सीखना चाहिए। तो फिर उस टाइम लगा, और मैं और मेरा एक दोस्त है, हमने योगा में डिप्लोमा इन योगा साइंस किया। और फिर उससे है कि वहाँ बहुत सारी और भी चीजें सीखने को मिली हमें। हमें ये भी सीखने को मिला कि ये जो योगा है, जो हमें फॉरेन कंट्रीज से हमें देखने को मिल रहा है आज, ये जनरली हमारे वेदों से निकला है, ये योग है। तो जनरली आज की जनरेशन इसको योगा योगा बोलती है, पर एक्चुअल में ये इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है और ये योग है।
1: तो जैसे कि अभी आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो अभी भी आप योग करते हैं?
2: जी, अभी भी मैं सवेरे 5 बजे के आसपास उठता हूँ, और उसके बाद मैं कुछ योगा प्रैक्टिस करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं रनिंग करने के लिए जाता हूँ, पर पहले मैं योगा करता हूँ। उससे दिन भर मेरा शांत रहता है और गुस्सा भी कम आता है, क्योंकि आज के टाइम पर गुस्सा तो बहुत ज्यादा रहता है, तो वो भी मेरा उससे काफी हद तक कंट्रोल हुआ है।
1: तो जैसे कि अभी आप टीचर भी हैं, तो आपने देखा ही होगा कि आजकल के जो बच्चे हैं उनमें जो जिम है उसके प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो बहुत आकर्षित है मतलब जिम की ओर। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों के लिए क्या फायदेमंद है, योग या फिर जिम?
2: देखिए, विद्यार्थियों के लिए दोनों ही चीजें बहुत अच्छी है। अगर सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ अगर हमें हमारे फिजिकल बॉडी को बनाना है, तो जिम उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। आप वहां पर जाकर के बढ़िया बाइसेप ट्राइसेप वगैरह बना सकते हो, बट अगर हमें ऑल ओवर डेवलप

0: डेवलपमेंट चाहिए, हमें चाहिए कि हमारी मेंटल हेल्थ भी सही रहे, हम छोटी छोटी सिचुएशंस में पैनिक नहीं हो जाएं, क्योंकि बच्चों को देखा है हमने आस पड़ोस में कि वो छोटी छोटी कंडीशंस में हाइपर हो जाते हैं, थोड़ा सा रिजल्ट खराब हो गया, हाइपर हो गए। बट योगा क्या करता है, एक बैलेंस है, जैसे एक बैलेंस डाइट होती है ना, उसमें हर चीज होती है, वैसे योगा में हर चीज है, ऑल ओवर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, साथ में इतना ही नहीं आपकी हेल्थ में वो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है, हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, और ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा तो हमारी ब्रेन की कैपेसिटी तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो अगर देखा जाए छात्रों के लिए तो बहुत ज्यादा योग जो है बहुत महत्वपूर्ण है।
1: तो अंकित जी, अगर कोई योग प्रारंभ करना चाहता है तो उसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे उसके लिए, और वो कैसे शुरुआत कर सकता है योग करने की?
0: योगा बहुत ही आसान सा विषय है, अगर देखा जाए पढ़ने के अकॉर्डिंग तो उसमें भक्ति योगा, ज्ञान योगा, हठ योगा और भी बहुत कुछ है, पर हम उतने डीपली नहीं जा करके एक साधारण से सीखेंगे कि इस समय हम उसको कैसे बहुत आसानी के साथ कर सकते। तो शुरुआत हम करेंगे, सुबह उठेंगे थोड़ा एकदम शांत वातावरण में, अगर शांत वातावरण ना है तो जल्दी उठो, फिर थोड़ा 5 बजे, अगर वो भी ना हो तो एक शांत जगह जहाँ पर हवा का ठीक तरीके से हो, आवागमन हो। इसके बाद एक आसन लगाएं, या फिर आप मार्केट से भी आसन ला सकते हैं, और उसके बाद में सबसे पहले हमें योगा के अकॉर्डिंग ठीक तरीके से कपड़े पहनने हैं, ताकि हमें कोई मांसपेशियों में किसी भी प्रकार का खिंचाव वगैरह ना हो। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत वार्म अप करेंगे जैसा हम नॉर्मल करते हैं। वार्म अप में हमें कुछ नहीं करना, हमारे हाथों के जितने भी जॉइंट्स हैं उनको थोड़ा मूवमेंट करेंगे, उनके लिए भी आसन है, पर हम उतना डीपली बताएंगे नहीं श्रोताओं को, वरना वो भ्रमित हो जाएंगे कि कौन सा कब करना है, पहले कौन सा बाद में कौन सा। पर सबसे पहले हम बैठेंगे सुखासन में, सुखासन मतलब जैसे अपन खाना खाने बैठते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बैठना है सुखासन में। मैं ये जो योगा बता रहा हूँ ये विद्यार्थियों के तरीके से बता रहा हूँ।
1: अब अंकित जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको ऐसे बैठना है जैसे कि आप खाना खाते वक्त बैठते हैं, तो खाना खाते वक्त तो कुछ लोग डाइनिंग टेबल पे ही बैठते हैं, तो आप बताइए कि असल में कैसे बैठना है, क्योंकि इससे भ्रमित ना हो जाए श्रोता हमारे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है, हमें जिस तरीके से बैठना अच्छा लगे, हमें जमीन पर हमारे जो हमने आसन बिछा रखा है उस पर बैठना है, जैसे आपको सही लगे। जनरली पोजीशन ये होती है कि हमारी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी हो, झुकी हुई ना हो, ताकि इससे हमारी जो बैकबोन पे L1, L2, L3 वगैरह जो है उन पे किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना आए, और साथ में ही हमारे जो पैर है वो अंदर की तरफ फोल्ड करके बैठा जाए जमीन पर। ये नॉर्मल सा सुखासन होता है, बाकी बैठना अगर चाहे तो पद्मासन और भी अलग अलग आसन है, उनमें बैठा जा सकता है, पर वो उतने आसान नहीं होते शुरुआत में, तो हमें सुखासन सही रहेगा। के बाद अगर हमें कोई प्रार्थना आती है जो हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करे, तो हमें वो प्रार्थना गुनगुनानी है, उससे हमारे चेहरे पे एक प्रसन्नता आ जाएगी और हमारा योग करने में बहुत अच्छा मन लगेगा। प्रार्थना गुनगुनाने के बाद हम योगा प्रारंभ करेंगे, आप अनुलोम विलोम, भ्रामरी, प्रस्तिका, कपालभाति, ये व्यायाम कर सकते हैं। ये जनरली प्राणायाम के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इसमें हम श्वासों पर नियंत्रण कर रहे होते हैं, कि श्वासों की जब नियंत्रण होती है तो हमारे दो स्वर होते हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, यानी ईड़ा और पिंगला नाड़ियां होती है। तो जब हम इन दो नाड़ियों के माध्यम से हम श्वास को लेते हैं, छोड़ते हैं, इन पर नियंत्रण करते हैं, तो इन दोनों से हमारे आज्ञा चक्र यानी हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो जागृत होती है, और उससे हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और हमें मानसिक शांति मिलती है।
1: तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज के युग में जो विद्यार्थी है उसे बहुत सारी जो चीजें उसको फेस करनी पड़ती है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो बहुत सारे उसे फेस करने पड़ते हैं, तो योग इसमें उनकी क्या हेल्प कर सकता है, लाइक कौन कौन से जो आसन है वो कर सकते हैं और उससे अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको अच्छा रख सकते हैं?
0: देखो, मैं एक शिक्षक भी हूँ तो मैंने बच्चों को बहुत पास से ऑब्जर्व किया है, बच्चों में पेशेंस, धैर्य की बहुत कमी होती है। जब वो मैथ के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वो ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो इस बात को बताती है कि उनका ध्यान वहां नहीं था, या उन्होंने बहुत तत्परता दिखाई बहुत ज्यादा। कुछ कंडीशंस में बच्चों के अंदर किसी ने कुछ कह दिया तो उनके अंदर आ जाता है मुझे ऐसा क्यों बोला, बहुत सारी चीजें। उन सबके पीछे एक ही सॉल्यूशन है कि उनके अंदर पेशेंस डेवलप किया जाए, उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी एक सामान्य धैर्यपूर्ण व्यक्तित्व वाला इंसान बनाया जाए। तो उसमें योग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखता है अपना। ऐसा ही नहीं, मैंने कुछ मेरे विद्यार्थियों पर इस बात को आजमाया भी है, उनको कहा भी, जो पहले इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे मैथ्स और काफी अच्छे अनेक विषयों में, मैंने उनको, उनके पेरेंट्स को थोड़ा कहा कि उनको पहले स्टार्टिंग में थोड़ा लालच देकर, थोड़ा प्रेशर कर उनको सिखाया। इससे फायदा ये हुआ कि अब वो थोड़ा पहले से इम्प्रूव कर पा रहे हैं, अब वो उन छोटी छोटी गलतियों को नहीं कर, अब उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि वो उतना गुस्सा नहीं कर। गुस्सा करने के पीछे और पेशेंस ना रहने के पीछे आज की दौड़

0: भरी जिंदगी भी है। बच्चे दिन भर लैपटॉप वीडियो गेम खेलते हैं, बाहर क्रिकेट खेलना अब वो भूल से गए हैं शायद। कुछ बच्चे खेलते भी हैं, ऐसा नहीं है, पर स्क्रीन टाइम इतना बढ़ जाने से जो माइंड को जो एक डोपामिन है वो बहुत इजीली मिल जाता है, तो बच्चों के अंदर वो चीजें पेशेंस वो नहीं मिल पाता। उनको जिंदगी एक वीडियो गेम की तरह दिखती है कि अभी ये लेवल कंप्लीट किया अगला लेवल फिर आ जाएगा, पर लाइफ ऐसी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और रही बात उनके डेवलपमेंट के लिए जो आपने पूछा अभी, तो उसके लिए सबसे पहली चीज है अगर वो चाहें तो त्राटक कर सकते हैं। त्राटक में हम अपने सामने कहीं भी चलते फिरते कहीं पर भी हमने एक बिंदु देखा कुछ दूरी पर, लगभग 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर, बिल्कुल आंखों के सामने है, उसको एक टक देखना है बस। इससे हमारे विचार भी शांत हो जाएंगे, हमारे मन में चल रही उथल पुथल भी शांत हो जाएगी। हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं बच्चों के लिए, है ना, इस ठीक है। एवं साथ में ही बच्चे मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ बच्चे ओम चैंटिंग के साथ में मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ हम अपनी आंखें बंद करके बस ये ध्यान रखें कि मैं श्वास अंदर ले रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ, यानी जो श्वास अपने आप अंदर आ रही है और अपने आप बाहर जा रही है, बस उसको देखना है। ऐसा करने से हमारा दिमाग, हम देखेंगे कुछ समय बाद विचारों उसमें विचार जो होते हैं वो खत्म से हो जाएंगे और मन शांत होगा। जब हम उठेंगे मेडिटेशन करके तो हमें सुखद महसूस होगा। और बच्चे जो होते हैं उनको लगता है कि अपन ने आज मेडिटेशन किया और आज ही में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये चीजें हमें एक लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा इफेक्ट देती है।
1: तो योग निरंतर करना जरूरी होता है अच्छे रिजल्ट्स के लिए, या फिर जैसे कि एक दिन कर लिया, दो दिन कर लिया और फिर तीन दिन नहीं किया या दस दिन नहीं किया तो ऐसे चल जाता है, या फिर पूरी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी होती है?
0: जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम किसी भी चीज को निरंतर नहीं करेंगे तो हमारा मन ही उस चीज से हमें दूर कर देगा। और योग ऐसा चीज है जिसमें हम अगर खुशी के साथ में उसको करें तो वो हमें बहुत ज्यादा सकारात्मक परिणाम देता है, और इस हमें निरंतर ही करना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज नहीं किया कल कर लिया दो दिन, नहीं नहीं, हमें इसको निरंतर ही करना होगा, तभी हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।
1: तो योग सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखता है या फिर इससे जो शारीरिक जो रोग है वो भी ठीक होते हैं, या और भी किसी को किसी प्रकार के रोग है तो वो भी ठीक हो सकते हैं?
0: जी, जैसा मैंने पहले बताया कि ये ऑल ओवर डेवलपमेंट का, ठीक, मानसिक स्वास्थ्य तो ठीक करते ही है, पर आप देखोगे बहुत से लोगों ने इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया है, इसका बहुत ज्यादा लोगों को फायदा मिला है। जैसे कुछ लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा माइग्रेन होता है, को तो सही करता ही है, साथ में और भी बहुत सारी बीमारियां से ठीक की जा सकती है अगर हम इसका नियमित अभ्यास करें और एक सही विधि के साथ में इसका प्रयोग करें। बस जैसे इनमें कुछ बीमारियां इस प्रकार हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, किसी के जॉइंट्स में पेन है, सर्वाइकल जो उसमें पेन है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इसके अलावा और भी, इसके साथ में ही हार्मोन्स को बैलेंस रख सकता है, गर्ल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। कुछ बच्चे जिनकी हाइट कम है अगर वो ताड़ासन नियमित अभ्यास करें तो उनकी हाइट में भी बढ़ोतरी देखी गई है। साथ में अगर वो कपालभाति जैसे कुछ करते हैं, त्राटक करते हैं, तो इनसे उनकी आंखों की शुद्धि होती है, उनके जो लंग्स हैं उनके शुद्धि होती है, क्योंकि पोल्यूशन में बच्चा जाएगा खेलेगा भी धूल मिट्टी में, गाड़ियों की जो पोल्यूशन है वो लंग्स में जाएगा, अगर वो कपालभाति करेगा तो उसके लंग्स भी हेल्दी रहेंगे।
1: बहुत अच्छा लगा अंकित जी आपसे बात करके, जुड़े रहिएगा आकाशवाणी के साथ।
0: जी थैंक यू आकाशवाणी मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे आपके इस प्रोग्राम में आकर बहुत अच्छा लगा।
2: दोस्तों अभी आपने योग विषय पर युवा श्रोता अंकित से ये भेंट वार्ता सुनी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप भी अपने जीवन में योग को शामिल करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से आपको सीधा ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुन लेते हैं एक और गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण लिपियों में से एक ब्राह्मी लिपि के बारे में।
1: जी हाँ दोस्तों, इस लिपि के बारे में आपको बता दें कि केवल ये एक लिपि

0: नहीं है बल्कि हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: दोस्तों, आज आप जानेंगे कि ब्राह्मी लिपि क्या है, इसका इतिहास क्या है और भारतीय भाषाओं के विकास में इसका क्या योगदान रहा है।
0: तो चेष्टा, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर लिपि होती क्या है।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, जब आप अपनी बात को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो जिन चिन्हों या अक्षरों का उपयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं।
0: जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी, है ना, वैसे ही प्राचीन जो अभिलेख वगैरह हुए हैं उनको उनकी भाषा में लिखा जाता था ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इतिहासकारों के अनुसार ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है और इसका उपयोग लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बड़े पैमाने पर होने लगा था।
0: विशेष रूप से महान सम्राट जो अशोक हुए हैं, उन्होंने उनके जो शिलालेख हैं वो इसी लिपि में लिखे गए हैं। इन्हीं शिलालेखों के माध्यम से हमें उस समय के शासन, समाज और धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: बिल्कुल। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है, वो ये है कि एक समय पर ऐसा भी आया था जब लोगों को ब्राह्मी लिपि को पढ़ना ही भूल गए थे कि कैसे उसे पढ़ा जाता है, और कई शताब्दियों तक ये लिपि रहस्य भी बनी रही थी।
0: अच्छा। फिर 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसप ने अथक प्रयासों से ब्राह्मी लिपि को पढ़ने और समझने में सफलता प्राप्त की थी।
1: बिल्कुल। और उनकी इस खोज ने भारतीय इतिहास के अध्याय में एक नया अध्याय जोड़ दिया और इसके बाद अनेक प्राचीन अभिलेखों का समझा और उनको जो है समझकर आगे उनमें कार्यवाही की थी।
0: बिल्कुल। दोस्तों, ब्राह्मी लिपि की एक और विशेषता यह भी है कि इसे भारत की कई आधुनिक लिपियों की जननी माना जाता है।
1: बिल्कुल। जैसे कि देवनागरी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कई अन्य भारतीय लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है।
0: चेष्टा, इससे पता लगता है कि आज हम जिन लिपियों का उपयोग करते हैं उनकी जड़ें कहीं ना कहीं ब्राह्मी लिपि से जुड़ी हुई है ना।
1: बिल्कुल। और ये जानकर गर्व होता है कि हमारी प्राचीन सभ्यता ने लेखन और ज्ञान के संरक्षण के क्षेत्र में इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेगमेंट देश हमारा।

0: दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नॉलेज कॉर्नर सेगमेंट की ओर। दोस्तों आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व को जिन्होंने अपने साहस, नेतृत्व और देशभक्ति से देश का गौरव बढ़ाया।
1: दोस्तों हम बात कर रहे हैं लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी की, जिनका जन्म 6 जून 1890 को असम में हुआ था। ये एक महान स्वतंत्र सेनानी, समाज सेवी और असम के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
0: हाँ चेष्टा, ये असम के जो प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था और असम को भारत के साथ एकीकृत रखने और उसके विकास की नींव रखने में भी इन्होंने ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। असम की जनता और राज्य के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण को देखते हुए उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी गई थी।
1: इन्होंने 1946 से 1950 तक असम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था और गुवाहाटी में स्थित पूर्वोत्तर भारत का हवाई अड्डा इन्हीं के नाम पर समर्पित है।
0: और राष्ट्र निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1999 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया था।
1: बिल्कुल, और मनीषा उन्होंने हमेशा लोगों की भलाई और समाज को और संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य किया था।
0: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा। उनके जीवन से हमें कई सीख जो है, कई प्रेरणा मिलती है, कई सारी बातें सीखने को मिलती है कि एक जागरूक सोच, एक मजबूत इरादा और एक सच्ची आवाज इतिहास बन सकती है।
1: बिल्कुल, और उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। और दोस्तों कहा भी जाता है कि अगर गोपीनाथ बोरदोलोई जी का मजबूत नेतृत्व नहीं होता तो शायद असम आज भी जो हमारे देश का हिस्सा है वो नहीं बन पाता।
0: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उन्होंने शिक्षा, समाज सुधार और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। तो दोस्तों लोकप्रिय गोपीनाथ

0: बोलो जी की जयंती पर उन्हें हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और आइए हम भी देश सेवा, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी का संकल्प लें।
1: गले में सरस्वती माँ का वरदान कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है ना।

0: पन घट पे।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे वीर क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अपने साहस, विचारों और संघर्ष से देश को आजाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही महान क्रांतिकारी उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय जी के बारे में। इनका जन्म बंगाल में 6 जून 1879 को हुआ था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही प्रभावशाली लेखक और पत्रकार भी थे।
0: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ वे बंगाल की प्रसिद्ध क्रांतिकारी संस्था युगांतर के वास्तविक संस्थापकों, संपादकों और मुख्य लेखकों में से एक थे।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, वे बंगाल प्रांतीय हिंदू महासभा से भी जुड़े और इसके साथ वो वहाँ के अध्यक्ष भी चुने गए थे। और उनका पूरा जीवन राष्ट्रवाद और जो अध्यात्मक और निडर पत्रकारिता, एक अनूठा संयम था।
0: उनका जीवन जो है, इन सबका एक अनूठा संगम माना जाता था, है ना चेष्टा। जीवन के अंतिम वर्षों में वे राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। देश के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाया। उनका जीवन जो है, हमें सिखाता है साहस, राष्ट्र प्रेम और संघर्ष की सीख। ये सब कुछ हमें उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है।

0: दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में जो कि है करंट अफेयर्स। भारत के चंद्रयान 2 चंद्र मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दबी हुई जल पर्व के पुख्ता प्रमाण खोजे हैं।
1: दोस्तों इसी के साथ जून 2026 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ रामसिया गांव मध्य प्रदेश में किया।
0: इसी के साथ दोस्तों भारतीय वायु सेना ने सुखोई SU-30 MKI लड़ाकू विमानों के पूर्वानुमानित रख रखाव के लिए IIT बॉम्बे संस्थान के साथ 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं।
1: दोस्तों भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है।
0: और दोस्तों राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव 88.6 से बढ़कर 90.6 हो गया है।

आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। अब श्रोता सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, कुछ ही पलों में प्रतीक्षा कीजिए।

0: चेष्टा। देखते देखते हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। गीत भी बहुत हैं, बातें भी बहुत हैं, लेकिन अब समय नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: तो समय है अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। लेकिन दोस्तों, वादा करते हैं अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आपकी दोस्त मनीषा को
1: और चेष्टा को
0: दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षो में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया।

0: आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना राहत फतेह अली खान के सुरों में रेड फिल्म का ये गाना। गीत के बोल लिखे मनोज मुंतशिर ने और धुन बनाई तनिष्क ने। इसी के साथ अब सुनिए यमला पगला दीवाना फिल्म से राहत फतेह अली खान और

श्रोताओं, अभी आपने सुना दबंग 2 फिल्म का सोनू निगम और तुलसी कुमार की सुरीली आवाजों में ये गाना। गीत के बोल लिखे इरफान ने और धुन बनाई साजिद वाजिद ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज में रंगरेज फिल्म का ये गाना, जिसके बोल लिखे समीर ने और धुन बनाई साजिद वाजिद ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब पेश है रजत अरोड़ा का लिखा, विशाल शेखर की धुन से सजा डर्टी पिक्चर फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है सुनिधि चौहान ने।

आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी का प्रसारण हमारे जयपुर केंद्र से। प्रतीक्षा कीजिए।

0: अरे सरला, ये मुंह अंधेरे हाथ में बोतल लेके कहाँ जा रही है?
1: जंगल जा रही हूँ दीदी, और कहाँ। इससे पहले कि दिन निकले उजाला हो, मैं जंगल में जाके आ जाती हूँ।
0: पर तू जंगल
1: क्यों जाती है?
0: तेरे घर में तो शौचालय बना हुआ है ना?
1: बना हुआ तो है दीदी, पर उसमें तो उपले रखे हुए हैं, और उस शौचालय में एक बार शौच के लिए जाने का मतलब है 3 बाल्टी पानी खर्च करना। तुम्हें तो पता है ना कि मैं पानी कितनी दूर से लेकर आती हूँ। अब इतनी मेहनत से लाए गए पानी को इस तरह बेकार में ही थोड़ी उड़ेल दूंगी।
0: बेकार में? अरे बावली, जरा सोच, पानी बचाने के चक्कर में तू अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को मुसीबत में डाल रही है।
1: तुम्हारी बात मेरी समझ में तो नहीं आ रही।
0: अरे सरला, जरा दिमाग पे जोर डाल कि तेरे मल पे कितनी मक्खियाँ बैठती हैं, और वही मक्खियाँ वहाँ से उड़कर कई घरों में जाकर उनके खाने पीने की चीजों पे बैठती हैं, और उन चीजों को जब वो लोग खाएंगे तो क्या वो बीमार नहीं पड़ेंगे?
1: हाय दैया, इतनी गहराई से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, घर पहुंचकर आज से ही शौचालय के उपले बाहर निकालकर हम सब उसे काम में लेना शुरू कर देंगे।
0: ये हुई ना समझदारी वाली बात।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ जीवन स्तर सुधार और कारोबारी सुगमता के उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, कहा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया। और राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में गिरावट, आज और कल भी आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और व्यापार सुगमता के लिए भी कई सुधारों पर मंथन किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के देश दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। श्री शर्मा धनवंतरी ओपीडी यूनिट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर मरीजों से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न वार्डों के रोगियों से भी बातचीत कर इंतजामों की जानकारी ली। श्री शर्मा ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी और अधिकारियों को मरीजों के लिए जांच सुविधाएं और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएमएस देश का प्रतिष्ठित अस्पताल है, यहां प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं, ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जहां भी सुधार की गुंजाइश है, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
1: या दूसरे प्रदेशों से भी पेशेंट आते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हो, समय पर काम हो, किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं हो, आज यही देखने के लिए मैं आया हूँ। मैंने मरीजों से भी बात की, तभी मरीजों ने कहा है कि समय पर हमारे जांच हो रही है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, उनका काम हो रहा है, कि हम सबका दायित्व है कि हम उन सबकी सेवा करें, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हमारी सरकार पूरी तरह आम जन के साथ, हर व्यक्ति के साथ है, उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुधार की आवश्यकता हमेशा है। जो भी होगा उसको और सुधार करके अच्छा कैसे करें, इस पर हम चर्चा करें।
0: मुख्यमंत्री के साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का प्रमाण है।

0: उन्होंने कहा कि देश के किसान अब केवल खाद्य उत्पादक ही नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादक भी हैं। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। श्री शेखावत आज जोधपुर पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि पिछले 12 सालों में सुशासन से देश की तस्वीर बदली है।
1: यदि इस 12 साल के कालखंड को केवल एक वाक्य में समाहित करना हो तो मैं ये कहूंगा कि 12 साल पहले 2014 से पूर्व देश में जिस तरह से लोकतंत्र के प्रति, व्यवस्था के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा हो गया, वहां से निकल करके देश को हम भी विकसित हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस विश्वास से परिपूरित करके 2047 तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य देश के 140 करोड़ लोगों के संकल्प के रूप में उभरा, ये 12 साल की सफलता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार आज अपने पहले दौरे पर जयपुर पहुंचे। संगठन महामंत्री ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेकर संगठन के कामों और गतिविधियों की जानकारी ली। वे कल भाजपा मीडिया टीम और प्रवक्ताओं की विशेष बैठक लेंगे। उनका ये प्रवास संगठन को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने प्रदेश में विभिन्न विभागों की लंबित और प्रक्रियाधीन भर्तियों की आज समीक्षा की। उन्होंने विभागों को भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक कार्यवाहियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। आज जयपुर में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने गृह विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, पंचायती राज विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शिक्षा और चिकित्सा तथा नर्सिंग की भर्तियों की विभागवार समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और विभाग स्तर पर लंबित मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। मुख्य सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत आज प्रदेश के 4 शहरों जयपुर, उदयपुर, अलवर और नाथद्वारा के स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों और नवाचारों की समीक्षा की। उन्होंने नगर निकायों के साफ सफाई के कामों को अधिक प्रभावी और जन भागीदारी आधारित बनाने के निर्देश दिए। बैठक में इन शहरों में स्वच्छता प्रबंधन, कचरा संग्रहण, अपशिष्ट प्रसंस्करण और जन जागरूकता के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने स्वच्छता व्यवस्था में ऑटोमेटेड पेनल्टी सिस्टम के नवाचार की सराहना करते हुए साफ सफाई में तकनीक के ज्यादा से ज्यादा उपयोग पर जोर दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉ मांडविया ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यहां की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए युवा ऊर्जा और क्षमता को सही दिशा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: बहरोड़ में आज अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत समर कैंप का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों से अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास

0: विकास होता है। उन्होंने कहा कि समर कैंप से युवाओं की प्रतिभा को पहचानने का भी अवसर मिलता है।
1: हम सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमको प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी हमारे क्षेत्र में इस तरह का आयोजन करें। इसमें बहुत सारा जो हिडन टैलेंट है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो निकल कर बाहर आए। पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया है। योगा, मेडिटेशन, डिसिप्लिन, फिटनेस, डाइट, इन सब चीजों को यहाँ पर प्रशिक्षण मिला है इस पूरे कैंप में।
0: फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत कल लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया जाएगा। बाड़मेर में पुलिस की ओर से साइकिल रैली निकाली जाएगी। वहीं पाली में साइकिल रैली के जरिए लोगों को नियमित व्यायाम करने के लिए जागरूक किया जाएगा। चूरू जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों में खेजड़ी वाटिकाएं विकसित की गई हैं। राज्य वृक्ष और थार कल्प वृक्ष मानी जाने वाली खेजड़ी के संरक्षण के प्रयास के तहत ये पहल की गई है। वन विभाग ने एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी का चयन कर करीब 1.5 करोड़ खेजड़ी पौध तैयार की है। हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि जल्द ही इनका वितरण भी शुरू किया जाएगा।
2: राज्य वृक्ष खेजड़ी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चूरू जिले को एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी वृक्ष का चयन वन विभाग ने कर लिया है, जिसके तहत जिले में 5 तहसील मुख्यालयों पर खेजड़ी के वृक्ष के लिए वाटिका तैयार कर ली गई है, जिसमें 1,52,00,000 खेजड़ी के पौधे तैयार कर लिए गए हैं, जिनको आगामी दिनों में विभिन्न संस्थाओं व विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इससे कई शहरों का दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। पिछले कई दिनों से तेज गर्मी और तपिश झेल रहे लोगों को बदले मौसम से काफी राहत मिली है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में तेज गर्मी का असर बना हुआ है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 25 जिलों में आंधी और बरसात के आसार हैं। राज्य के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से आंधी बारिश की गतिविधियां आज और कल कई हिस्सों में जारी रह सकती हैं। वहीं 8 जून से एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ने और हीट वेव चलने की चेतावनी बताई गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है, वहीं तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। मुंबई में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया की अध्यक्षता में भारतीय टीम की चयन समिति की बैठक के बाद टीम का ऐलान किया गया। जापान में होने वाले एशियाई खेलों और भारत के श्रीलंका दौरे के लिए भी टीम का चयन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ जीवन स्तर सुधार और कारोबारी सुगमता के उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया। और राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में गिरावट, आज और कल भी आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से नागौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्याम लाल ने तैयार किया है। राज्य के उत्तर पश्चिमी मारवाड़ क्षेत्र में स्थित जिला नागौर 7 जिलों से घिरा हुआ है। महाभारत काल में इसे जंगला देश के नाम से जाना जाता था। नागौर खीमसर और कुचामन के किले के साथ ही मकराना के मार्बल के लिए ये जिला अपनी अलग पहचान रखता है। रामदेव पशु मेले और वीर तेजाजी मेले में भाग लेने के लिए देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। नागौर जिले की चिट्ठी में आज कई मंत्रियों के दौरे और सामाजिक तथा विकास से जुड़े समाचार शामिल हैं। सबसे पहले बात केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की। केंद्रीय मंत्री बीते दिनों

0: नागौर आए और उन्होंने मेड़ता सिटी में आयोजित राव दूधा प्रतिमा का अनावरण समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने राव दूधा की वीरता, न्यायप्रियता और नारी सम्मान के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन आज भी प्रेरणा का स्रोत है। रक्षा मंत्री ने मेड़ता के मीरा महोत्सव के लिए केंद्र सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां रखी गई। इस अवसर पर हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत हुई। जगह जगह पौधरोपण किया गया। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। इससे एक दिन पहले वन विभाग की ओर से नागौर में लवकुश वाटिका से रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस जवानों, विद्यार्थियों और एनसीसी कैडेट सहित सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन हुआ। इस अभियान की शुरुआत नागौर के जड़ा तालाब के पूजन के साथ हुई। इस दौरान पौधे लगाए गए और जल संरक्षण का संदेश दिया गया। अभियान के दौरान 12 दिन तक अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से लोगों को अभियान से जोड़ा गया। इस दौरान जगह जगह साफ सफाई की गई और जल संरचनाओं की मरम्मत के कार्य हुए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने अभियान के तहत नागौर के प्रताप सागर तालाब की पाल पर जल पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। श्री चौधरी ने जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न विभागों की योजनाओं तथा विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। जिले के ग्रामीण इलाकों में सड़क तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 62 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। जिला परिषद सभागार में बीते दिनों जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। बैठक में सांसद हनुमान बेनीवाल और राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की गुणवत्ता, बिजली, पानी और सड़क निर्माण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। जिले में जनगणना 2027 के तहत प्रगणक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण का काम कर रहे हैं। इससे पहले 1 मई से 15 मई तक स्वगणना का काम किया गया। इसके लिए प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों को कार्मिकों के साथ स्वगणना सुनिश्चित करने और हर कर्मचारी को कम से कम 10 अन्य परिवारों को प्रेरित करने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया गया ग्राम रथ अभियान ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का प्रभावी माध्यम बना। अभियान के दौरान अधिकारियों ने योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी। जिले में 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीके लगवाए गए। इस राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत जिला अस्पताल सहित विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव और टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूक करना था। नागौर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सलाहकार परिषद सागर जीवन स्तर माय सुधार और कारोबारी सुगमता रा जतन रबारा माय चर्चा कीनी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रा एसएमएस अस्पताल रो औचक दौरो कीनो। कहो स्वास्थ्य सेवा ने मजबूत बनावन सारू सगला जरूरी जतन करिया जावेला। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया नौजवाना ने विकसित भारत रो सपनों सांचो करन वाली ताकत बताया। और राज्य में चौमासाओं पहली रे हलचल रे कारण घनखर ठोड़ा पारो उतरियो। काल ताई आंधी बारिश रो दौर चाल तो रहवन रा आसार। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब

0: समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हमारी आर्थिक सलाहकार परिषद संग मीटिंग कीनी। वह दुनिया माए चाल रही उथल पुथल विचे भारत री माली बरकत ने बधावो देवन सारू करिया जावन वाला न्यारा न्यारा जतन रे बारा माए चर्चा कीनी। मीटिंग माए जनता री जिंदगी ने और बेहतर बनावन और कारोबार करण माए आसानी लावन सारू विचार करी चियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर रा सवाई मानसिंह अस्पताल री धनवंतरी ओपीडी यूनिट रो दौरो कीनो। वह मरीजों अस्पताल री व्यवस्थावां रे बारा माए जानकारी लीनी। श्री शर्मा मरीजां सारू भांत भांत री जांचां रा सुबिता, जरूरी दवाइयां री उपलब्धता और गर्मी माए छाया पानी री व्यवस्था तय करन रा हुकम दीना। मुख्यमंत्री हड्डी रोग कार्डियोलॉजी वार्ड और न्यूरोलॉजी वार्ड री व्यवस्थावां रे बारा माए मरीजों जानकारी लीनी। ई मौके वे कहो के अस्पताल माए चोखो काम फियो है पन फेरी सुधार री गुंजाइश है।
1: यहाँ दूसरे प्रदेशों से भी पेशेंट आते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हो, समय पे काम हो, किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं। आज यही देखने के लिए मैं आया हूँ। मैंने मरीजों से भी बात की, सभी मरीजों ने कहा है कि समय पे हमारे जांच हो रही है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, उनका काम हो रहा है, कि हम सबका दायित्व है कि हम उन सबकी सेवा करें, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हमारी सरकार पूरी तरह आम जन के साथ, हर व्यक्ति के साथ है, उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुधार की आवश्यकता हमेशा है। जो होगा उसको और सुधार करके अच्छा कैसे करें, इस पर हम चर्चा करें।
0: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि लारला 12 साल माए देश माए सूरज री रोशनी बिजली बनावन रो बूतो 2.8 गीगावाट बधर 155 गीगावाट फेंक्यो है। वह सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए कहो कि देश माए 40 लाख बत्ता घरा माए सूरज री रोशनी बनी बिजली काम ली जा रही है। शेखावत कहो कि खेतीबाड़ी माए सूरज री रोशनी बनी बिजली दूनी तादाद माए काम ले उनो आबो हवा ने बचावन सागे बरकत री मिसाल है। केंद्रीय मंत्री कहो कि देश रा किसान अब जिनसा री उपज लेवन सागे बिजली पैदा कर रहा है। श्री शेखावत आज जोधपुर पधारिया, वठक खबरनवीसा सागे बातचीत करता था। वह कहो कि लारला 12 साल माए सुशासन देश री तस्वीर बदली है।
2: यदि इस 12 साल के कालखंड को केवल एक वाक्य में समाहित करना हो तो मैं ये कहूंगा कि 12 साल पहले 2014 से पूर्व देश में जिस तरह से लोकतंत्र के प्रति, व्यवस्था के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा हो गया, वहां से निकल करके देश को हम भी विकसित हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस विश्वास से परिपूरित करके 2047 तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य देश के 140 करोड़ लोगों के संकल्प के रूप में उभरा, ये 12 साल की सफलता है।
0: भारतीय जनता पार्टी रा नुआ बनाईजा प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार आज पहला दौरा सारू जयपुर पधारिया। वे भाजपा रा प्रदेश दफ्तर माए पार्टी रा ओहदादारा सागे मीटिंग कीनी। वारो काल भाजपा मीडिया टीम और प्रवक्तावां सागे खास मीटिंग करण रो कार्यक्रम है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास प्रदेश रा न्यारा न्यारा महकमा माए भर्तियां रा काम रो आज जायजो लीनो। वे गृह, प्रशासनिक सुधार, पंचायती राज, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शिक्षा और चिकित्सा और नर्सिंग री भर्तियां रो विभागवार जायजो लीनो। मुख्य सचिव महकमा ने भर्ती रा काम जुड़ी जरूरी कार्रवाई बेगी पूरी करण रा हुकम दीना। श्री श्रीनिवास भर्ती रा काम माथे लगातार निगरानी राखण बाबत कहो। मुख्य सचिव स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 रातेत जयपुर, उदयपुर, अलवर और नाथ द्वारा माए स्वच्छता सर्वेक्षण री तैयारियां और नवाचारां रा बारा माए जानकारी लीनी। मीटिंग माए 8 होड़ा साफ सफाई रो प्रबंधन, कचरो भेड़ोकरण, गंदी चीजां रा प्रसंस्करण और जन जागरूकता सारू कराया जा रहा कामां री जानकारी दी री जी। मुख्य सचिव साफ सफाई रा काम माए ऑटोमेटेड पेनल्टी सिस्टम रा नवाचार री सराहना करता थका साफ सफाई माए तकनीक रो बत्तो बत्तो इस्तेमाल करण बाबत कहो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE अंक सत्यापन और परीक्षा री कॉपी उजू जंचावन सारू अर्जी देवन री आखिरी तारीख आज 6 जून नु बधार 7 जून करती नी है। ई पाछे विद्यार्थी अब काल आधी रात ताई अर्जी दाखिल कर सके है। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो।

केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नौजवाना ने विकसित भारत रो सपनो सांचो करण री प्रेरणा देवन वाली ताकत बताया है। वह नई दिल्ली माए राखी ज्या मेरा भारत युवा सम्मेलन माए बोल रहा है। डॉक्टर मांडविया कहो कि भारत दुनिया रा सब नौजवान देशा माए शामिल है, जठे करीब 65% आबादी 35 साल कम उम्र रा लोगां री है। वह कहो कि सरकार विकसित भारत बनावण और नौजवाना री ताकत

0: आबादी 35 साल कम उम्र रालोगा री है। वह कहो कि सरकार विकसित भारत बनावण और नौजवाना री ताकत और बूता न सही दिशा देवण सारू लगातार कोशिश कर रही है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ए देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: अलवर सांसद खेल उत्सव रा तेत बहरोड़ माए आज समर कैंप शुरू हो। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री और अलवर रा सांसद भूपेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सागर इनरी सर्वात कीनी। इस मौके दिया कुमारी कहो के खेलाओं अनुशासन टीम भावना और अगुवाई करण रा बूता रो विकास वह है। उप मुख्यमंत्री कहो के समर कैंप मोटियारा री प्रतिभा री पहचान रो मौको ही मिले है।
2: हम सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमको प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी हमारे क्षेत्र में इस तरह का आयोजन करें। इसमें बहुत सारा जो हिडन टैलेंट है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो निकल कर बाहर आए। पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया है। योगा, मेडिटेशन, डिसिप्लिन, फिटनेस, डाइट, इन सब चीजों को यहाँ पर प्रशिक्षण मिला है इस पूरे कैंप में।
0: फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल अभियान रहते काल स्वास्थ्य रो ध्यान रखण रे बारा माए जाग जगावण सारू खास कार्यक्रम रख्या जावेला। बाड़मेर माए पुलिस री ओर साइकिल रैली निकाली जावेला। पाली माए साइकिल रैली रे जरिए रोजिना कसरत करण जुड़ी जाग जगाई जावेला। राज्य वृक्ष अर थार कल्प वृक्ष कहो जावण वालो खेजड़ी रा रूखड़ा ने बचावण री कोशिशां रा तेत चूरू जिला री न्यारी न्यारी ग्राम पंचायतां माए खेजड़ी वाटिका विकसित करी ची है। वन विभाग एक जिला एक वनस्पति रातेत खेजड़ी रा करीब 1.5 करोड़ पौधा तैयार कीना है। माना खबर नवीज बतायो के ए पौधा बांटण रो काम बेगोई शुरू करियो जावेला।
3: राज्य वृक्ष खेजड़ी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चूरू जिले को एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी वृक्ष का चयन वन विभाग ने कर लिया है, जिसके तहत जिले में 5 तहसील मुख्यालयों पर खेजड़ी के वृक्ष के लिए वाटिका तैयार कर ली गई है, जिसमें 1,52,00,000 खेजड़ी के पौधे तैयार कर लिए गए हैं, जिनको आगामी दिनों में विभिन्न संस्थाओं व विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: अरब मौसम, राज्य में चौमासाओं पहली री हलचल बीच घनखर ठोड़ा पारो 5 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो है। कई शहर में दिन रा बगत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस नीचे उतर गयो है। हालांकि राज्य रा आतुणी हल्का माए कठे कठे जोरदार तावड़ो पड़ रियो है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर माए पारो 40 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। मौसम विभाग रे मुजब आज प्रदेश रा 25 जिला माए आंधी बारिश रा आसार है। आंधी बारिश आज और काल कई हल्का माए चालती रहवण री संभावना है। महकमो 8 जून उजू गर्मी रो असर बधवा सागे लू बाजण सारू चेतायो है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई इंग्लैंड और आयरलैंड सागे T20 मुकाबला सारू भारत री टीम रो ऐलान कर दिनो है। श्रेयस अय्यर ने टीम रा कप्तान और तिलक वर्मा ने उप कप्तान बनाई चिया है। 15 साल रा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने पहली दफा भारत री टीम में शामिल करी चियो है। वैभव इस साल री आईपीएल होड़ माए सबों 72 रन बनाया है। नौजवान खिलाड़ी प्रिंस यादव नई टीम माए शामिल करी चिया है। जापान माए फेवन वाला एशियाई खेलना और भारत रा श्रीलंका दौरा सारोई टीम चुनी ची। भारत और अफगानिस्तान री क्रिकेट टीम बीच इन सीरीज रा आज शुरू हुआ। एकला टेस्ट मैच माए भारत पहली पारी माए 368 रन बना लेना है और वारा 3 बल्लेबाज आउट हुआ। कप्तान शुभमन गिल 103 रन बनार खेल रहा है। ऋषभ पंत 50 रन बनार वारो साथ दे रहा है। इनु पहले केएल राहुल 100, साई सुदर्शन 81 और यशस्वी जायसवाल 24 रन बनार आउट हुआ। राजस्थान माए श्री गंगानगर रा मानव सुथार ई पहली दफा भारत री टीम माए शामिल करण सा गए ई मैच माए खेल रहा है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सलाहकार परिषद सागर जीवन स्तर माए सुधार और कारोबारी सुगमता रा जतन रे बारा माए चर्चा कीनी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर रा SMS अस्पताल रो औचक दौरा कीनो। कहो स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवा ने मजबूत बनावन सारू

0: सगळा जरूरी जतन करयाचा वेला। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया नौजवाना ने विकसित भारत रो सपनो सांचो करण वाली ताकत बताया। और राज्य में चौमासाओं पहली री हल चल रहे कारण घन खर ठोड़ा पारो उतरियो। काल ताई आंधी बारिश रो दौर चाल तो रहवन रा आसार। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
1: FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सभी श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चौपाल।

0: जानकारियां और लोक गीता सुभरियो कार्यक्रम चौपाल नसुण वाला संदा कृषाण बन भाया कताई रामू भाई कैडी सु घनी घनी राम राम। करसान बन बायो अबार गर्मी को टाइम चाल रही छे, कोई दिना तो छोको तपच, अब कोई दिना जो छे दूमड़ा सुमड़ा हो रहा छे, कोई दिना छाटा चीट हो रहा छे, बरकारी छे, नरी जगह गड़ा भी पड़िया छे। करसान बन बायो जेठ को महीनो चाल रही छे और जेठ को महीनो अपनो तेवर पूरो दिखा रही छे, जो को तावड़ो भी पड़ रही छे, उमस की नहीं भी लाग रही छे और गर्मी का मौसम में खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रहो घणो जरूरी छे। किसान बन भाई हो क्योंकि जोरा का तावड़ा सु पानी की कमी होबा की पूरी पूरी संभावना रहे और नरी सारी पेट की बीमारियां होबा की भी संभावना रहे, खतरो बनियो रहे। तो आपन शरीर में पानी की कमी न हो बदा और भरपूर पानी पीवा दिन भर और न तो 3-4 लीटर तो पानी जरूर पीनी चाहिए। पानी के अलावा नारियल पानी चे, नींबू पानी चे, चा चे, लस्सी चे, बेल को शरबत चे, इसे की चीजा आपन ताई सेवन करनी चाहिए जिसमे आपना शरीर में ठंडाई रहे। और गर्मी का दिना में ज्यादा जिसे तली फली गर्म चीजा ये आपन न खावा और किसान मन भाई हल्को और ताजा भोजन अपन ताई अबार करनी चाहिए जो आसानी से पच जाओ। खीरा तरबूज खरबूजा काकड़िया संतरा जैसी चीजा को अपन सेवन करा। सूती और डीला कपड़ा अपन पहरा और हल्का रंग का कपड़ा भी पहननी चाहिए। खाली पेट बाहर न करना, कुछ खा पी री जावा। किसान मन भाई देखो गर्मी को टाइम छे और गर्मी में आपने भी सावधानी रखनी चाहिए, अपना डंडा डोर की भी सावधानी रखनी और अब खेती किसानी को भी काम आ रही है तो उनकी भी पूरी अपन ताई सार संभाल रखनी चाहिए। बीज बुजोड़ा को खेत की तैयारी को सब बातों को अपन ताई ध्यान रखना चाहिए। और किसान बन भाया वो आज शनिवार छे तो अपन ताई एक बात को और ध्यान रखना चाहिए के आज का दिन अपन चला चा किसान किसा गाँव में आकाशवाणी गाँव के तहत तो चला आज अपन गाँव में। करसान बन भाई आज आपन आया चा आकाशवाणी गांव के तहत गांव भंवरदा तहसील वो जिला बूंदी को यो गांव छे और नेशनल हाईवे 52 पे यो गांव पड़े छे। जो ही आपन बूंदी रोड पे चला छा तो रामगंज बालाजी आओ छे, उनके बलि जीवना हाथ पे यो गांव पड़े छे। जो ही आपने 1 किलोमीटर अंदर चला छा तो गाँव आओ छे। कोटा मुख्यालय से लगभग यो 25 किलोमीटर दूरी पर यो गांव पड़े छे। करसान बन भाई चारों मेर हरिया भरिया फेड़ छे और यहाँ का जो खेत छे कोई खेत ऊंचाई पे छे कोई नीचाई पे छे। नरा किसान भाई जो छे बीज बजूरिया छे, नरा खेता में सूड़ खड़ी हुई छे, एक आध खेत में मूंग उड़द भी अपन ताई देख रियो छे और ट्रेक्टर चाल रिया छे, हाँक जोत रिया छे, कोई खेता के बाड़ कर रिया छे, क्यारा डोले बांध रहा है, कोई खेत ने शार को कर रहा है। तो किसान बनो भाई सभी अपना अपना काम धंधा पर लगे हुए है तो चलना अपन गांव के भीतर और जाना चाह गांव का हाल चाल। किसान बन भाई जो गांव भवरदा के अपन भीतर आया तो यहाँ बहुत ही बढ़िया देवनारायण भगवान को मंदिर छे और मंदिर पर नरा सारा भाई लोग बैठे हुए छे। आओ यहाँ से अपन बातचीत करा चा। राम राम साहब।
1: राम राम।
0: काय नाम छे आपको?
1: कंवर लाल चंद नाम।
0: अच्छा अच्छा कंवर लाल जी, आपकी उम्र कतरी होगी जी भाई?

0: 86 साल तो मान लो।
1: अच्छा, और 86-87 साल में भी आप देखो बिल्कुल चंगा छो और बिल्कुल मस्त लाग रहा छो, तो इनको काय कारण छे जी भाई?
0: भाई घर की सुविधा छे।
1: अच्छा,
0: घर को पालन पोषण बढ़िया छे, जिसमें मतलब यार सुविधा मिल रही छे।
1: अच्छा अच्छा,
0: अब भगवान की रिटर्न में लाग रहा था टब्बस।
1: अरे वाह वाह। अच्छा बताओ दादाजी, पढ़े लिखे भी छोको आप?
0: 70 में पढ़ाई छोड़ दी थी, 9th पास करे।
1: अरे वाह, तो फिर उन टाइम ना तो नौकरी वोकरी लग गया होगा?
0: घर की आस्थिक थोड़ी कमजोर थी, जीव जैसो नौकरी ना लग पायो।
1: अच्छा,
0: तो अभी लग जाते
1: ना? देखो
0: दो बार नंबर भी आ गए, दो बार पर जा ना सके वहाँ टाइम पर।
1: अच्छा,
0: रेलवे में वर्कशॉप होम में, जिनके बाद में मु CID में। तो जब सो घर में बैठे हुए था, घर को जो धंधो कर दिया था।
1: अच्छा,
0: पेट पालन कर दिया था।
1: बहुत बढ़िया। अच्छा, जमीन जाटो कतरे हो आप?
0: थोड़ी सी जमीन तो।
1: फिर भी के बीघा छे जी भाई?
0: 5-6 बीघा जमीन छे।
1: बढ़िया बात छे। और काई करो छो वारू में?
0: उमा गरडो भी हो छे।
1: हां,
0: तो गेहूं भी हो छे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, दादाजी एक बात बताओ, जो आपनो गांव यो भोंवरदो छे, यो कतरो पुरानो गांव छे जी भाई?
0: 8-9 पीढ़ी का लमसम
1: ई गांव ने बसा हो गया। अच्छा एक बात और बताओ मांगता ही, जो यो गांव भोंवरदो छे, इनको जमीन को रकबो कतरो छे जी भाई?
0: मतलब पड़त को रकबो तो ज्यादा छे, बहत को रकबो कम छे यहाँ।
1: ये तो उल्टो रहे थे काम।
0: उल्टो रहे, खाल खोच रहा अधिक था यहाँ।
1: ओदक नीचे जमीन छे यहाँ?
0: ओदक नीचे खाल खोच रहा था, जो अब तो हाँक जो तो साफ कर लिया।
1: अच्छा अच्छा दादाजी, यहाँ जैसे अपनी खेती बाड़ी ने पानी पहुँचा, तो को काई साधन छे जी भाई?
0: मतलब फल फल तो नर छी, सबने बोर लगा लिया।
1: अच्छा।
0: अपना साधन सो पानी पिला रहा छे।
1: तो कतरो ऊंडो पानी छे जी भाई?
0: 200-250 फुट तो मानी लो कम से कम।
1: अच्छा, 250-250 फुट पर है पानी? कैसे खड़े छे
0: यहाँ पानी? बहुत मीठो पानी है। जैसे अपने खाद दिया था, उसे उनको पानी मिलते है जमीन को, फसल को ले पानी।
1: अरे वाह वाह वाह। अच्छा कैसी कैसी फसलां लोचो जी भाई?
0: गरेड़ा 2800 गेहूं, कोई हल्का हल्का सरसों बाधे तो बाधे ना, तो दो फसल का ही निर्भर से यहाँ जाता है।
1: अच्छा
0: अच्छा। अरे उंदाला में शाक सब्जी कर लेते, थोड़ा बहुत चारा कर लेते, चिड़िया उड़िया फूड उड़ जिसो जानवर खा रहा था बड़ी टेम ने।
1: अच्छा, ये गांव में मेला खेड़ा भी लागत है?
0: मेलो लागत है, भादवा की मायसातों को भी लागत है, महा की मायसातों को मेलो लागत है, देव महाराज को।
1: अच्छा,
0: बहुत भारी मेलो लागत है।
1: अच्छा, यानी साल में दो बार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा दादाजी, आपने आकाशवाणी से बात करी, माँ से बात करी, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम।
1: करसान मन भाई, आओ और जो गांव का आगे बढ़िया, तो यहाँ लीमड़ी के नीचे जो छे दो पांच जना बैठे है छे, और यहाँ एक दादाजी भी बैठे है छे, तो आओ यहाँ से भी बातचीत आपने करा चा। राम राम साहब।
2: राम राम साहब।
1: काय नाम छे आपको?
2: राम रतन।
1: अच्छा, कतरी उम्र छे आपकी?
2: उम्र 65 साल।
1: और काय काम धंधो करो छो साहब?
2: बस डंडा ही रहना।
1: अच्छा अच्छा, खेती बाड़ी भी छे अपना?
2: सर खेती बाड़ी
1: है,
2: 15 बीघा जमीन।
1: अच्छा, काय काय करो छो उम्र?
2: गड़ो भी करा था, गांव भी करा था, बरसीन भी करा था।
1: अच्छा अच्छा,
2: हवा छोड भी कर मरी थी। बस यहाँ जाओ 15-20 हो।
1: अरे वाह वाह। तो फिर ये जो दूध हो जी को काय करो जी भाई आप?
2: दूध बूंदी बेचना था।
1: है काय भाव जा रहे जब?
2: एक टाइम को 65 रुपया किलो जा रही।
1: अच्छा अच्छा,
2: एक टाइम को 60 रुपया किलो जा रही। 2000 रुपया, 2500 रुपया
1: एक दिन का जाओ जा। और खर्चो कतरो जाओ जा अपनी भाषा पे?
2: 1000।
1: 1000 को खर्चो जाओ?
2: खड़ कोई 1000
1: है ना,
2: चारों तो घर कोई।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, माने सुनी जग आप भजन वजन भी गाओ छो?
2: गाँव वालों भजन
1: तो फिर माँ कताई भी तो सुनाओ।
2: हाँ,

तेरत कर ले तारे हाट दियार कर ना मन कर जमाराम बीरा काई ले बायो रे मन कर जमाराम जमाराम रे जमाराम बीरा काई ले

विराग काई ले बायो रे मन के जमाराम नन दिया रे बाया दर्शन करल तारे कान दिया रे सुन ज्ञान।

0: वाह साहब सही बात है। देखो सब काम आपन ताई मनक जमारा में करना चाहे है ना, और बढ़िया कर्म करना चाहे। आपने देखो बहुत बढ़िया भजन गायो, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
1: राम राम सर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: करसान बन भाई और जो यहाँ गांव के और अपन भीतर आया तो यहाँ नरी सारी जो है बकरियाँ घर पर बंधी हुई है, हाल चरा रही आया है, तो यहाँ से अपन बातचीत करा। राम राम जी।
3: राम राम जी। राम राम।
2: काय नाम है आपको?
3: लटूर जी।
2: अच्छा लटूर जी, उम्र कितनी है आपनी?
3: उम्र होगी हमारी लगभग 65 साल का।
2: 65 साल के आसपास। अच्छा तो खेती बाड़ी जा अपना?
3: खेती बाड़ी भी
2: कतरी खेती बाड़ी चाहिए भाई?
3: खेती बाड़ी बहुत कम से मांगोड़े तो ज्यादा को ना 5-6 बीघा ठाम से।
2: 5-6 बीघा ठाम से काई काई करो जो मां?
3: वो गेहूं कर लिया, गेड़ू कर लिया, सिर्फ ये के पला दुनी के पला कर ले जा।
2: अच्छा मां देख रहा था के आप बढ़िया यो बना रखे छे छाड़िया के खान, तो कतरी छाड़िया जा अपना?
3: चले जे मां 25 को।
2: तो बकरी पालन करवा सु आपन ताई काई फायदो छे जी भाई?
3: खाद के जोड़ो जाओ छे। वो पारो जाओ शाम वो भी मिल जाओ जे।
2: हाँ।
3: दूध भी मिल जाओ, तीनों चीज मिल रही है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और यूं कह बताओ कि बकरियां दूध तो बहुत उस्ताद रहे?
3: उस्ताद रहे थे। मुंह तो बड़ो भैंसा बंदी थे, भैंसा का दूध की चाय ना पिया, मारन खुआरी का दूध की चाय पिया जा। हाँ कोई भैंसा का दूध की चाय पिया जी कुमार पसंद ना हो शु काम?
2: अच्छा
3: बकरी को दूध ही तो ताकत वहां ये बड़ो मार पाते का तू ये कर बला आ गया।
2: अच्छा
3: मुंह बड़ो तर नाचा रहा प्रोजो कटे कोई कह दी के डैम गोटे दुख से काई दुख से।
2: अरे वाह वाह वाह।
3: हाँ
2: देखो ता तो बिल्कुल बढ़िया जक्का छो है ना, हाल भी ई उम्र में भी बढ़िया, हाथ पांव से बढ़िया मजबूत
3: मजबूत जो काई ये मोटियारे टटट तो काम मु नट यारो है
2: ना। अरे वाह वाह। तने बकरिया का दूध में दम से जी भाई?
3: बकरिया का दूध।
2: अच्छा कह बताओ कि बकरी तो 36
3: रोंगड़ो खाली इन तो छुरो छोड़ियो जे?
2: अच्छा अच्छा
3: और सब न खाओ है?
2: हां
3: देखी को जमानो जरा ना 70,000 को माल तो खा दी लूंगा हम
2: है ना। देखो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया
3: एक फसल को जियो।
2: अच्छा हां तो आपने एक किया भी फसल की नहीं
3: दी भाई? फसल ही
2: है ना, इमे भी आपने ये ना शेयर ना करा तो एक फसल को हासिल की नहीं दजा।
3: खेती की जति योजना में करांगा ना ये तो और ज्यादा फसल देगी
2: है ना। देखो अरे वाह वाह तो बढ़िया तरीका से करा।
3: बढ़िया तरीका से। हां ये वो शेयर वो करबो चाहिए को।
2: अच्छा आपने भाषा भी दो चार तो बढ़िया सड़ी हुई रेवड़ी से कायदे तो फिर अबारों खेत में डालेगा?
3: डाल दी ना आधी तो डाल दी थोड़ी रहती है डालेगा।
2: अच्छा इनको काय फायदा मिला
3: इनको फायदा तो यही फसल अच्छी होगी खाद को जोड़ो।

0: खेत में
1: है ना देखो पूरा पोषक तत्व बढ़िया मिला,
0: बढ़िया मिलेगा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी, कल यही जानवर भी लाओ मिला भाई, आपने कार को जोड़ो भी हो जाओगे और आप लोग भी गुदारो भी जाते रोटी की जमीन में भी काट के जोड़ो जाओ तो फसल तय बैठे थे बड़ों को मार की जमीन पोली पड़ी हुई जगह वहाँ की जमीन में कल्टी ना लागर वहाँ की ट्रैक्टर भी
1: यो आपने देसी काट डाला जी है ना देखो कतरो पर को
0: फर्क पड़े।
1: अच्छा अच्छा
0: दूरा काट को जोड़ा रहे भी कम देनी पड़े थे अंग्रेजी काट
1: हाँ
0: वो कम डालनी पड़े थे।
1: आपने तो देसी से काम चाल
0: देसी से काम चाल थे।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपकी बहुत बढ़िया सोच है जी। आपने मासू बात करी आकाशवाणी से बात करी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम।

0: करसान बन बया आज अपन गांव भवर धाम छा जो यहाँ थोड़ा आगे बढ़िया तो दो तीन लीमड़िया छे और लीमड़िया के बढ़िया निमोड़े आ रही छे और यहाँ एक बढ़िया ठंडाई छाया मजू छे दो चार मोटियार बैठे है छे आओ यहाँ सुबह अपन बातचीत करा। राम राम साहब।
1: राम राम साहब।
0: काय नाम छे आपको?
1: मारो नाम मनोज कुमार मीणा।
0: अच्छा मनोज जी उम्र कतरी छे आपनी?
1: उम्र मारी 30 साल।
0: अच्छा पढ़े लिखे कहाँ थे?
1: पढ़े लिखे 12वीं।
0: तो अबार काई करो जी भाई?
1: अबार तो खेतीबाड़ी करो।
0: खेतीबाड़ी कतरी छे आपना?
1: हां अपने 10-12 बीघा।
0: 10-12 बीघा। ओमा काई काई करो छो?
1: ओमा गल्लो और गेहूं करा था।
0: अच्छा तो अबार गल्डाई तैयारी छे?
1: हां अबार गल्डाई तैयारी छे। 20 बोरो राखे छे खेत तो काई जुताई होगी बढ़िया
0: है।
1: हां गोबर सब डाल दिया हमने।
0: अरे वाह वाह कशो गल्डो लो जो आप किसी किस्म को?
1: 17-18।
0: अच्छा पानी की काई व्यवस्था छे?
1: पानी की मोटर छे बोरिंग छे।
0: अच्छा मनोज जी जैसे अपने गांव में सब्जी बाड़ी ना करे?
1: सब्जी भी करे भिंडी करे थे।
0: हमारे गर्मी की जैसे जाए थी मूंग उड़े थे
1: ना कोई कोई करे थी का दुकान।
0: अच्छा अच्छा मनोज जी एक बात और बताओ आप खेती बाड़ी के अलावा जैसे अपने गांव में कई कई सुविधा छे जी भाई? यहाँ पर
1: अपने यहाँ सारी सुविधा है। अपने पंचायत समिति सामुदायिक भवन भी छे।
0: अच्छा
1: और ये शादी ब्याह हो जाओ वहाँ का गार्डन भी बन रहे थे।
0: स्कूल?
1: स्कूल भी छे।
0: कहता है
1: 8वीं तक।
0: अच्छा आंगनबाड़ी भी?
1: आंगनबाड़ी सब से।
0: अच्छा आपने माँ से बात करी आकाशवाणी से बात करी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
1: राम राम साहब।
0: करसान बन भाया हो आज अपन गांव भंवरदा मचा और जो यहाँ थोड़ा आगे बढ़िया तो अब देखो गर्मी का दंच है तो यहाँ सब आपने जो छे माई बहने सारी एकटी और छाया में बैठी हुई है दफेरी में बात कर रही है तो आओ यहाँ से बातचीत करा चा। राम राम साहब।
2: राम राम।
0: का नाम होता को?
2: दापू।
0: और ताऊ को नाम का है जे?
3: मोतिया भाई।
0: और ताऊ को नाम?
3: रानी भाई।
0: ताऊ को का है जे?
3: बड़दी भाई।
0: अच्छा ता यहाँ आपस में बढ़िया देखो कतरा प्यार से बैठे हुए जो तो ताकि तो अतरी उम्र होगी फिर भी ता देखो कतरी यूं बैठी जे आजकल की जो बुआ आओ जो वहां कहता है काई शिक्षा देवो चाहोगा
3: भाई बढ़िया रिजो बनाओ मां कि ना रिजो था भी मां तो बढ़िया रहा था बुड्ढा हो गए जे बढ़िया ठीक रहा था अच्छा मतलब जो सेवा कर जो बढ़िया रोटी दीजो बढ़िया
0: सही बात है
3: भाई बेटे आई तो सलाह देवो चाहिए जे मैं संग ले भाई बेटे गेले गेले जाजो गेले गेले आजो
0: सही बात
3: सही गेला पाजो और बड़ा सु बड़ो और छोटा छोटो बाई सुबाई बाण सुबाण
0: बहुत बढ़िया
3: अच्छी इज्जत सूरी जी बेटा।
0: हाँ हाँ हाँ अरे वाह देखो बहुत बढ़िया संस्कार की आपने बात करी जे पूरा घर न देखो एर नहीं पड़ा जे नेर चार नहीं
3: पड़ा जे जार घर बार रह जे जार सक्षे तो होजा अपना साजी तो होजा अच्छा रहा जे दापन तो बेटी तो यही सलाह दे बुचाई जे माई बाप बोला भाई बुझाए अपनी यह सलाह दे बुचाई जी बेटी का
0: सही बात है बुआ भी हाल करता सासुआ बनेगी
3: ये आंगने तो बुफर चली आंगने सासू पर है
0: ना देख
3: सासू भी आंगने पर है बुबी आंगने पर है
0: सही बात है तो दोनों ने आपस में एक दूसरा की कदर करनी चाहिए।
3: हाँ तो हमारी कदर करेगी बेटिया वो बुआ वो तो ताकि भी ताकि बुआ कदर करेगी
0: सही बात है एक दूसरा सुन सीखे
3: हाँ दूसरा सीखे।
0: अच्छा अच्छा करसान बन भाई जो यहाँ पर माता बहने बैठी हुई है ये अपने एक लोक गीत सुना बुचारी से तो आओ सुना चाह यहाँ की आवाज में यू लोकगीत।

0: वाह जी वाह, बहुत बढ़िया लोक गीत ताने गाए जी के लेके बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा,
1: राम राम सा, राम राम सा।
0: करसान बन भयाओ आज अपने गांव भंवरदा मचा और थोड़ा आगे बढ़िया तो यहाँ जो छे एक घर के सामने दो चार युवा साथी बैठे हुए थे, आओ यहाँ से बातचीत करा था। राम राम साहब।
2: राम राम साहब, राम राम।
0: काय नाम छो आपको?
2: महावीर मीणा जी साहब नाम।
0: अच्छा महावीर जी, अबारू काय करो छो आप?
2: मुँह राजकीय सेवा में कर्मचारी छू साहब।
0: अच्छा।
2: और वरिष्ठ अध्यापक का पद ने सुशोभित कर रही वर्तमान समय में।
0: अच्छा बहुत बढ़िया।
2: और काफी 5-6 साल से राजकीय सेवा में कार्यरत छू।
0: अच्छा तो आपको मनपसंद विषय काय छे जी भाई?
2: मारो मनपसंद विषय तो श्याम देखे जाओ तो मु सामाजिक विज्ञान सु छू, तो मैं लगभग समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल और समाजशास्त्र, नैतिक शिक्षा और एक साथ साथ आपने तर्क वितर्क का कुछ विषय भी छे।
0: अच्छा अच्छा।
2: तो ये मारा पसंदीदा विषय रहा है हमेशा ही। और यहाँ का जो कुछ बिंदु छो आज भी मतलब मन काफी प्रेरित करे थे, बच्चाएं भी सुनाऊ क्लास में।
0: बहुत बढ़िया। अच्छा महावीर जी एक बात बताओ मांगता है, जैसे आप राजकीय सेवा में छो और कतरा अपना यहाँ गांव से लोग जो छे राजकीय सेवा?
2: हमारा गांव से लगभग 25-30 के बीच में राजकीय सेवा में छे, कुछ शिक्षा विभाग में छे, कुछ कृषि विभाग में छे, कुछ चिकित्सा विभाग में छे।
0: अच्छा अच्छा। यहाँ अपना गांव की अगर शिक्षा की बात करा तो शिक्षा की कई स्थिति चीज भाई?
2: बिल्कुल, यहाँ पर देखे जाओ तो जो बालिका और बालक शिक्षा छे तो यो गांव काफी अग्रणी है प्रेजेंट टाइम पे। और यहाँ पर आपने लगभग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और राजकीय सेवा में बालिकाएं कार्यरत मिल जाओगी आज का टाइम पे
0: जी।
2: काफी आज लगभग यो परिवर्तन लगभग यू मानो आप यो पिछला 5-7 साल के बीच में ज्यादा आयो जी। यहाँ जब सु मानसिकता बदली जी गाँव का लोगों की, बेटे भी बेटा कम कौन है। और जब बूंदी निकटतम जब मुख्यालय सुमा पास में छा तो इतना कटिया हुआ था पहली शिक्षा के लगभग पास करता है बच्चा जब 6th क्लास में जाओ जी तो की पढ़ाई छूट जाओ जी, क्योंकि पहले इतना आवागमन का साधन कौन है। लोगों ने भी सोची कि जब रिश्ता आवा लग गया तो लोग शिक्षित बेटे ढूंढवा लग गया तो गांव वाला समस्या भी आवा लगी थी। तो इन्हें लेर गांव वाला काफी आगाया कि आपने सी करा बच्चे भी पढ़ाओ।
0: अच्छा।
2: जब दूसरे की बच्चे यहाँ पढ़ावा आवा लगी तो आपने बच्चे क्यों ना जा सके पढ़ावा, क्यों ना जा सके राजकीय सेवा में, ये सब चीजा जी।
0: अरे वाह, तो मतलब शिक्षा से बहुत बदलाव आयो जी यहाँ की सोच में?
2: बिल्कुल,
0: शिक्षा के प्रति पढ़ावा के
2: बिल्कुल। यहाँ पर देखे जाओ तो शिक्षा ही ये गाँव को मतलब मानो कि एक जो को परिदृश्य बदलो, चाहे वो सामाजिक परिदृश्य हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो।
0: अच्छा।
2: शिक्षा ने बदलो चे यहाँ को, बारा गाँव को।
0: अरे वाह मार साहब, बिल्कुल बहुत आपने बहुत अच्छी बात बताई जे। अच्छा मार साहब, अब मैंने एक बात आप यह बताओ कि आपका गांव की कोई और विशेष कोई बात ऐसी जो आप बताबो चाहो?
2: बिल्कुल, यहाँ पर जो मैंने मारा बचपन सुलेर अब तक जो सबसे बड़ी शुद्ध परंपरा देखी वह यह चेक, यहाँ का लोग एक तो नदी में मत्स्य आखेट करता न मिलगा आपने।
0: अच्छा।
2: और जंगली जीवों को भी आखेट करता हुआ न मिलगा आपने।
0: अरे
2: यह शुद्ध परंपरा मैंने आज से नहीं, मारा बचपन से देख रही, मारा पुरखा से देख रही, यह काफी शुद्ध परंपरा है हमारा गाँव की आज तक को रिकॉर्ड जी हो,
0: है ना। अच्छा मार साहब एक बात मैं देख रहा था, देखो हर घर का लीमड़ी को पेड़ छे और पेड़ भी यहाँ खूब नजर आ रहे थे गांव में।
2: तो नीम तो माँ का कहे छे कि वरदान भी मानो और एक माँ के लिए यू मानो कि माँ देवनारायण ने आरा दे।

0: ये गांव का ग्राम देवता माना था, तो वहाँ को आशीर्वाद चाहिए निम्न में न तो चूल्हा में जलावा,
1: अच्छा,
0: और निम्न में कोई राज ये जो सामाजिक कार्यक्रम थे हम काम भी न लिया, निम्न में पवित्र माना था। अच्छा। तो ये वजह से आपने नीम का पेड़ ही गाँव ज्यादा में लगा, क्योंकि देखो नीम को एक तो आयुर्वेदिक महत्व भी है और इको ये मानो की एक परम्परागत महत्व भी छमा के लिए।
1: बिल्कुल, और आप तो मार साहब जो देखो पढ़ाओ जो शिक्षा दो तो आपका जो गाँव का है वहाँ भी मोटिवेट करता होगा।
0: बिल्कुल साहब, जो भी मतलब जो बच्चा मान लो मानो तैयारी कर रहा है लाइब्रेरी जाओ तो उन्होंने गाइडेंस करना था कहीं पढ़नी चाहिए कहीं ना पढ़नी चाहिए और कशा खुद ने आत्मनियंत्रित रखनी चाहिए और कशा आत्म प्रेरित और आत्मनियंत्रित और त्यागी भावना अगर आपके अंदर हो जाओगे बच्चा ने यही कहा जाए अगर आपके अंदर छे तो आप कशो भी मुकाम पा जाओगा।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया मार साहब, आपका बहुत बढ़िया विचार छे, बहुत अच्छो आप काम कर रहे जो आपने माँ से बात करी आकाशवाणी से बात करी के लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम साहब।
2: कड़साण बन भया वो गाँव भवरधामा छा अपन और यहाँ जो गाँव का आगे बढ़िया ई गाँव में लीमड़े नरीज है और छाया के नीचे नरासरा छुआजुरी खेल रहे भी अपन बातचीत करा चा। हाँ जी, राम राम।
3: राम राम।
2: काय नाम चु भाया तारो?
3: कार्तिक।
2: अच्छा, कार्तिक उम्र कतरी थी तारी?
3: 17 साल।
2: अच्छा, कसी में पढ़े जर भाई?
3: 11वीं में।
2: है पढ़ लिख कर काय बनबा को सपनो छे?
3: अबार तो मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट लियो छे और सपना तो ये भाई आयुर्वेदिक डॉक्टर बनू।
2: अरे वाह वाह वाह, जैसे बार गर्मी की छुट्टियां लाग रही तो बार काई करे सर भाई?
3: सुबह के टाइम तो कोचिंग हो जाऊ जा और दिन में धूप की वजह से फिर घर पे आराम करा जा। अच्छा। शाम के टाइम मिल जाऊ थोड़ा बहुत खेल कूद कर ला जा और फिर वही सेल्फ स्टडी मतलब घर पर पढ़ाई।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, और काई काई करे सर भाई?
3: और एक अलावा घर को छोटो मोटो काम कर ला जा।
2: अच्छा, बढ़िया भाई, ताना मासु बात करी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
3: राम राम।
2: अच्छा भाई, यही यहाँ के गोडे एक बच्ची भी बैठी हुई यहाँ से बातचीत करा था। काय नाम थे तारो?
4: लक्षिता।
2: अच्छा लक्षिता, कसी में पढ़े चीरी भाई तू?
4: 5th में।
2: अबार तो छुट्टिया लागी होगी तारी?
4: हाँ।
2: तो अबार काय काय करे थे छुट्टिया में तू?
4: घर पर स्कूल को काम करू छू, ड्रॉइंग करू छू, मेहंदी बांधू छू।
2: और खेला कूदो कोई ना?
4: खेलू छू
2: भाई। लहंग लारा खेलती होगी ना?
4: हाँ।
2: अच्छा, फिर नानी के नहीं यार?
4: जाऊंगा।
2: अब जाओगी? चल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कड़साण बन भाई, आज आपने गांव भोवरदा का लोग बागा से बातचीत करी, किसान भाइयों से बात करी, यहाँ की माता बहनिया से आपने बात करी और ये गांव का आपने हाल चाल जाने। कड़साण बन भाई, देखो 2026-27 का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने जारी कर दिया और उनके अनुसार ही जो छे अब आपन ताई फसला करनी चाहिए ताकि आपन ताई बढ़िया बाजार भाव मिले, बढ़िया अपनी आमदनी हुआ। तो जिसे की बात करा आपन धान जो सामान्य छे उमा 72 रुपए की बढ़ोतरी हुई छे और इक जो समर्थन मूल्य सरकार ने रखे चा बरक 2441 रुपया और धान ग्रेड ए इमा भी 72 रुपए की बढ़ोतरी हुई छे 2461 रुपया इको मूल्य रखे छे। और ज्वार की बात करा अपन तो ज्वार हाईब्रिड इमा 324 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से बढ़ोतरी हुई छे। ज्वार मालदंडी इमा भी 324 रुपया प्रति क्विंटल पर बढ़ोतरी हुई छे। मक्का में 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई छे 2410 रुपया अब रकी का समर्थन मूल्य रखा छे। और तुअर की बात करा तो 450 रुपया की बढ़ोतरी हुई छे और 8450 रुपए का समर्थन मूल्य रखो छे। और मूंग में भी 12 रुपए की बढ़ोतरी हुई छे 8780 रुपया की जो छे समर्थन मूल्य रखे छे सरकार ने। और उड़द की बात करा तो इनमें 400 रुपया को जो छे बढ़ोतरी हुई छे और 8200 रुपया इको समर्थन मूल्य रखे छे। और मूंगफली की बात करा किसान मन में आयो तो 254 रुपया की इनमें बढ़ोतरी हुई छे और 7517 रुपया इको समर्थन मूल्य रखे छे। तो किसान मन भाई, ये तो छा न्यूनतम समर्थन मूल्य। कड़साण बन भाई, आज चौपाल को भगत हो रही छो पूरो। यही कार्यक्रम की प्रस्तुति श्री तेजराम मीणा और प्रस्तुति सहयोग राम बरोस को। फिर मिलूंगा नया गांव के साथ, नया लोगों के साथ, नया नया लोक गीता के साथ। तो आज तो आपका साथी राम भाई दो आ गया। चला जा, राम राम।

चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान दिनांक 25 मई 2026 से 5 जून 2026 के समापन समारोह की रेडियो रिपोर्ट।

0: वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान दिनांक 25 मई 2026 से 5 जून 2026 तक चलाया गया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य रहा पानी रो मान राखो जीवन रो ध्यान राखो। इस कार्यक्रम के तहत वर्षा जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं तालाब बावड़ी पुनः उद्धार पर जोर दिया गया। भावी पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए जल संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण हरियाणा राजस्थान स्वच्छता एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने की अपील की गई। इस कार्यक्रम का जिला स्तरीय समापन समारोह दिनांक 5 जून 2026 को साये 7 बजे सेवन वंडर पार्क कोटा में जिला प्रशासन एवं नगर निगम कोटा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार हीरालाल जी नागर, नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश जी मेहरा, राम गोपाल जी बेरवा, संभागीय आयुक्त माननीय अनिल जी अग्रवाल, जयवीर सिंह जी प्रधान पंचायत समिति, कमिश्नर जिला परिषद नंद किशोर जी मीणा और कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के लोक नृत्य कलाकारों की प्रस्तुति द्वारा की गई।
1: राजस्थान के किसान के बैलगाड़ी का पहिया है, ऊपर से इतना नाजुक कांच में ये तीन रंग जो पूरे भारत को अपने साथ जोड़ते हैं राजस्थान की धरती पे, और ये तलवारों पे शमशीरों पे इतनी अच्छी कलाकारी हम एक बार जोरदार तालियां हम सभी बजाएं।

0: आप हैं माननीय कमल कुमार मीणा, सीओ जिला परिषद कोटा।
1: वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो कि गंगा दशमी के शुभ अवसर पर 25 मई 2026 को प्रारंभ होकर आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून तक संचालित हुआ। आज इस समापन समारोह में जिला प्रशासन की ओर से स्वागत करता हूँ।

0: जैसा कि आप सभी को विदित है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो गंगा दशमी के शुभ अवसर पर शुरू हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण एवं संग्रहण के प्रति लोगों में जन जागृति लाकर इसे एक जन आंदोलन का रूप प्रदान करना था। इसी क्रम में पिछले 10 दिनों में जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के समन्वय से जिले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसे संक्षिप्त में मैं एक बार, जैसे पारंपरिक जो भी जल स्रोत है उनके सफाई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, विभिन्न श्रमदान के माध्यम से स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम किए गए, एक पेड़ माँ के नाम के माध्यम से हरियाणा और राजस्थान के कार्यक्रम का इस अभियान के दौरान तैयारियां की गई, पीजीडी द्वारा इस अभियान के दिवस में शहर के विभिन्न, चाहे बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जल सेवा एवं विभिन्न विभागों के द्वारा पिछले 10 दिवस में जिले में लगभग 14,500 इवेंट्स आयोजित किए गए हैं। मैं इस अभियान के दौरान जिले में देखें तो जनता के साथ साथ जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी व्यापक भागीदारी देखने को मिली। माननीय मंत्री महोदय ने लगभग इस अभियान के दौरान प्रतिदिन विभिन्न ग्रामों में जाकर, सांगोद विधानसभा के विभिन्न ग्रामों में जाकर स्वच्छता संबंधी एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण के प्रति लोगों को जागरूक किया। वहीं रामगंज मंडी क्षेत्र में माननीय मंत्री महोदय दिलावर जी के द्वारा भी अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जल संरक्षण एवं संग्रहण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। शहर क्षेत्र में भी विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जल संरक्षण एवं संग्रहण के कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो जिले में हम देख सकते हैं कि पिछले दिनों में व्यापक रूप से कार्यक्रम हुए, वहीं जनप्रतिनिधियों ने एवं जनता ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। संक्षिप्त में मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो जल संरक्षण या वंदे गंगा है, इस अभियान को हम एक अभियान नहीं समझकर अपनी जीवन शैली में शामिल करें, ताकि बारिश की प्रत्येक बूंद को बचाया जा सके और घर में जो नल है उसके बहने वाली प्रत्येक बूंद को हम बचा सके। इसी संकल्प के साथ हमने इस अभियान को, हम अभियान के बाद भी आगे पूरे वर्ष आगे बढ़ाएंगे।
1: आप हैं संभागीय आयुक्त माननीय अनिल कुमार अग्रवाल।
2: वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के जिला स्तरीय समापन समारोह के अवसर पर, यह एक जिला स्तरीय अभियान का केवल समापन समारोह है, ये अभियान एक केवल जीवंत करने के लिए आपको चलाया जाता है बीच में 10 दिन के लिए। इसका ये अर्थ नहीं है कि आज इसकी गतिविधियां समाप्त हुई, ये एक तरह से आपका एक्टिवेशन है। इसको हमने एक्टिव किया, सब लोगों को जोड़ा है, इसको जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया है कि झालावाड़ जिले का प्रभारी सचिव होने के नाते झालावाड़ जिले से सर हमने चालू किया। उसमें मैं वहाँ जो घाटरवाड़ा नूरजी पंचायत के सिलीगढ़ महादेव जी मंदिर सिलीगढ़, उससे हमने इसमें दीपदान, तुलसी का पौधा, तुलसी पूजन, पीपल पूजन, सरोवर सफाई, श्रमदान से चालू करके फिर हम शाम को इसी किशोर सवर, माननीय मंत्री दिलावर जी यहाँ पधारे थे, दीपदान वगैरह किया हमने। उसके बाद फिर डूंगरजा पंचायत में वहाँ कमल सरोवर, उसके आसपास जल स्वावलंबन, जल संरक्षण विभाग के कार्यों का अवलोकन करके, वहाँ मनरेगा में विकसित इन तमाम चीजों का हमने अवलोकन किया। डायरेक्टर वाटरशेड भी पधारे थे, उनके साथ हमने इसको कार्यक्रम को देखा। इसके बीच में दिगोद पंचायत की, जैसे मैंने बात करी, डूंगरजा में किया। इसके पश्चात हम कल झालरी पंचायत में कनवास के पास, जो उधर सावन बाधो की तरफ, उधर से हमने कार्यक्रम आयोजन किए। और फिर झालावाड़ में पुनः माननीय प्रभारी मंत्री जी ओटेराम देवासी जी के साथ वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर चंद्रभागा नदी के तट पर ये कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें देखा व्यापक जनभागीदारी, एक जन आंदोलन का रूप ये कार्यक्रम लिया जा चुका है संभाग की बात करें तो। और जिलों में सर इतना जबरदस्त कंपटीशन हुआ है, कल झालावाड़ सेकंड पोजीशन पे चल रहा था और बारा भी आज ये क्लेम कर रहा है कि तीसरे पे हैं। और कोटा की सारी सेंक्शंस कमल जी के प्रयास से और वाटरशेड डिपार्टमेंट के प्रयास से आज हमने 392 हमने जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, बट इनकी रिक्वेस्ट थी सर, बोला हमारा जिला कहीं रैंकिंग में पिछड़ नहीं जाए, तो हमने 392 सेंक्शंस कल और आज में जारी कर दी राज्य सरकार की भावना अनुसार, उनके आदेश अनुसार, जिससे कि जो भी ये वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चल रहा है, इसमें जो जितने ज़्यादा जिले सेंक्शन जारी करेगा रैंकिंग के पैरामीटर्स में, उसको भी देखा जाएगा। तो उसके

0: भावना का हमने पूरा सम्मान करते हुए सारी सैंक्शन जारी कर दी और आने वाले टाइम में ये जो जल संरक्षण जल संग्रह के क्षेत्र में इस पूरे संभाग में बड़े अच्छे काम होंगे। माननीय मंत्री जी को और तमाम जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पूरी जिला प्रशासन समन्वित रूप से, भले ही वो डिपार्टमेंट हमारा ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, कृषि विभाग ने ड्रिप सिंचाई परियोजना का पूरा अवेयरनेस का प्रोग्राम इसमें आयोजित किया। जल संरक्षण से खुद डायरेक्टर साहब कल्पना जी अग्रवाल IAS आए थे, उन्होंने बूंदी कोटा और वहाँ तक पूरा कार्यक्रम का अवलोकन किया, आयोजन किया, मेरे को भी बुलाया उस कार्यक्रम में, तो पूरा माहौल यहाँ बन चुका है। मैं आम नागरिक तमाम जनता से अनुरोध करूँगा कि हमारी दैनिक गतिविधियों में भले पानी पीने और पिलाने से लेकर हम कैसे पानी की बचत कर सकें, गंदगी हम बिल्कुल नहीं करें। जैसा मंत्री महोदय ने भी खुद ने कहा, हम दीपों को तट पे रख दें, अंदर ना बहाएं ताकि वहाँ गंदगी ना हो, तो ऐसी भावना से यदि हम लोग हमारे दैनिक गतिविधियों को जोड़ें ताकि न गंदगी नहीं करना भी एक तरह से सफाई में आपका अंशदान है, कंट्रीब्यूशन है, और श्रमदान करते हुए हम हमारी पीढ़ी के लिए आने वाले टाइम में यही चीज़ें छोड़ के जाएंगे। अच्छा वृक्ष उनको मिलेंगे, प्रकृति में संतुलन बना रहेगा, ये सारे नदी बावड़ियाँ तालाब नहरें सफाई हो तो एक अच्छी विरासत के रूप में उस पीढ़ी को मिलेगी। प्रकृति का संतुलन सब आप लोगों के हाथ में व्यवस्थित ढंग से चलेगा तो ही ये प्रकृति सर्वाइव करेगी। जल तो कल है, जल तो जीवन है। इस संकल्प के साथ हम सब लोग आगे आकर इस महाअभियान की जो शुरुआत हो चुकी है, केवल कार्यक्रम का समापन हुआ है, कार्यक्रम वर्ष पर्यंत जीवन पर्यंत चलना चाहिए, हमारे जहन में रहना चाहिए, और अच्छे कार्यक्रम के लिए जो आयोजन के पर्यटन विभाग और ये सारे हमारे जो कलाकार हैं, भवाई नृत्य मैंने देख रहा था बिल्कुल भावुक होने वाला, जिस तन्मयता से जिस एकाग्रता से कलाकार कुणाल ने यहाँ प्रस्तुति दी, उस एकाग्र चित्त का 10% भी हम इनके प्रति रख लें, हमारे जो प्राकृतिक स्रोत है, तो इन सब का उद्धार हो जाएगा, सारी पुनरुद्धार हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।
1: आप हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार हीरा लाल जी नागर।
2: वंदे गंगा जल अभियान का जो ये 10 दिन का कार्यक्रम है और इसके माध्यम से जो हमारा कार्यक्रम 25 तारीख से शुरू हुआ और उस दिन गंगा दशमी थी और आज विश्व पर्यावरण दिवस है, एक विशेष दिन है, दोनों दिन इसके शुभारंभ का भी और समापन का भी। इस कार्यक्रम की जो मुख्य थीम भी थी, हम इस गंगा दशमी से शुरू किया गया और पर्यावरण दिवस को समापन हुआ है, तो इसी तरह के कार्यक्रम इसमें आयोजित हुए हैं। हम जल से संबंधित अपनी जितनी भी संरचनाएं हैं उनके प्रति हमारे मन में एक अवेयरनेस आए, जागृति आए कि हम हमारे जल स्रोतों को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, कैसे उनको साफ सुथरा रखें और उनकी साफ सफाई करें, उनमें वहाँ गंदगी ना फैलाएं, उनके प्रति जागरूकता पैदा हो। और इसके साथ साथ जो विश्व पर्यावरण दिवस का भी एक थीम है कि एक पेड़ माँ के नाम, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो हमें नारा दिया है, और उसकी तैयारी के लिए इस कार्यक्रम के दौरान भी कहीं वहाँ वृक्षारोपण की तैयारी की गई है, कहीं पर वहाँ पर खड्डे खोदने से लेकर के स्थान चिन्हित से लेकर के, क्योंकि आने वाले इस वर्षा ऋतु में राजस्थान सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि लगभग 10 करोड़ पौधे हमें लगाना है, तो ये एक बड़ा अभियान है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आज ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है तो इतने पौधों की तैयारी हमारी राजस्थान सरकार निरंतर कर रही है। पिछली बार 12 करोड़ पौधे लगाए थे और इस वंदे गंगा जल अभियान में जिस तरह से सारे कार्यक्रम इससे जुड़े हुए आयोजित हुए और इसमें मैं भी लगातार अपनी विधानसभा क्षेत्र में भी गया हूँ और वहाँ हमने चाहे कुआ बावड़ी की सफाई से लेकर के और मेरी विधानसभा में जिस तरह से मैं ये अभियान से पहले ही लगभग इन 2.5 सालों में मैंने मेरी विधानसभा में ऐसे 50-60 तालाब जिसमें से 1 करोड़ रुपए से लेकर के 2.5 और 3 करोड़ लगाए होंगे, उन तालाबों का संरक्षण किया है, उनको बेहतर कराया है और उनमें कैसे पानी की शुद्धता बनी रहे उसकी एक पूरी संरचना को ठीक करके पानी की आवक को बढ़ाने से लेकर के और उसकी स्वच्छता बरकरार रहे, उसका प्रोटेक्शन हो जाए, उसकी वाल ठीक हो जाए, ऊपर भी सुंदरता बनी रहे ताकि लोग आए तो वहाँ पर एक घूमने का ट्रैक भी बने, वहाँ बैठने की एक ऐसी कुर्सियां लगे जिससे हमारे सुबह शाम पर वर्षारोपण करके और वहाँ लोग बैठे रहे और तालाब के सुंदर पानी को निहारे। ऐसे 50-60 जगह पे इन संरचनाओं का जो विकास किया है इन 2 सालों में और वो कई अच्छा बड़ा काम है जो शायद मेरे ख्याल से कभी राजस्थान में इतने तालाब किसी विधानसभा में संरक्षित नहीं होंगे जितना सांगोद विधानसभा।

0: प्रभावित हुआ है। आज मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने इन अभियान के माध्यम से मैं मेरी लगभग अधिकतर पंचायतों में गया हूं और वहां हर जगह काम के लिए लोगों को जागृत भी किया है और मैं देख रहा हूं कि पिछले 3-4 दिन में उस जागृति का असर रहा है कि गांव के सामाजिक कार्यकर्ता वहां काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो स्वयं इस सफाई अभियान में चल गए क्योंकि मैंने संदेश दिया था कि गांव में हम सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करें तो कई वीडियो आ रहे हैं जहां देख रहा हूं कि वो स्वयं नालियां साफ कर रहे हैं गंदगी को हटा रहे हैं जागृति आई है और हमें भी इसके प्रति जागृत होना चाहिए कि हम प्लास्टिक का उपयोग ना करें। प्लास्टिक की जो थैलियां हैं उसी से नालियां रुकती है उसी से अधिकतर गंदगी होती है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जिस तरह से कहा है कि हम इस खेती को जो आज हमारे केमिकल का उपयोग करते हैं चाहे वो यूरिया हो डीएपी हो पोटास हो बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं तो उसको कम करें और गो आधारित खेती करें। मैं देखता हूं गांव में जाता हूं तो देखता हूं कि गोबर का कोई वहां उपयोग नहीं है उसको बेकदरी से फेंक देते हैं हमारी एग्रीकल्चर वेस्ट है उसका उपयोग नहीं है और इन सबका उपयोग कैसे हो इसका मैं कई कई ऐसी संरचनाएं बनाए जहां हम वहां अनुपयोगी गोबर को डालें चाहे उसकी गैस बन जाए और उसके माध्यम से उससे खाद भी बन जाए जो एग्रीकल्चर वेस्ट हो वो भी उसमें प्रयोग हो जाए। इस तरह के कई काम गांव में हम कर सकते हैं जिसके लिए हमें करने की आवश्यकता है ताकि गांव स्वच्छ रहे साफ सुथरा रहे और मैंने इसी अभियान के दौरान अपनी विधानसभा में ये तय किया है कि लगभग 50,000 डस्टबिन जो एक सूखा कचरा रखे एक गीला कचरा रखे ऐसे 50,000 परिवारों को 1,00,000 डस्टबिन देंगे जो घर घर वो कचरा संग्रहण में उनको उपयोगी होगा और कचरे वाली जो गाड़ी आती है अपने घर में वो कचरा सूखा अलग रखे प्लास्टिक और किसी का हार्ड कचरा है वो अलग रखे और उसका वो आने वाली गाड़ी को अलग अलग देंगे तो सूखा कचरा अलग जाएगा ताकि उसको बेचा जा सके और उसका पंचायत में इनकम हो जाए। गीला कचरा अलग जाए जो उसका उपयोग हम कहीं गैस बनाने में एक खाद बनाने में उपयोग कर सके। इस तरह की विधि अपना करके हम चाहते हैं कि गांव हमारे स्वच्छ और सुंदर दिखे और साफ सुथरे रहे और गांव में एक जागृति पैदा हो। इस अभियान की ये मुख्य विशेषता रही है कि इस तरह के कार्यक्रम अपना करके और गांव को बेहतर बना सकते हैं और इस देश को पर्यावरण से के लिए अगर बेहतर करना है तो ये सब चीजें हमें अपनानी पड़ेगी पेड़ लगाने पड़ेंगे और पेड़ों से ही जल है तो जीवन है ये हमारे यहाँ कहा गया है। अगर पेड़ है तभी हमारा जीवन है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमने कोरोना में किस तरह से स्थिति को देखा है तो इस तरह से इन सब चीजों पर हम चलते हुए इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें कि हम स्वच्छ रखेंगे प्लास्टिक का उपयोग ना करेंगे हम पानी की शुद्धता को बरकरार रखेंगे पानी में गंदी जो मल मूत्र छोड़ देते हैं गाँव में मैंने देखा है तो वो भी एक बहुत बड़ा एक समस्या है कि गाँव के तालाब उससे तालाब तलाई वो सड़ जाते हैं गंदगी पैदा हो जाती है तो उसके प्रति जागृति पैदा करेंगे और इस कार्यक्रम की सफलता इसी में है कि हम इसको अपने जीवन में उतारें और उस पर चलने का प्रयास करें।
1: कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार हीरा लाल जी नागर द्वारा जल संरक्षण जन अभियान की शपथ देते हुए
2: एक साथ खड़े होकर अपना सीधा हाथ सभी लोग अपने अपने स्थान पर आगे कर लें ताकि हम सब शपथ ले सकें।
0: मैं संकल्प लेता हूं कि जल का संरक्षण करूंगा दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगा और अपव्यय नहीं करूंगा अपने परिवार समाज और कार्यक्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाऊंगा वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण को प्रोत्साहित करूंगा पारंपरिक जल स्रोत कुएं बावड़ी तालाब आदि के संरक्षण और पुनर्जीवन में सहयोग करूंगा भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जल एवं पर्यावरण संरक्षण हरियाली राजस्थान स्वच्छता एवं प्लास्टिक
3: स्वच्छता एवं प्लास्टिक
0: मुक्त अभियान को सफल बनाने में योगदान दूंगा।

0: योगदान दूंगा।
1: जल जंगल,
0: जल जंगल,
1: जन एक प्राकृतिक,
0: जन एक प्राकृतिक
1: बंधन एवं वंदे गंगा,
0: वंदे गंगा,
1: जल संरक्षण,
0: जल संरक्षण,
1: जल अभियान में,
0: जल अभियान में
1: अपने कर्तव्यों का,
0: अपने कर्तव्यों का
1: सत्यनिष्ठा से,
0: सत्यनिष्ठा से
1: पालन करूंगा,
0: पालन करूंगा।
1: जल है तो कल है,
0: जल है तो कल है,
1: यही मेरा संकल्प है,
0: यही मेरा संकल्प है।
2: राजस्थान के कई कलाकारों द्वारा अपनी अपनी प्रस्तुतियां देते हुए

0: अभी आप सुन रहे थे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान दिनांक 25 मई 2026 से 5 जून 2026 के समापन समारोह की रेडियो रिपोर्ट।
1: गले में सरस्वती माँ का वरदान कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है ना।
2: घोर भये पन घट पे मोहे

0: बन झट पे।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है और श्रोताओं, आपने ट्यून किया है FM 102.3.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम में पहला नगमा पेश है कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में दाग द फायर फिल्म से, गीत के बोल समीर के और धुन बनाई राजेश रोशन ने।

दामिनी फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक के सुरों में ये गीत आपने सुना। गीत के बोल लिखे समीर ने और धुन बनाई नदीम श्रवण ने। लीजिए अगला गाना, पेश है टर फिल्म से।

डर फिल्म का ये खूबसूरत गाना आपने सुना उदित नारायण लता मंगेशकर की आवाजों में, गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत शिव हरी का।

के सुरों में संगीत जतिन ललित का और गीत रचना आनंद बख्शी की। लीजिए अब पेश है ये खूबसूरत गाना। कुमार सानू और पी सुनंदा की आवाजों में संग्राम फिल्म से सुनिए ये गाना।

समीर का लिखा नदीम श्रवण के संगीत से सजा कुमार सानू और सुनंदा की आवाज में ये गीत आपने सुना संग्राम फिल्म का। लीजिए अब सुनवाते हैं आपको बाजीगर फिल्म से रानी मलिक का लिखा और अनु मलिक की धुन में ये गाना कुमार सानू और सोनाली की आवाजों में।

0: दिल है तुम्हारा फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति और शान की आवाज़ों में ये गाना आपने सुना, गीत के बोल समीर के और धुन नदीम श्रवण की।
1: गले में सरस्वती माँ का वरदान कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है ना।

0: बनघट पे।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: श्रोता, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल और कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। लीजिए, अब सुनवाते हैं आपको संघर्ष फिल्म से सोनू निगम की आवाज में ये गाना। गीत के बोल लिखे समीर ने और धुन बनाई जतिन ललित ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का अगला अंक।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास

0: प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी अलोंग एंड यूनिकली ओपन बॉर्डर।
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लैवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लैवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लैवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लैवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लैवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुख में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था।

0: है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर

0: रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपुटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। KL राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल।
2: गले में सरस्वती माँ का वरदान कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है ना।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो आकाशवाणी प्रोग्राम की ये धुन हुई पूरी, लेकिन प्रोग्राम होता है शुरू। तो राजेश महावर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता है। प्रोग्राम में गानों का मौसम शुरू करते हैं और वो भी आप सभी की पसंद पर। और जब हमने आपका फोन रिसीव किया तो फिर आपने बताना शुरू किया अपने मन के, अपने शहर के हाल और पसंद के गीतों का सिलसिला शुरू होता है पहले फोन कॉल के साथ। नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार। नमस्कार,
1: उदयलाल टेलर बोल रहा हूँ, उदयपुर राजस्थान से।
0: उदयलाल जी, बहुत सारा स्वागत करते हैं आपका। पिछली बार आपसे बात हुई थी हमारी।
1: जी,
0: है ना,
1: हुई थी।
0: हाँ, और
1: उसके बाद सर कॉल लगा ही नहीं। रेगुलर कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोटा का फोन लगता ही नहीं है, इतना बिजी आता है।
0: जी जी जी
1: सर, आप लोगों का प्रोग्राम ही ऐसा है जो बहुत सारे श्रोता जुड़ चुके हैं।
0: वाकई वाकई उदयलाल जी, आपको ऐसे बिजी प्रोग्राम में जुड़ना कैसा लगता है?
1: बहुत ही अच्छा लगता है सर, जैसे इतनी खुशी होती है कि लॉटरी लग गई।
0: अच्छा, लॉटरी हमारी भी लग गई।
1: अच्छा,
0: हाँ, आपका फोन रिसीव किया, हमारी भी लॉटरी लग गई।
1: तो
0: अब ये बताइए कि इस लॉटरी में आपको कौन सा धन चाहिए?
1: धन चाहिए राजेश खन्ना की फिल्म है।
0: हाँ,
1: जोरू का गुलाब।
0: अच्छा अच्छा।
1: नैनों में काजल है, माथे पे बिंदिया है, फिर कौन सी जगह है खाली, मैं कहाँ रहूंगा दिल वाली।
0: ओ नखरे वाली, बता कौन सी जगह है खाली, है ना?
1: हाँ जी।
0: तो फिर आप बताइए कौन सी जगह खाली।
1: दिल खाली है, दिल में सभी समा जाते हैं।
0: क्या बात है उदयलाल जी, आपका फोन आया, बहुत अच्छा लगा। जवाब में हम आपको लॉटरी बतौर आपका ये गाना सुनवा रहे हैं, बहुत शुक्रिया।
2: हाँ, तो नैनों में
3: बिंदिया है,
2: माथे पे
3: बिंदिया है,
2: तो बालों में
3: गजरा है,
2: आँखों में
3: गजरा है।
2: ओहो,

तट पे। जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: ಓದ್ಕೆ
1: चंबल चैनल का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आपका स्वागत करता है।
2: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी साहब, बहुत बहुत नमस्कार। कौन सा बोल रहे हैं?
2: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
1: केसरी सिंह राजपूत जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया सर, और आप कैसे हो?
1: बिल्कुल, आपकी दुआएं हैं।
2: जी सर, जी सर, दुआएं तो ऊपर वाले की हैं।
1: जी,
2: और सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही आशा करते हैं सर।
1: आपकी शुभकामनाएं सभी तक पहुंच रही हैं।
2: जी सर।
1: जी, तो बताइए केसरी जी, करते क्या हैं, काम क्या करते हैं?
2: मैं सर आर्टिस्ट हूँ, पेंटर, वॉल पेंटिंग, दीवार लेखन जैसे बोलते हैं, चित्रकारी हुई।
1: अच्छा,
2: राइटिंग वर्क हुआ। हाँ।
1: अच्छा, तो आप जब लेखन काम करते हैं तो आपकी तो राइटिंग भी बहुत सुंदर होगी।
2: जी सर, जी सर, राइटिंग का ही पूरा काम है सर।
1: खास बात है ये कि ब्रश के लंबे लंबे जो बाल होते हैं, उससे भी एक सीधी लाइन आ जाना, ओहो कितना मुश्किल काम है।
2: जी सर, जी सर, उसको बड़ा हाथ को बड़ा साधना पड़ता है। मतलब उसको लॉन्ग हेयर ब्रश बोलते हैं अपन, तो उसको अगर जैसे कोई भी जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो ब्रश उसको थमा देंगे तो उससे जैसा पेन से लिखाता है नहीं, वो ऊंचा ब्रश से भी नहीं लिख पाएगा।
1: अनुभव नहीं है ना, तो प्रैक्टिस में कितना वक्त लगा और आप इस तरफ कैसे मुड़े?
2: सर, बचपन से ही स्कूल में शौक था, ड्राइंग बनाते रहते थे।
1: जी,
2: तो बनाते बनाते फिर वो स्कूल में तो पढ़ाई में तो ज्यादा मन नहीं लगा, इसी में रुचि चली गई। वो धीरे धीरे करके सर अभ्यास करते गए और सफलता धीरे धीरे मिलती गई, तो फिर यूं समझ लीजिए कि बढ़िया गुजारा हो रहा है सर।
1: क्या कहने हैं साहब, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको केसरी जी। और ये बहुत अच्छी बात रही कि आपने अपनी रुचि को पहचाना और उसी तरफ आपने अपनी आजीविका के लिए अपना विचार किया।
2: जी सर, जी सर, प्लस में सर खेती भी है गांव पर, बाकी इससे अपना खर्चा पानी बढ़िया अच्छे से गुजारा भी हो जाता है, और सबसे बड़ा जीवन में श्रोताओं को भी ये मैं संदेश देना चाहूंगा कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है।
1: क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। तो फिर हम एक धन और जोड़ देते हैं उसमें, संतोष धन के साथ संगीत धन भी। कौन सा गाना आपको सुनवाए?
2: आज आप सुनवा दीजिए सर, गाड़ी बुला रही है,
1: सीटी बजा बजा कर।
2: नहीं नहीं, सीटी बजा रही है।
1: अच्छा, सीटी बजा रही है।
2: चलना ही जिंदगी है, चलती बुझा रही है।
1: वाह वाह जी, क्या बात है, क्या बात है। तो रेलगाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है इस गाने में आपको?
2: जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाई देती सर।
1: गाड़ी सर बुला रही है, इसलिए अब हमको बातें रोकनी चाहिए।
2: जी बिल्कुल रोकनी चाहिए सर, और गाड़ी के इस गाने में ये है कि इसका चलना ही जिंदगी हो, चाहे आगे तूफान हो या पीछे बरसात हो, लेकिन गाड़ी कभी नहीं रुकती।
1: बिल्कुल, और जिंदगी भी वैसे ही चलती रहनी चाहिए, वो जुझारूपन हमारे भीतर होना चाहिए, है ना?
2: जी बिल्कुल बिल्कुल सर,
1: बहुत धन्यवाद।
2: ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। राधे राधे।
1: राधे राधे।

0: हेलो, आकाशवाणी कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका।
1: जी सर, जी को नमस्कार।
0: नमस्कार साहब, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं ग्राम नरेला दामोदर भोपाल मध्य प्रदेश से रामबाबू शर्मा बात कर रहा हूँ।
0: जी सर
1: लगाते रहते, बहुत दिनों बाद कॉल मिली, लेकिन सर बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ।
0: रामबाबू जी,
1: जी जी
0: जी, कैसे हैं?
1: जी सर बहुत बढ़िया हूँ, बस खेत पर था।
0: अच्छा।
1: और बस फोन लगा रहा था, मैंने सोचा मैंने चलो आज लगा के ही छोड़ूंगा, तो सर वो लग भी गया।
0: क्या बात है, इसको कहते हैं दृढ़ निश्चय होना। है
1: जी सर।
0: जी खेती में भी यही दृढ़ निश्चय काम करता है ना?
1: हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, करना ही है तो करना ही है।
0: हाँ जी,
1: हाँ ईश्वर की कृपा हो रही है, दोनों तरफ से ताली बज रही है सर। वो तभी
0: बिल्कुल, वो कहते हैं ना साहब कि रास्ते बिल्कुल सीधे हो तो फिर सफर का मजा नहीं होता।
1: जी सर
0: है ना, तो रास्ते टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ हो उसी पर जरा आनंद आता है, और जिंदगी अगर आसान तरीके से मिल जाए तो फिर जिंदगी जिंदगी नहीं होती।
1: जी सर,
0: और ये बात किसानों से हमें सीखनी चाहिए, है ना?
1: हाँ जी।
0: राम बाबू जी बताइए, हम आपकी सेवा कैसे करें?
1: जी सर, एक गाना सुनवा दीजिए। जी सर, फिल्म का नाम है बोल राधा बोल, इसी का टाइटल सॉन्ग है बोल राधा बोल तूने ये क्या किया।
0: हाँ हा।
1: क्योंकि राधा जी की कृपा से ही होता है सर किसानों का। तो
0: आप राधा जी से कह रहे हैं कि बताओ ये बरसात क्यों किया आपने?
1: हाँ जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरे मन की बात आपने बोली।
0: जी तो फिर आप सुनिए राम बाबू जी अपनी पसंद का गाना।
1: जी सर, दो मित्रों को याद कर सकता हूँ?
0: हाँ जी
1: जी, केसर सिंह राजपूत जी और गजराज सिंह लोधी जी। जी जी सर, इन्हीं के साथ सुनना चाहें।
0: बिल्कुल,
1: और सर आपके लिए रहेगा।
0: हाँ, वरना आप हमें भूल जाते तो फिर हमारा क्या होता?
1: जी सर बिल्कुल, आपको नहीं भूल सकते, क्योंकि सर आपको तो सुनना ही होता है, नहीं तो हमारा मनोरंजन और हमारा समय पास ही नहीं होता है।
0: क्या कहने हैं, बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।
1: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सुरेश कुमार सारथी बोल रहा हूँ सर, बेमेतरा जिला छत्तीसगढ़ से।
0: अच्छा सुरेश जी।
1: जी सर।
0: पिछली बार कब फोन किए थे?
1: बहुत दिन हो गया सर।
0: जो कार्यक्रम ये प्रस्तुत करते हैं उसे आप सुनते तो होंगे?
1: सर आप सुनते हैं सर, मोबाइल रहता है तो सुनते हैं। मोबाइल को तो सब बच्चे लोग ले जाते हैं ऑफिस।
0: हाँ।
1: और मेरे पास सर कीपैड मोबाइल रखता हूँ सर, वो मोबाइल तो चलाने आता नहीं है। अब बच्चे लोग आते हैं वो बोलते हैं सर यहाँ यहाँ लगाओ जी करके, तो लगाते हैं सर।
0: अच्छा।
1: या फिर हमारे परम मित्र है बाजार पारा बेमेतरा में भरत लाल सिन्हा
0: जी,
1: वो भी सुनता है सर, आपके प्रोग्राम सुनते रहता है।
0: तो आप उनसे मिलते हैं कि नहीं?
1: बता देते हैं, उन्हीं के पास चला जाता हूँ सर सुनने के लिए।
0: अच्छा।
1: अब सर मेरे को तो मोबाइल चलाने आता नहीं है, बात यही है सर, इसलिए ना अपने दोस्त के पास चला जाता हूँ सर। जितेंद्र सलूजा है, भरत लाल सिन्हा है।
0: अच्छा।
1: इन लोगों के पास चला जाता हूँ सुनने
0: तो
1: के लिए।
0: सुरेश जी उम्र क्या होगा आपका?
1: जी सर मेरा उम्र है सर 53 साल।
0: अच्छा, तो काम काज क्या करते हैं?
1: सर मैं जैसा मेरा नाम सारथी है वैसे मेरा काम भी सारथी का है सर। पहले जमाने में सब हमारे पूर्वजों ने रथ और टांगा घोड़ा सब चलाते थे, अब तो सब चले गए, अब है ही नहीं है, तो हम ड्राइविंग का काम करते हैं सर।
0: अरे वाह साहब क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत
1: ही
0: अच्छी
1: बात है सर।
0: वाह वाह, तो अभी क्या ड्राइव करते हैं?
1: जी सर मैं सब बुकिंग गाड़ी चलाता हूँ सर, और पर्यटन सब सब घुमाने के लिए सब ले जाते रहता हूँ पर्यटकों को।
0: अच्छा, अभी फिलहाल कहाँ गए थे?
1: अभी तो फिर आज सर मैं वहाँ गया था, बद्रीनाथ गया था सर।
0: अच्छा।
1: बद्रीनाथ के नाथ केदारनाथ यमुनोत्री गंगोत्री सब होके आया हूँ सर।
0: अच्छा, यात्रा हो गई आपकी?
1: जी सर, जी सर वापसी छत्तीसगढ़ भी वापसी हो गई सर।
0: अच्छा, तो गाना कौन सा सुनेंगे आप?
1: सर और रीमा लागू की याद में सुना दीजिए सर, हम आपके यहाँ फिल्म का है सर।
0: क्या नाम है फिल्म का?
1: हम आपके हैं कौन
0: जी, हम
1: और
0: तो
1: गाने की बोल है, आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है गाने

0: सम धन है।
1: आपसे बहुत बात हुई है हमारी सुरेश जी। अब हम आपसे बात करने का मुंह तो नहीं छोड़ पाए, तो हमने बात तो कर लिया आपसे।
0: जी सर, जी सर, हमारा भी इच्छा होता है सर, लेकिन मन
1: है जी,
0: क्या बताए, आपसे बात करने के लिए बहुत उतावला हो जाते हैं सर, बेचैन हो जाते हैं आपकी मीठी आवाज सुनने के लिए सर।
1: आप मीठा आवाज आपका भी बहुत है, है ना
0: जी सर,
1: और
0: जी
1: आप ही से रेडियो चलता है, आप श्रोता है, आप ही से तो रेडियो चलता है।
0: जी जी, रेडियो हमारे पास दो ठो ट्रांजिस्टर है सर, एक पैरामाउंट का और एक ऐसी लोकल है सर।
1: वाह जी वाह वाह।
0: जी सर, जी सर, मैं तो 1980 से गए रेडियो का प्रेमी हूँ सर, 6 साल की उम्र से रेडियो सुन रहा हूँ।
1: हाँ जी, तो हम आपका ये जो आवाज है ये रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो अब हम इस
0: धन्यवाद है सर, हाँ जी, आपको पूरी यूनिट को। ठीक है सर,
1: ठीक है। तो आपने बहुत अच्छी बात बताया कि आप सारथी हैं, और अभी जमाने के हिसाब से आपने तांगा गाड़ी को पीछे छोड़कर और ये जो नया जो व्हीकल है ये चलाने लगे हैं आप, तो वो हम यही चाहेंगे कि आप दूर दूर का जो यात्रा करते हैं तो सुरक्षित यात्रा करें। ठीक है
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ जी,
0: आशीर्वाद के लिए सर।
1: हाँ जी, और आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाएंगे।
0: जी सर, जी हाँ जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेश जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को सर।
1: जी साहब जी, नमस्कार।

0: नमस्ते सर।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
0: जी लक्ष्मण सिंह चंदेल सर, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह से।
1: बहुत ही प्यारा नाम है आपका और बहुत ही प्रेम से, अदब से अपने नाम का आपने सम्मान किया है।
0: जी सर, और आपकी आवाज की सर हम दीवाने सर, आप जब भी प्रोग्राम लाओ सर, मस्त प्रोग्राम लाओ सर। आपकी जो बोलने की शैली सर बहुत,
1: अरे लक्ष्मण जी आपकी भी तो कितनी अच्छी शैली है ना? ये आपको किसी ने नहीं कहा?
0: अरे सर कहा तो
1: कहा है ना,
0: एक हमारे अंकल सौंदर्य जी है सर।
1: अच्छा, तो उन्होंने प्रशंसा की आपकी?
0: जी उन्होंने की, और सर आकाशवाणी के सागर की लगाओ भारतीय भी लगाओ थे, तो सर लोग बात करते रहे थे कि आप गुंजली में बात कर रहे थे, लोग किस बात हो रही थी।
1: तो लक्ष्मण जी ये आपकी जो बोली है ये कहाँ की है?
0: सर अपनी वैसे की है सर, बुंदेलखंड।
1: अच्छा, बुंदेलखंड की है ना?
0: सागर के आगे सर दमोह जिला पड़ता है।
1: दमोह जिला, तो वहाँ से है, दमोह जिला से है आप?
0: जी जी सर, आगे सर कटनी है सर, यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे।
1: अच्छा अच्छा, कटनी 50 किलोमीटर ही पड़ता है आपसे?
0: जी जी।
1: ठीक है जी, तो फिर लक्ष्मण जी काम क्या करते हैं आप?
0: सर हम तो खेती बाड़ी करते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बड़ा ही नेक काम करते हैं आप। तो आपने वैज्ञानिक तरीके से की थी खेती या कैसे?
0: हाँ सर, मतलब जो कुछ हुआ आप आकाशवाणी केंद्र में बताऊँ तो अनुसार हमारा चला।
1: अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, जैविक खेती के बारे में भी कोई विचार किया आपने लक्ष्मण जी?
0: नहीं सर, तो वही को उपयोग कर रहे हैं अपन तो।
1: अच्छा, जैविक का ही कर रहे हैं?
0: जी जी सर, दो तीन आज बने हैं तो वो देसी गाय अपन वाले खाद यूज नहीं कर रहे।
1: क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर आपने जैविक उपज की तो उससे खेत भी स्वस्थ रहते हैं, है ना?
0: जी जी सर।
1: हाँ, मिट्टी भी तंदुरुस्त रहती है।
0: जी जी, और अपना भी स्वास्थ्य के लिए सही है सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये बताइए आपने फोन क्यों किया हमें?
0: सर गीत सुनने के लिए।
1: अच्छा, गीत सुनवाया आपको?
0: जी, और गीत के बोल भी बताते रहता हूँ।
1: बता दीजिए।
0: रंग दे गुलाल मोहे, आई होली आई रे, गीत के बोल लता मंगेशकर की आवाज ना सही।
1: अच्छा, तो गा के सुनाइए ना।
0: सर गा तो नहीं मरेगा।
1: अरे ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, हम आपकी पसंद का गाना चला रहे हैं, उसके साथ ही आप गुनगुनाइएगा, ठीक है?
0: बिल्कुल जी जी।
2: तो अभी होली तो नहीं, लेकिन सुरों की होली जरूर खेलिए इस गीत के साथ। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
0: ओके सर।
1: हाँ जी।

0: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: कौन बोल रहे हैं, नाम बताएंगे अपना?
1: सुबीर रंजन बोल रहा हूँ,
0: सुबीर रंजन जी, कहाँ से बोल रहे हैं सुबीर जी?
1: विज्ञान नगर कोटा से। विज्ञान
0: विज्ञान नगर कोटा से। सुबीर जी कब से रहते हैं विज्ञान नगर में आप?
1: नगर में करीब 1980 से।
0: 1980 से। और उसके पहले कहाँ रहते थे? अच्छा
1: उससे पहले हम लोग इधर नाहरगढ़ की तरफ रहते थे, नेहरूपुरा ग्राम

0: ये 12 जिले में आता है।
1: 12 जिले में आता है, ठीक है। तो कोटा का विज्ञान नगर, विज्ञान तो एक चमत्कार का नाम है जो आधुनिक है ना, आधुनिक चमत्कार का नाम विज्ञान है। सुमीर जी,
0: बिल्कुल
1: कहाँ तक
0: बिल्कुल।
1: पढ़ाई लिखाई की आपने, क्या काम करते हैं आप?
0: मेरा एक्चुअली क्या कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, और मैंने एमए प्रीवियस कराया ये गवर्नमेंट कॉलेज से। हाँ,
1: अच्छा, प्रीवियस किया आपने,
0: प्रीवियस किया, फाइनल
1: लेकिन होता तो एमए के बाद फाइनल भी है, तभी उसको संपूर्ण
0: कर नहीं
1: माना जाता
0: पाया,
1: है।
0: कर नहीं पाया फाइनल। थोड़ा
1: अच्छा।
0: सा ऐसा इश्यू हो गया था, मतलब काम धंधे की तरफ ज्यादा ध्यान था उस टाइम।
1: अच्छा, और कहा तो ये भी जाता है कि पढ़ाई लिखाई का जो महत्व है वो यही है कि हमें रोजगार मिल जाए, हम शिक्षित हो जाएं, हैं?
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: क्या आपने पढ़ाई लिखाई की, आपने एमए प्रीवियस किस विषय में किया था?
0: मैंने ये पॉलिटिकल साइंस को करा था।
1: अच्छा, वैसे करना क्या चाहते थे सुबीर जी आप?
0: मैं एक्चुअली क्या टीचर बनना चाहता था, बीएड का भी तैयारी कर रहा था। फिर क्या हुआ, बीच में फिर दूसरा काम सीख लिया था मैंने, इंटीरियर का, ये पीओपी प्लास्टर पोरी पेरिस का बहुत काम करा हमने उस टाइम।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: हाँ, इंटीरियर का मतलब रंग का, कलर वलर का, फर्श का, ये काम करा। फिर
1: अच्छा तो सुबीर
0: उसके बाद
1: जी,
0: फिर कंस्ट्रक्शन में आ गए।
1: सुबीर जी, आपसे बात करके हमें यूं लगा कि यदि आप शिक्षक बनते तो बहुत से लोगों को आप शिक्षित कर देते, लेकिन यहाँ भी आपने बड़ा नेक काम किया कि आपने अपना व्यवसाय चुना, और हमें लगता है कि आप अपने व्यवसाय के साथ में बहुत से लोगों को रोजगार भी देते होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास मतलब अभी जो हमारा 2007 से हम ये कंस्ट्रक्शन लाइन में है, उससे पहले हम वो दूसरे इंटीरियर का काम करते थे, अंदर अंदर का, घर के अंदर का काम जो भी होता था,
1: अच्छा।
0: है ना, रंग रोगन का हुआ, पीओपी का काम हुआ, उसके पेनलिंग का काम हुआ, फर्नीचर का काम हुआ, ये सब करते थे। फिर हमने पूरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, तो
1: अच्छा,
0: उसमें यार रोजगार है, सारे मेरे साथ अटैचमेंट है, जैसे आरसीसी वाले हुए, टाइल वाले हुए, कलर वाले हुए, फर्नीचर वाले, सारी टीम है हमारे पास,
1: क्या बात है,
0: प्लम्बर हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ, इन
1: बहुत
0: सबको
1: खूब,
0: हम काम देते हैं।
1: बहुत खूब। अच्छा, इन लोगों को आप काम भी देते हैं और लोगों के लिए रहने का भी बंदोबस्त करते हैं आप, उनको मकान बना के, उनका आशियाना बना कर देते हैं, कितनी खुशी होती होगी आपको।
0: बहुत बहुत बहुत अच्छा
1: हाँ
0: लगता है। हमें एक कागज दिया जाता है कि इसी पे हमें बिल्डिंग चाहिए, कोई भी
1: अरे
0: आर्किटेक्ट कागज देता है, सुपरविजन भी उनका ही रहता है, पर हम लोग भी उनके साथ रहते रहते उस सीख गए वो चीज कि
1: बहुत
0: किस तरह
1: खूब,
0: से पार्टी को सेटिस्फाई किया जाता है।
1: बहुत खूब।
0: हमारे तो ये रहता है कि पार्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। मकान तो बनाता है, हर ठेकेदार बनाता है,
1: हाँ,
0: पर क्या वो रीजनेबल रेट में पार्टी भी सेटिस्फाई हो, इसे ऐसा काम करना चाहते
1: बहुत खूब, बहुत ही
0: करते
1: अच्छी बात है, बहुत उम्दा विचार हैं आपके। सुबीर
0: हैं।
1: रंजन जी, आपका नाम है सुबीर रंजन, और आकाशवाणी है ना, वो करता है मनोरंजन,
0: जी
1: है
0: जी
1: ना? तो आप ये बताइए, कौन सा गाना आप सुनेंगे?
0: फिल्म शोले का ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।
1: क्या बात है, ये किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं गाना?
0: बिल्कुल। हमारे मेरे दोस्त मेरे साथ ही पढ़ते थे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है, उनको डेडिकेट करना चाहूंगा।
1: कमाल है, कमाल है, कमाल है, ये तो एक खोज हो गई बहुत बड़ी।
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल।
1: ना, क्या बात है। तो सुबीर रंजन जी, आपने जब इस राज़े इजहार को कर ही दिया है, तो आप ये बताइए अब कि उन दिनों में जब आप पढ़ाई किया करते थे, क्या उस समय भी आप रेडियो सुनते थे?
0: बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास डैडी के पास रेडियो था, और उस टाइम टीवी में खाली दूरदर्शन ही हुआ करता था, तो
1: अच्छा,
0: अधिकतर जो रेडियो ही चलाते थे यार। मैंने देखा उसको, गांव से देखा उस चीज को, रेडियो में समाचार के लिए हो, चाहे फिल्म गीत के लिए हो, अधिकतर रेडियो पर ही बैठे रहते थे। चौपाल लगता था उधर गांव में,
1: अच्छा,
0: रेडियो के सामने
1: मतलब रेडियो बीच में और आजू बाजू में लोग उसे सुना करते थे। हाँ
0: सुनते थे वो जैसे भारत पाक युद्ध का टाइम भी बताते हैं, मैं तो उस टाइम छोटा था, को बताते हैं कि हम लोग रेडियो पे पूरा एक गांव वाले सुनते थे, रेडियो में क्या हो रहा है आज, प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं, उस सारा चीज आता था उसके अंदर। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे ये टीवी ने जगह ले लिया, लेकिन उसकी अहमियत अभी भी बहुत है। अगर अपन सोशल मीडिया में नहीं लगे सारा टाइम, रेडियो सुने तो एक सुकून मिलता है। मैं 11 बजे तक रेडियो सुनता हूँ कभी कभी, जब भी टाइम मिलता है रेडियो सुनता हूँ उस
1: क्या
0: रात
1: बात
0: के।
1: है, क्या बात है, बहुत ही खूब।
0: और
1: तो
0: सुबह सवेरे हमारा 7 बजे करीब हमारा रेडियो सुनना शुरू हो जाता है, एक डेढ़ घंटा में सुनते रेडियो।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।

0: सुबीर जी, तकनीक का जमाना है, रेडियो ने उस तकनीक के साथ साथ अब नई तकनीक को भी अपना लिया। और आपने सुना होगा, अगर आप रेडियो के श्रोता हैं ही, आपने बताया तो ऐसे में रेडियो के 90 वर्षों की यात्रा चल रही है हमारे भारतवर्ष में। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि तकनीक का भरपूर साथ रेडियो ने लिया है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो आज रेडियो हर मोबाइल में भी आप रेडियो सुन सकते हो।
0: बिल्कुल,
1: ऐप डाउनलोड करके ऑल इंडिया रेडियो कभी भी सुन सकते हैं अपन उससे।
0: बिल्कुल,
1: जैसे हर चीज विजुअल है।
0: हाँ।
1: टीवी देखो आप, कई चैनल विजुअल है, मोबाइल देखते हैं, तो विजुअल की जगह वो चीज हम अगर सुनने का काम करें तो आंखों को भी थोड़ा आराम मिलेगा, रोशनी इफेक्ट उससे कम होगा और बहुत ज्यादा मतलब उससे आपको रिलैक्स भी मिलेगा।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। सुबीर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो फिर रेडियो के इस गीत का भरपूर आनंद लीजिए और अपने यारों दोस्तों के साथ में इस गीत को गुनगुनाई भी सही। बहुत शुक्रिया फोन किया आपने।
1: थैंक यू थैंक यू।

0: जी नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में आपने फोन किया, नाम
1: नमस्कार जी
0: बताएंगे
1: सर।
0: अपना?
1: मैं दिनेश सोलंकी कोटा बोरकेड़ा से बात कर रहा हूँ सर।
0: दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। दिनेश जी, क्या करते हैं आप?
1: जी सर, मैं जॉब करता हूँ चम्मच
0: अच्छा
1: फर्टिलाइजर कड़ेपान में
0: अच्छा अच्छा तो
1: जी।
0: क्या जॉब का प्रोफाइल क्या है आपका, किस तरह का काम आपका होता है?
1: जी सर, हमारा ज्यादातर पैकिंग का काम है, यूरिया, जिसमें ट्रक लोडिंग, रेल लोडिंग, ये हमारा काम रहता है सर, सुपरविजन।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो
1: सर
0: आप अपने काम से संतुष्ट होंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपकी जो आवाज है वो खुशी का इजहार कर रही
1: जी सर जी सर
0: है ना?
1: बिल्कुल सर
0: बिल्कुल। और दिनेश जी, हम ऐसा मानते हैं कि जो काम हम करते हैं उस कार्य से हमारे घर की परवरिश होती है, तो इसलिए हमारा काम जो है वो सराहनीय होता है, वंदनीय होता है ना?
1: जी सर
0: जी, आपने आकाशवाणी पर कितना वक्त गुजारा? आपने अपनी स्टडीज के दौरान क्या कभी रेडियो सुना?
1: जी सर बिल्कुल सुनते हैं सर, रेडियो बचपन से ही सुनते हैं,
0: जी
1: जब हम स्कूल जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, और
0: वो सब।
1: अभी भी सुनते ही हैं
0: जी,
1: जी। जी
0: तो किस तरह के प्रोग्राम आपको रेडियो में अच्छे लगा करते हैं?
1: सर, जैसे हेलो फरमाइश है।
0: अच्छा, जैसा कि ये कार्यक्रम जिसमें आपने फोन किया,
1: हाँ सर
0: तो आप ये बताइए कौन सा गीत हम आपको इस कार्यक्रम में सुनवाएं?
1: जी, हम आप हमको हुस्न बहारों का।
0: हुस्न बहारों का, राम तेरी गंगा मैली,
1: जी जी जी जी जी
0: क्या
1: सर
0: बात है। तो इस फिल्म का जिक्र कीजिए, ये आपने देखी थी फिल्म या कब सुना
1: जी
0: था
1: जी
0: आपने ये गाना?
1: ये जनरली मैं सुनता रहता हूँ जब
0: अच्छा
1: गाड़ी में मैं ड्राइव करता हूँ, तो बीच में कभी चला लेता हूँ।
0: अच्छा, आपको इतना
1: और
0: पसंद है गाना?
1: हाँ, और फिल्म
0: जी
1: भी काफी देखी हुई है, फिल्म आती रहती है। जी
0: जी
1: सर
0: क्या बात है। तो फिर इस गाने के बारे में कुछ बताइए कि आपको ये गाना इतना पसंद क्यों है, क्योंकि इसमें पहाड़ियों की वादियां हैं, प्रकृति का नजारा है, क्या बात
1: जी
0: है?
1: जी मेन पहाड़ की वादियां हैं, और इसका जो संगीत है दिल कानों में आराम सा रहता है, अंतर
0: जी जी जी
1: आत्मा में आराम सा आता है।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो फिर हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना, हुस्न पहाड़ों का। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपने फोन किया।
1: थैंक यू।
0: जी।

तो श्रोताओं, सुरीले गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी बस यहीं तक। आप सभी श्रोताओं ने बड़ी मासूमियत से, हृदय की सच्चाई से इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 महीने के अंतराल के बाद आप फिर से प्रयास कीजिएगा वही नंबर लगाने का, जिससे आप अपनी पसंद के गाने सुन सकें, अपनी कुछ बातें तमाम और श्रोताओं तक पहुंचा सकें। दूर दराज तक ये कार्यक्रम आप सभी श्रोता सुनते हैं। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप किस माध्यम से सुन पाते हैं, इसका जिक्र हमें जरूर कीजिए। हमारा ईमेल enjoyaarkota@gmail.com, व्हाट्सएप नंबर 95-301-20-20। हमें ये जरूर बताइए किस माध्यम से आप चंबल चैनल का ये प्रसारण सुनते हैं, यदि FM पर, यदि मीडियम वेव पर,

और यदि न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सुनते हैं तो भी। कार्यक्रम का संयोजन तेजराम मीणा का, निर्देशन हिमांशु नामा का, और अब राजेश महावर आपसे चाहता है अनुमति। नमस्कार।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं।
1: गले में सरस्वती माँ का वरदान कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है ना।

तट पे। जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। लीजिए श्रोतों, अब आप सुनिए विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का प्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से।

मोहब्बत है क्या चीज, बस कुछ तैरते हुए साए, कुछ ख्वाबों के घरों दे और हवाओं पे लिखे हुए कुछ प्यार भरे पैगाम।

जिसके साथ जीने की चाहत बढ़ जाए आखिरी हद तक, तो लगता है वक्त रुक क्यों नहीं जाता दिलों की धड़कनें सुनने के लिए।

मेरा कोई अक्स नहीं पहचान तुम हो, जिस सांस से मेरी सांस चले वो सांस तुम हो। ये जान लो तुम मेरी जान हो और जहान भी तुम हो।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं,
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

किसी को देखा, चाहा, प्यार किया, एक से दो हुए, दो से तीन, और फिर खुशियों का मेला। भला कौन नहीं याद करना चाहेगा ऐसे दिलकश सफर को।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए

0: मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palmolin, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Suvendu Adhikari at Nabarna in Kolkata, Mr. Vaishnav said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway project.

0: This is Akashvani. In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants are Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator is Sonu Sood. Ye Akashvani hai. Prastut hai Vishesh Shrinkla. इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक। इसमें भाग ले रही है प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: In the 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has consistently said women empowerment is one of the key priorities of this government and the government's dream of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. हम आपसे जो आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है पिछले 12 वर्षों में एनडीए सरकार के इस कार्यकाल में उसके ऊपर हम आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए। सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप

0: एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं, कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
1: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता, मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ। और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति। उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता। और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 है
0: जी।
1: उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है, जो दिखाई देती है। मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके। और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थी, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया। और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
0: जी,
1: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी। तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज इट्स मोर देन 61% वुमेन। सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी, जनधन खातों की सफलता, लेकिन वो वहीं नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाएं वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे। लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी, लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं। मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया। देखिए पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे
0: जी।
1: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। और वो महिला बन जाए तो लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है। और कि ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है। हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना जो पीएम मुद्रा योजना है उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी है। और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लखपति से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और इनमें जो आंकड़े हैं विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही है उन एमएसएमई को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे। लगभग वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी। क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं, हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स, तो वो काम भी हो
0: जी
1: जी। और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है। और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है। शी मार्ट्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है, कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था। महिला उद्यमी है इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहाँ जाएं, तो शी मार्ट्स का कंसेप्ट लाए हैं। और अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं तो आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के, आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग खुले हैं। और हम ये मानते हैं, वन हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, तो ये सशक्तिकरण।

0: करना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं जहाँ से आरंभ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुँच चुके एलपीजी कनेक्शन, फिर जनौषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर विमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ, फिर मातृवंदना योजना जो पीएम मातृवंदना योजना है मोर देन 20,000 करोड़, विमेन वर एक्सेस्ट, और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर।
1: For the universal immunization program, also a lot of efforts have been made, as you are referring, you know, till March 2026.
0: Yes.
1: More than 11.87 crore children and 3.96 crore pregnant women were registered, and 8.73 crore women were screened for cervical cancer. Ek
0: yes.
1: aur jo aapne baat kari matritva support di ja rahi
0: ji,
1: so maternal mortality rates bahut niche aaye hain, infant mortality rates niche aaye hain, aur institutional deliveries 68% से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है जी,
0: 98
1: बिल्कुल 98%। तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
0: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है
1: जी,
0: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं
1: जी जी,
0: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी, फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%, सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से, सो ODF फ्री इंडिया, देन जो मातृ मृत्यु दर मोर्टेलिटी एज यू सेड which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
1: Yes.
0: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 26 weeks, and I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together,
1: yes.
0: which will surely lead to healthier generations in coming times.
1: And also when
0: yes.
1: women are healthier and when, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know,
0: yeah,
1: due to the
0: yeah.
1: Jal Jeevan mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
0: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future.
1: Mm-hmm.
0: You can see the women have dreams about their children now,
1: mm-hmm.
0: and especially the daughters.
1: Mm-hmm.
0: I have come across as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up.
1: Yes.
0: और मोदी जी जो बार बार कहते हैं, स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र की जन्मदाता है और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है.
1: Yes.
0: This is the linkage between women's health and the empowered और विकसित भारत, as we say, आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है.
1: Absolutely. आदित्य जी, कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन शक्ति एक मिशन वो रहा है मुहिम सरकार का, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव वो लाए हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है शी बॉक्स पोर्टल, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स का वर्क प्लेस पे उनको रजिस्टर करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि इसका विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
2: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का जो इशू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं. जैसे हमें याद आता है RG कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ. ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए, उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया. निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए, लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं. और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है. और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण

0: शिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए। मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती। हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का। जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है, जैसे हमने सदियों से देखा, जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया। मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए। सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी। एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है। समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है। और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स। जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा। इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो। पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में समाज का रोल आ जाता है।
1: बिल्कुल, पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है। और जो भी व्यवस्था है, 15,000 प्लस विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशन हैं इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया, 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस हैं, और 700 प्लस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए है। लेकिन इन सबका भी इस्तेमाल, ऑफकोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आए और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
0: बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था। आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है। अब अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है, ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि महिलाओं के साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है, और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
1: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई है शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक वुमेन लेड एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड है और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन वुमेन लेड एंटरप्राइजेज को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से।

0: जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी।
1: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है which is easier for women especially, if you don't have to go anywhere right. and you can still access most of the facilities, nothing better than that. That is almost best, because अपने आप में movement या आवागमन जिसको कहते हैं, वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है, और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है. इसलिए digital empowerment, digital training और digital capacity building, ये target रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था, मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। There can't be a better recipe, because if you get some financial support, which women need usually, and maybe after some time they don't even need, they may have their own groups, yes. they may have their own financiers also, like they are coming up now. But with that, you also need later skills, because skills keep changing. And the market needs different kinds of skills. At times, they may be digital skills in coming time. And you see, women are really very good at that, because this is heart and hand, both going together. And then, if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also, I would say, or fields, then they are ready for the world. और ये सरकार चाहती है, women led development कब होगा? वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो हैं ही, वो राजनीतिक सोच भी है, जहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%, और यही 33% जो पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं, ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी। और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार हो।
0: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं हैं, 65% से अधिक है जो पुरुषों से कुछ ऊपर है, और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका। एंड ये पाया गया है कि जब से विमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है। सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी।
1: बिल्कुल, आई विल से दैट, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज। आई कैन से विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, फर्स्ट टाइमर, मे बी एडमिनिस्ट्रेशन में तो फर्स्ट टाइमर सभी होते हैं, सो इट रियली डजंट मैटर, दे लर्न। एंड आई हैव मेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हु से दैट वी क्वेश्चन्ड अवर ऑफिस व्हेन दे से दिस कांट बी डन, तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है, व्हाई आर वी हियर, तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी। आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई उन तक पहुंचे। और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली इन ऑफ यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा। और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी।
0: आदित्य जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
2: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई

0: सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है। वो इसलिए संभव हुआ है सोनू क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए। वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है। इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते। तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
1: So as India moves towards the goal of Viksit Bharat by 2047, the role of women is increasingly becoming central to this journey. Across sectors, women are contributing as workers, entrepreneurs, farmers, innovators and leaders. Sushma ji, Aditi ji, thank you so much for this insightful and inspiring discussion.
2: Thank you.
3: In this special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhala ke antargat abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal Mahila Sashaktikaran ka Parivartankari Dashak. इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:45 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।